ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दे आज के कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। छह बजकर दो मिनट पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात, 7 बजे हिंदी में समाचार, 7 बजकर 2 मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, 9 बजे हिंदी में समाचार, 9 बजकर 2 मिनट पर दिल के तराने गाने नए पुराने, 10 बजे अंग्रेजी में समाचार, 10 बजकर 2 मिनट पर मैचलेस म्यूजिक आर, 11 बजे प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
3: म्यूजिक मस्ती।
8: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आप

भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास पथ को आकार देने के नवाचार, अनुसंधान और बढ़ती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं में भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति पर साझेदारी को और मजबूत करने पर उपायों पर चर्चा की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ राज्य सरकार की अगले दौर की वार्ता आज दोपहर 12 बजे होगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक साझेदारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हुई। वहीं खराब मौसम के कारण जम्मू में बालतल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। और बैडमिंटन में आज आसन में कोरियाई मास्टर्स टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स फाइनल में अस्मिता चहिला का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 पर शुरू होगा। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बिल्कुल आपकी वाणी आकाशवाणी। नमस्कार। और बिल्कुल मैं आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका हूँ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर और आपके पसंदीदा प्रोग्राम बिल्कुल मॉर्निंग शो में सुप्रभात में और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस प्यारी सी मुस्कान के साथ आपका हम बिल्कुल इस खूबसूरत सुबह में वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, सुबह एक मौका होती है कल से कुछ बेहतर करने का, कुछ

नया सोचने का, कुछ नया सीखने का और सबसे ज़रूरी बिल्कुल ज़िंदगी को थोड़ा और करीब से जीने का। और आज की हमारी सुबह एक बेहद खूबसूरत सोच के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं कि ज़िंदगी के सफ़र का लुत्फ उठाते जाइए और हर दिन कुछ नया सीखते चले जाइए, तो देखिएगा कितनी आसान हो जाती है हमारी ज़िंदगी। क्योंकि ज़िंदगी कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहाँ पहुँच कर हम कह दें कि बस अब सब कुछ पूरा हो चुका है। ज़िंदगी तो एक वो सफ़र है, कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल होते हैं, कभी धूप मिलती है, कभी छांव होती है, तो कभी जीत मिलती है, तो कभी हार हो जाती है। लेकिन हर मोड़ पर हम कुछ ना कुछ सीखकर आगे चलते चले जाते हैं। और तो क्यों ना आज भी हम सिर्फ मंजिल की चिंता करना छोड़कर सफ़र का आनंद लेना शुरू कर दें। बिल्कुल, मैं वेलकम कर रहा हूँ आपका इस प्रोग्राम में, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

अपने पल को बिताएंगे तो बहुत बहुत खूबसूरत आपका ये दिन हो जाता है। और बिल्कुल अगर आप हमारे साथ उठ चुके हैं और चाय की प्याली आपके हाथ में या फिर कॉफ़ी पी रहे हैं और बिल्कुल इस सुबह का आनंद उठा रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा, जो ये मौसम इतना खूबसूरत गुलजार हो रखा है, इसको आप एंजॉय कर रहे हैं, तो बिल्कुल जो कल का जो आप अगर सफल हुए या असफल हुए, अगर कल किसी से कोई बहस हुई या बिल्कुल नहीं हुई या कोई काम पूरा हुआ या अधूरा हुआ, बिल्कुल इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सूरज लगातार सुबह उठता है और हर दिन उसी तरीके से उठता है जैसे कि वो पिछले दिन उठा था, तो बस आपको भी यही सफ़र अपना पूरा करना है और उसी निरंतर कोशिश के साथ, निरंतर उस कोशिशों के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। और शायद यही प्रकृति हमें सुबह एक संदेश देती है कि जो बीत गया उसे जाने दो और आज फिर से शुरुआत करो। और हम अक्सर अपने बीते हुए कल को लेकर परेशान रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वो गलती नहीं की होती, काश मैंने ये पहले शुरू किया होता, लेकिन बिल्कुल काश उसमें ज़िंदगी नहीं बदलती, आज से ज़िंदगी बदलती है। इसलिए आज की सुबह खुद से कहिए कि आज बिल्कुल मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, है ना, और कुछ अच्छा कर सकता हूँ, जो कि मेरे छोटे छोटे प्रयासों से हम उसको हासिल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा स्टेप लेना है आपको, क्योंकि ज़िंदगी में बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते, कभी कभी रोज़ का एक छोटा सा कदम ही हमें बहुत दूर ले जाता है। बिल्कुल, और इस दूरी को हम मिटा देते हैं अपने आसपास, जो हम संदेश आपके साथ शेयर करते हैं, आपसे साझा करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, उससे हम ये जो दूरियां होती हैं हमारी दोनों की मिट जाती हैं। और क्या खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह का होना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी नौकरी या बहुत सारा पैसा ही खुशी की गारंटी होती है, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी सुबह की पहली चाय ही खुशी दे देती है, कभी किसी पुराने दोस्त का फ़ोन अगर आ जाए अचानक से तो एक अच्छी सी स्माइल आपके चेहरे पर आ जाती है, और कभी छोटा बच्चा आपके सामने स्माइल कर दे और हंसते आपको देख के तो उससे दिन बन जाता है आपका। और कभी बारिश की खुशबू, जब बारिश की बूंदें हमारी मिट्टी पर पड़ती है ना, तो क्या खुशबू निकलती है, और उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और कभी अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं, और कभी किसी अनजान व्यक्ति की मुस्कान भी आपको खुशी दे सकती है। तो हम बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते करते छोटी खुशियों को देखना भूल जाते हैं। इसलिए आज एक छोटा सा काम कीजिएगा कि आज पूरे दिन में कम से कम 3 ऐसी छोटी चीज़ें नोट कीजिएगा जिसने आपको खुशी दी हो या फिर आपको उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिली हो। और शाम को जब आप बिल्कुल फ्लैशबैक में जाएंगे ना कि आज कुछ क्या कुछ हुआ, तो महसूस करेंगे कि आपका दिन उतना साधारण नहीं था कि जैसा अब तक सोचते आए थे, और उसमें बहुत सारी खूबसूरत बातें छिपी थी, बस हमें उन्हें देखना आना चाहिए, है ना। और अगर हम देखना सीख लेना अपने आसपास के माहौल को, तो इतना आनंदित हो जाएंगे आप। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ। और अब फिलहाल सुन रहे हैं सुप्रभात, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आशुतोष आपके साथ है।

बिल्कुल, आपको भी धीरे धीरे चलना है और अपने ज़िंदगी का जो सफ़र है ना उसको बहुत बहुत अच्छे से एंजॉय करना है आपको। और बिल्कुल एक छोटी सी जो स्टोरी है ना वो बिल्कुल आपको शेयर कर दूं, उससे हो सकता है कि आप ज़िंदगी के सफ़र को थोड़ा समझ पाएं। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति रोज़ रोज़ पार्क में घूमने जाया करते थे, सुबह रोज़ सैर पर जाया करते थे। और एक दिन एक जो लड़का था वहाँ पर रोज़ उनको देखा करता था, उसने पूछा कि आप रोज़ यहाँ क्यों आते हैं, आपके पास कोई ख़ास काम नहीं करने के लिए, आप हमेशा यहीं पर मैं आपको देखता हूँ जब भी आप घूमते रहते हैं यहाँ पर आके। तो बुज़ुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि काम तो बहुत है। तो उस लड़के ने पूछा कि क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि आज मुझे देखना है कि सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों पर कैसी दिखती है, आज मुझे किसी नए पक्षी की आवाज़ पहचाननी है, और आज मुझे किसी नए इंसान से बात करनी है, और आज मुझे कुछ नया सीखना है। और बिल्कुल यही शब्द सुनकर जो लड़का था ना वो सोच में पड़ गया कि ये सब चीज़ें तो मैंने आज तक सोची नहीं थी। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में उलझे रहते हैं। और वहीं उस बुज़ुर्ग इंसान ने उस बच्चे से कहा कि बेटा उम्र बढ़ती है तो लोग कहते हैं कि अब सीखने में क्या बचा है, लेकिन असल में ज़िंदगी तब खूबसूरत होती है जब हर सुबह हमें कुछ नया देखना सीखने को बिल्कुल एक उत्सुकता होती है उसकी। और बिल्कुल ये बहुत बहुत खूबसूरत बात है कि उत्सुकता हमें ज़िंदा रखती है और ज़िंदगी को भी ज़िंदा रखती है। तो ये स्टोरी इतनी दिल को छू गई है कि अक्सर हम मतलब सोचते ही नहीं है कि हमारे आसपास भी शायद किसी को हमारी ज़रूरत है और अपने कामों में उलझे रहते हैं। और मैं बिल्कुल सकारात्मक सोच का मतलब हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में समस्या नहीं आएंगी, समस्याएं आएंगी लेकिन मुश्किल दिन भी आएंगे, कभी हम थकेंगे भी। कभी सकारात्मक सोच हमें ये सिखाती है कि मुश्किल है लेकिन मैं इसको बिल्कुल जीत सकते हैं, हम इसको इससे आगे सीख सकते हैं। और आज अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल बेहतर हो सकता है और मुझसे गलती हुई लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूँ, बस यही फ़र्क होता है। और इसी फ़र्क के साथ हम अपने जीवन को बहुत बहुत अच्छा बना सकते हैं और ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानते, तो ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बहुत प्लस पॉइंट होता है और हम हर किसी को जीत सकते हैं इससे। स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए सुप्रभात।

0: खास दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

बिल्कुल, बस अब वक्त ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन ज़िंदगी के बारे में यही कहते हैं कि ज़िंदगी जल्दी जल्दी चलने की चीज़ नहीं है, और उसको उसका आनंद उठाइए, उसको रुकिए, थोड़ा महसूस कीजिए और सीखिए और मुस्कुराइए, और साथ साथ बिल्कुल हर सुबह जो पहली किरण है उसका इंतज़ार कीजिए, किसी अपने की आवाज़ भी सुनिए और किसी दोस्त की हंसी सुनिए, कुछ नया सीखिए, और बिल्कुल अपने आप से वादा कीजिए कि कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे। और ज़िंदगी एक सफ़र है, मंजिल नहीं, इसलिए सफ़र को खूबसूरत बनाइए। स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का पांचवा अध्याय। आपको याद होगा परीक्षित जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा था कि आप मुझे भगवान की सृष्टि के विषय में बताइए कि ये जो जगत है इसकी सृष्टि कैसे होती है। और देखिए, ये जो प्रश्न है बड़ा ही कठिन प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर जो है वो बहुत ही तत्वों से भरा पड़ा है। हालांकि सुखदेव जी के लिए क्या मुश्किल है, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ हैं, और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद भी बताया। आपने जाना था कि कैसे नारद जी के प्रश्न से ब्रह्मा जी बड़े ही आनंदित हुए थे, और उन्होंने कहा था कि वत्स नारद, तुम बड़े दयालु हो, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न से आज मुझे गोविंद के गुणों की स्मृति हो गई है, और आज मैं गोविंद के गुणों का वर्णन करूंगा, ऐसा सौभाग्य मिला है। क्योंकि तुम नहीं जानते कि मेरे जो नियंता हैं, मेरे जो स्वामी हैं, वो गोविंद हैं। उनका तत्व ना जानकर तुम मुझे ही जगत का कर्ता बोल रहे हो। ये जो बात है वो झूठ भी नहीं है, तुम्हारी भ्रांति मात्र है, क्योंकि मूल में तुमने तो देखा नहीं, स्थूल में देखा है, इसलिए तुम समझ ही नहीं पाए कि तत्वतः सत्य क्या है। जो देखा है वो ही तुम्हें दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वही सत्य है ना। जैसे कि कोई चंद्रमा को देखे, सूर्य को देखे, ग्रहों को देखे, नक्षत्रों को देखे, तारों को देखे, तो लगेगा कि हाँ हाँ, इनकी ज्योति इनकी अपनी संपत्ति है, परंतु ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि अगर कोई मूल में देखे तो वो देखेगा कि ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम यज्ञमग्नि तदेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। यानी चंद्र सूर्य ग्रह ये सब गोविंद की कृपा से ही ज्योतिष्मान होते हैं और जगत का अंधकार दूर कर पाते हैं। इसी तरह से हे नारद, मैं भी इस जगत की सृष्टि करता हूँ, लेकिन मैं सृष्टि करता नहीं हूँ। कितनी बड़ी बात है, सृष्टि कर रहा हूँ लेकिन सृष्टि करता नहीं हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, श्री भगवान की कृपा से ही मुझे ये कार्य मिला है, ये कर्तृत्व प्राप्त हुआ है, मैं कर पा रहा हूं उनकी कृपा से। धन्य है माया की मोहिनी शक्ति, क्योंकि माया भी उन्हीं की दासी है, और उनकी मोहिनी शक्ति बड़ी ही धन्य है, जिससे लोग मुझे जगत का कर्ता समझ रहे हैं। कोई ये मर्म नहीं जान पा रहा है कि भगवान ने गुप्त रूप से मुझे शक्तिमान किया है, और सब समझ रहे हैं कि सारी शक्ति तो मेरी ही है। श्री भगवान के ये जो माया मुग्ध जीव हैं, वो माया से इतने मोहित हैं कि वो मैं मेरा लेकर ही व्यस्त रहते हैं, इसलिए वो कभी भी प्रकृत तत्व नहीं समझ पाते हैं, असली बात नहीं समझ पाते हैं। तो हे नारद, तुमने जगत के स्वरूप के संबंध में जो मुझसे पूछा है, तो ये मैं तुम्हें बताऊं कि जगन्नाथ जी के अलावा जगत का अलग भला कोई स्वरूप रह सकता है? नहीं। जगत जिससे बना है वो द्रव्य, जन्म कारण कर्म काल स्वभाव और भोक्ता जीव, इनमें से किसी भी वस्तु की भगवान से स्वतंत्र रूप से कोई सत्ता नहीं है। सतो रजो तमो, यानी ये जो तीन गुण हैं, और काल तथा जीव का अदृष्ट, ये सब अपने अपने स्वभाव के रूप में ही भोग के रूप में परिणत होते हैं।
यानी जीव जो करके आया है उसकी वजह से उसका जो प्रारब्ध है, उसके कारण जो उसको अब भोगना है, तो वो जो सब कुछ है, गुण हो काल हो, जीव का अपने कर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार सुख दुख भोग ये हो या स्वयं जीव ही क्यों ना हो, सब भगवान से प्रकटित हैं। सब कुछ का कारण भगवान है। तो जगत का तत्व अगर सोचे हम तो फिर अलग से कुछ नहीं है, क्योंकि द्रव्य कर्म काल स्वभाव भगवान की माया शक्ति के कार्य हैं और जीव भगवान की तटस्था शक्ति से प्रकट है। तो जगत जगन्नाथ जी की ही शक्ति का कार्य है, उनसे पृथक नहीं है, ये समझना होगा। शक्तिमान को छोड़कर शक्ति की कोई पृथक सत्ता रहती है क्या? शक्तिमान का ही अंश है शक्ति, शक्तिमान से प्रकटित है शक्ति। समस्त वेद ही श्री भगवान की उपासना तत्व को प्रकाशित करते हैं और वेदों में जिन समस्त देवताओं का उल्लेख है वो भी भगवान की ही अंश कला विभूति है। समस्त यज्ञों के यज्ञ पुरुष श्री भगवान ही है और समस्त यज्ञों में भगवान की ही उपासना की जाती है। कर्मी लोग कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं और उस साधन से जो वो स्वर्ग प्राप्त करते हैं वो भी भगवान के ही आनंद का अंश स्वरूप है। योगी गण श्री नारायण के चरण में चित्त को लगाते हैं और योग सिद्धि प्राप्त करते हैं तो भगवान से ही ये प्रकट है, भगवान के ही चरणों में ध्यान लगाते हैं। ब्रह्म ज्ञान श्री भगवान की ही निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान है। ठाकुर जी का जो श्री विग्रह है उसका जो प्रकाश है, उस प्रकाश के स्वरूप का ही ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। इसलिए कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। श्री भगवान के चरणों की प्राप्ति ही मुक्ति कहलाती है। तो अगर कोई विवेचना करे, ध्यान से समझे, तो वो समझ भी पाएगा कि साध्य साधन सिद्धि सब कुछ भगवान के चरणों से ही बंधा हुआ है। और यही बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ये जो सर्वव्यापी हैं ठाकुर जी, जो सर्व साक्षी हैं, समस्त भूतों के अंतरात्मा हैं, समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं, उन्हीं गोविंद की कृपा से ही हे नारद मैं जगत की सृष्टि करता हूँ। किंतु हे नारद, जगत का जो मूल है उसकी सृष्टि वही करते हैं, मैं उनकी कृपा से स्थूल की सृष्टि करता हूँ। मूल तो वही है, स्थूल की सृष्टि मैं करता हूँ उनकी कृपा से और इसीलिए लोग मुझे सृष्टिकर्ता कहते हैं। तो श्री भगवान सर्व गुण अतीत हैं, तीन गुणों से अतीत हैं तो भी सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण सतोगुण और तमोगुण शक्ति का वो संचार करते हैं और इन्हीं से यानी तीन गुणों से ही धीरे धीरे इस विश्व की और फिर ब्रह्मांड की भी सृष्टि होती है। तो श्री भगवान की मायिक सृष्टि में अभिमान रखने के कारण जो जीव है वो बहिर्मुख हो जाता है और उसी में बंध जाता है ना। भगवान ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा जी से बनवाई, शक्ति दिया उनको, और जो जीव है वो मायिक सृष्टि में अभिमान रख लेता है, ये मेरा है, ये मैं हूं। शरीर जड़ है, अगर शरीर को चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, इसमें से भगवान निकल जाए तो क्या होता है? शरीर, शरीर को अगर एक ट्रंक में बंद कर दिया जाए और 5-7 दिन बाद उसे खोला जाए, क्या अवस्था होगी शरीर की? वो सड़ जाएगा, कीड़े उसे खा रहे होंगे। कीड़े, कितना भी सुंदर शरीर क्यों ना हो, तो शरीर तो जड़ है, लेकिन माया कुछ ऐसा भाव बद्ध जीव में पैदा कर देती है कि वो सोचने लगता है कि ये शरीर ही मैं हूं, मैं शरीर से अलग वस्तु हूं, ये भाव उसके अंदर नहीं आता।

मैं शरीर हूं, बस यही भाव उसके अंदर बना रहता है। और शरीर को सुख देने वाली वस्तुएं ये मेरी हैं, और सुख कैसे पहुंचाऊं शरीर को, इसी के उधेड़ बुन में लगा रहता है। और इतने दुर्लभ जीवन से हाथ धो बैठता है। तो यही बात बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि भगवान जो है तीन गुण को संचारित करते हैं, और इसी से सृष्टि होती है, पृथ्वी की भी और समस्त ब्रह्मांड की भी। जीव माया में फंस जाता है अपनी बहिर्मुखता के स्वभाव के कारण, क्योंकि वो भगवान से विमुख रहता है। लेकिन श्री भगवान अपनी ही माया से जगत की सृष्टि करके भी उसमें निर्लिप्त रहते हैं, उसमें उनकी कोई आसक्ति नहीं रहती, है ना। तो हमारा शरीर देखिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना है, बुद्धि भी तो जड़ है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बनी है। और इन गुणों के द्वारा बने हुए शरीर मन आदि को लेकर हम गुणातीत गोविंद को खोजने जाएं, उन्हें जानना चाहें, तो ये बहुत ही कठिन है। ये तो गोविंद जब चाहेंगे, उनके भक्तों की जब कृपा होगी, तो ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो गोविंद को समझ पाना, उनको जान पाना कठिन है, पर यह बात भी ध्रुव सत्य है कि वो ही स्थावर जंगम सबके नियंत्रक हैं, पालन करता है, सृष्टि करता है, वे ही लोक और लोकेश्वर के प्रभु हैं, सबके प्रभु हैं, सबके मालिक हैं। तो उनके चरणाश्रित भक्तगण हैं, वे ही उनकी कृपा से उनके तत्व को थोड़ा बहुत अनुभव कर पाते हैं। परंतु जो भक्तिहीन है, उनके लिए गोविंद का तत्व जानना अतिशय असंभव है, असंभव। तो यही बता रहे हैं हमारे ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, भगवान को भगवान की कृपा के अलावा नहीं जाना जा सकता है। तो ये जो सब कुछ है, सब भगवान से प्रकटित है, है ना। और यहां तो ये बात स्वीकार ही कर लिया है उन्होंने कि भगवान ही से मैं भी प्रकटित हूं, मेरे भी कारण भगवान ही है। तो आगे अब महत्त्व आदि का वर्णन कर रहे हैं कि सब कुछ कैसे प्रकट हुआ। तो कह रहे हैं कि मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा की और अपनी माया से अपने ही स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, रजोगुण सतोगुण तमोगुण में, और स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया, और कर्म ने ही महत्त्व को जन्म दे दिया। रजोगुण सतोगुण की जब बढ़ोतरी हुई तो महत्त्व, और फिर महत्त्व से जो विकार हुआ, महत्त्व में उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूपी तम प्रधान विकार हुआ, वो अहंकार कहलाया। विकार को प्राप्त हुआ वो अहंकार भी, तो वो तीन प्रकार का हो गया, वैकारिक, तेजस और तामस, है ना। यानी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इसमें भी द्रव्य शक्ति, ये तीन शक्ति प्रधान हो गई। पंचभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, फिर उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार उत्पन्न हुआ तो फिर वायु की उत्पत्ति हुई, उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से शब्द वाला भी है, है ना। वायु में शब्द भी है और वायु में स्पर्श भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ तो फिर अग्नि की उत्पत्ति हुई, इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसमें आकाश और वायु के गुण शब्द और स्पर्श भी हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द स्पर्श रूप ये सब भी इसमें हैं। यानी पिछले पिछले सबके गुण इसमें हैं। जल में फिर विकार हुआ तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी का जो मुख्य गुण है वो है गंध,

0: लेकिन पीछे के सारे गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये भी इनमें विद्यमान है। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्री देवताओं की उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र यानी कान, श्रवण इंद्रिय, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, और वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रियां, ये 5 कर्मेन्द्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूपी बुद्धि और क्रिया शक्ति रूपी प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। जिस समय ये 5 भूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूपी शरीर की रचना ये नहीं कर सके। तब भगवान ने इन्हें अपनी ही शक्ति से प्रेरित किया और तब ये तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और फिर उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूपी पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। ये ब्रह्मांड रूपी अंडा 1000 वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे में से निकला एक विराट पुरुष जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर 1000 की संख्या में है। तो विद्वान पुरुषों की उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना की जाती है। उनके कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की, उनके पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। तो इस तरह से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई और उस विराट पुरुष के कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक, जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल, तलुओं में पाताल है ना, नाभि में भुवर लोक है, सिर में स्वर लोक है और चरणों में पृथ्वी है। तो इस तरह से विराट पुरुष के बारे में बताया है ब्रह्मा जी ने नारद जी को। और आगे 6 अध्याय में विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करेंगे ब्रह्मा जी, जिस पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कि नारद जी ने प्रश्न किया था ब्रह्मा जी से कि आप मुझे सृष्टि तत्व बतलाइए, और ब्रह्मा जी ने तब सृष्टि तत्व बोलना प्रारंभ किया, है ना। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि तत्व जब प्रारंभ किया है तो ये जो तत्व उन्होंने कहा ये सांख्य मत के ही अनुकूल है, लेकिन इसमें कुछ विशेषता है। सांख्य दर्शन में होता क्या है कि सांख्य के आचार्य जो हैं वो सृष्ट जगत के मूल कारण के बारे में जब विवेचना करते हैं तो वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणमयी प्रकृति तक ही जाते हैं, इसके आगे नहीं जा पाते हैं। और उपनिषद में कहा भी गया है तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, इस तरह सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन है उपनिषदों में, पर वो भी सुस्पष्ट नहीं है। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवत में सृष्टि तत्व को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब समझ आता है कि इसका असली अर्थ क्या है। महाप्रलय में जब स्थूल जगत का अस्तित्व गंध भी नहीं मिलता, तब भी जगत नियंता जगन्नाथ लीलामय रूप में अपने नित्य धाम में अवस्थित रहते हैं, लीला करते रहते हैं। स्थूल जगत तब नहीं रहता, ठीक है, परंतु स्थूल जगत का जो मूल कारण है प्रकृति, वो रहती है। उस

प्रकृति के जो तीन विभाग हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन विभाग रहते नहीं। प्रकृति तब माया शक्ति के रूप में शक्तिमान श्री गोविंद में ही लीन रहती है। काल, जीवों का कर्म, जीवों का अदृष्ट, समस्त वस्तुओं का स्वभाव तब सूक्ष्म रूप से श्री भगवान में ही लीन रहता है। सांख्य आचार्य गणों ने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों की साम्य अवस्था तक की बात कही है, लेकिन लीला अवस्था के संबंध में वो कुछ नहीं कह पाते। तो जो सांख्य के आचार्य हैं, वो प्रकृति और प्रधान दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत के मत को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि लीला अवस्था का नाम है प्रकृति, और श्री भगवान के ईक्षण के बाद, यानी जब श्री भगवान दृष्टिपात करते हैं, तो तब जब प्रकृति कार्य करना प्रारंभ करती है तो उस कार्य उन्मुखता का नाम है प्रधान। जो भी हो, श्री भगवान की जब इच्छा हुई कि मैं एक हूँ और बहुत हो जाना चाहता हूँ, तब उन्होंने अपने ही अंदर लीन प्रकृति के प्रति ईक्षण किया, यानी दृष्टिपात किया, और उनके देखने से प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों की अभिव्यक्ति हुई। और इस दृष्टिपात से पहले सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुणों का विभाग रहता नहीं है, है ना। श्री भगवान जब दृष्टिपात करते हैं, उसके बाद काल, कर्म और स्वभाव की अभिव्यक्ति होकर कालवशतः प्रकृति में गुणों का क्षोभ होता है, यानी गुण जो है वो विचलित होने लगते हैं, और फिर स्वभाव वशतः प्रकृति का परिणाम होता है, और जीवादृष्ट के कारण, जीव के अदृष्ट के कारण महत्त्व का आविर्भाव होता है। काल श्री भगवान का ही प्रभाव विशेष है, और जब प्रलय हो जाती है तो उन्हीं में लीन हो जाता है, है ना। तो सांख्य सिद्धांत से भी ये समझा जाता है कि स्वभाव वशता ही प्रकृति का परिणाम है, किंतु ये स्वभाव भी स्वाधीन नहीं है, क्योंकि सांख्य आचार्य कहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है और प्रकृति के स्वभाव से ही सब कुछ प्रकट है, लेकिन भागवत जी कहते हैं कि ये स्वभाव भी प्रकृति का भगवान के अधीन है, क्योंकि जब तक भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात नहीं करते हैं तब तक ये स्वभाव भी प्रकृति का परिणाम नहीं कर पाता है, प्रकृति साम्य अवस्था में रह आती है, यानी प्रकृति में जो बदलाव आते हैं वो भगवान के दृष्टिपात के बाद आते हैं। तो महत्त्व आदि क्रम से प्रकृति ब्रह्मांड मूर्ति धारण करके जीवों का भोग्य हो जाती है, जीव भोगते हैं प्रकृति को। तो इसमें जीवों के अदृष्ट का भी संबंध है, यानी जीव जो कर्म करके आते हैं उस कर्म के अनुसार वो किस तरह से प्रकृति का भोग करेंगे, इसका भी संबंध है। इस प्रकार से भगवान की इच्छा से प्रकृति से ही महत्त्व और महत्त्व से अहंकार की सृष्टि होती है, अहंकार से सूक्ष्म भूत, इंद्रिय, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं का आविर्भाव होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के मतानुसार सात्विक, राजस, तामस, इन तीन भेद से अहंकार तीन प्रकार के हैं। सात्विक अंश से देवता, राजसी अंश से इंद्रिय और तामसिक अंश से पांच भूतों की सृष्टि होती है। सूक्ष्म भूत से क्रम क्रम से स्थूल भूत का आविर्भाव होकर ब्रह्मांड, जीव देह और जीव का भोग्य अन्न आदि का आविर्भाव होता है, है ना। यानी सूक्ष्म भूत धीरे धीरे स्थूल भूत का रूप लेते हैं और फिर ब्रह्मांड बनते हैं, फिर उन्हीं में जीव देहों का प्राकट्य होता है, फिर जीव जो खाएगा अर्थात अन्न आदि, इस रूप में स्थूल भूत प्रकट होते हैं। तो भूत और इंद्र आदि सृष्टि होकर भी अलग अलग थे, परंतु जब भगवान ने इच्छा व्यक्त की तब वो आपस में मिल जाते हैं, तभी शरीर की रचना होती है, वरना हो नहीं सकती। भगवान की इच्छा से परस्पर मिलित होकर शरीर रचित होकर भी भगवान के संबंध के अलावा उसमें चेतनता नहीं आती, यानी सब कुछ मिल गया, इंद्रियां आ गईं, इंद्रियों के भोग्य वस्तु आ गए, शरीर बन गया, लेकिन चैतन्यता नहीं आई, जीवनी शक्ति नहीं आई भगवान के संबंध के बिना, ये हो नहीं सकता। तो श्री भगवान ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और फिर

अंतर्यामी के रूप में उस ब्रह्मांड में प्रवेश करके ब्रह्मांड में चेतनता संचारित करते हैं और ऐसे ही समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर के शरीर को भी चेतन करते हैं। शिव भगवान ब्रह्मांड के हृदय में अंतर्यामी के रूप में रहकर ही सहस्त्र शीर्ष पुरुष के रूप में ब्रह्मांड के बाहर भी अवस्थान करते हैं। योगी गण इसी सहस्त्र शीर्ष पुरुष के ही अंग प्रत्यंग में 14 भुवन का चिंतन करके योग की धारणा करते हैं। तो ये जब बात समझ आ जाती है कि सब कुछ भगवान से ही प्रकटित है तो भगवान की तरफ मुड़ ही जाना चाहिए ना। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हे हरि बंदो तुआ पद नाए, तुआ पद परिहरि पाप पयो निधि, पार हो वो कैमन उपाय। कि हे हरि आपके चरण नैया का ही सहारा लेते हैं, आपके चरणों का त्याग करके ये पाप से भरा समुद्र ये भला कैसे पार हो पाएंगे। जावत जन्म हाम तुआ पद न सेविनो, युवती मतिशय मेली, अमृत त्यजी किए हलाहल पियनो, संपद विपद ही भेली। कि हाय प्रभु मैंने जितने भी जन्म लिए आपके चरणों की सेवा नहीं की और यहां वहां भटकता रहा, अमृत को त्याग करके हलाहल पिया, संपद अब विपद हो गया। भणहु विद्यापति लेहो मने गणी, कहिले की जानी होय काजे, सांजक बेरी सेर कोई मांगई, हेरई ते तुआ पाए लाजे। ये प्रभु अब तो जीवन की शाम हो गई, अब तो मुझे आप अपने चरणों में ले लीजिए। लेकिन ये बात कहते हुए भी मुझे लाज आती है क्योंकि ये उच्छिष्ट शरीर आपको दे रहे हैं, उच्छिष्ट मन, झूठा मन। तो लेकिन भगवान तो बहुत करुणामय है, भगवान तो हमेशा ही कहते हैं कि सृष्टि की मैंने, तुमने इसे भोगा लेकिन तब भी तुम प्रसन्न नहीं हो, मेरे चरणों में आके ही तुम प्रसन्न हो सकते हो। तो हमें भगवान की तरफ ही मुड़ना चाहिए, यही समस्त शास्त्रों का सार मर्म है। तो अब इसी के साथ आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा

एफएम रेनबो पर प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडीवेन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कल प्रदान करेंगे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ राज्य सरकार की अगले दौर की वार्ता आज दोपहर 12 बजे होगी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियन ने कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं। खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हुई। और खेल के मैदान से बैडमिंटन में आज आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यूहान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। तो ये थे अब तक के AIRFM रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी। दरियन से आर की आबो हवा में तैरती ध्वनि तरंगे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीटीएच के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप हमें सुन सकते हैं। बिल्कुल जी, संडे की सुबह है ये और मैं पहुंच चुका हूं आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त बोले तो दिल्ली तो थोड़ा रंगीला मुंडा अजय गोपाल लेकर आप भी का शो जिसे आप कहते हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। आप सभी को मोहब्बत भरी एक और सुबह और उम्मीद भरा एक और दिन मुबारक हो। कहते ना कि हर सुबह अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है। कल क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, उसे कुछ देर के लिए पीछे छोड़ दीजिए क्योंकि आज का दिन एकदम नया वाला है, एकदम कोरी किताब की तरह, और आज हम मिलकर लिखेंगे अपनी कहानी। तो अगर आप इस वक्त घर से निकल चुके हैं या फिर मॉर्निंग वॉक पर हैं या फिर इस समय चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं और अभी भी बिस्तर में ये सुबह आपके लिए अलसाई हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, बस समझ लीजिए कि सुबह की कंपनी में आप हमारे साथ हैं। बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए क्योंकि हम आपको देंगे हर वो खबर जो रखती है आपसे सीधा सामाजिक सरोकार और साथ ही साथ कुछ ऐसे बेहतरीन ट्रैक जिन्हें सुनकर आप कहेंगे वाह जियो मेरे लाल, मजा आ गया गोपाल। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो।
1: Let's start the fun!

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम कोशिश कर रहे हैं इस मौसम को आपके लिए और भी ज्यादा खूबसूरत बना दे दोस्तों, क्योंकि आज है संडे, बोले तो रविवार की सुबह। ऊपर आसमान में बादल है, कहीं हल्की बारिश की बूंदें, कहीं ठंडी सी हवा, और अगर आपके हाथ में इस वक्त चाय या कॉफी का कप है तो यकीन मानिए बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त आजय गोपाल, और अगले कुछ घंटे हमारी कोशिश ये रहेगी आपके साथ किस रविवार की सुबह को थोड़ा सा और खूबसूरत, थोड़ा सा और जानकारी से भरपूर और खूब सारी मुस्कुराहटों वाला हम बना सके आपके लिए। देखिए ना, सोमवार से शनिवार तक हम सब भागते रहते हैं, ऑफिस, स्कूल, मीटिंग, ट्रैफिक, टारगेट, और फिर रविवार आता और कहता भाई थोड़ा सा आराम कर लीजिए। तो आज अलार्म को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर बारिश हो रही है आपके आसपास तो खिड़की के पास बैठिए, चाय की चुस्की लीजिए और रेडियो की आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आज आपके लिए देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें और वो सब इंफॉर्मेशन रहेगी जो रखती है आपसे।

सामाजिक सरोकार 9 अगस्त की तारीख है दोस्तों आज। और अगर बात करें आज के इतिहास की तो आज है अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त 1942 को देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। 8 अगस्त को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजों से भारत छोड़ो का आह्वान किया और गांधी जी ने देशवासियों को मंत्र दिया, करो या मरो। और उसके अगली सुबह यानी कि 9 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। बल्कि ये संदेश देश के कोने कोने में से पहुंचा दोस्तों कि ये आजादी की लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये आजादी की लड़ाई इस देश में हर एक उस व्यक्ति की है जो इस देश से प्यार करता है, देश से मोहब्बत करता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज ही के दिन दोस्तों 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को युद्ध और परमाणु हथियारों की भयावहता का एहसास कराया। और फिर आता है 9 अगस्त 1965 जब सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था दोस्तों। आज सिंगापुर दुनिया के प्रमुख आधुनिक और विकसित देशों में गिना जाता है। एंड फाइनली हर साल 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। जी हाँ, आज है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। और जहाँ पर इंडिजीनियस पीपल्स की संस्कृति, अधिकार और उनकी पहचान के सम्मान की याद जो है वो दिलाई जाती है और कोशिश की जाती है कि हम अपने इस समृद्ध डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं सहेज के रखें। 102.6 MHz पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए, क्योंकि बहुत कुछ है हमारे पास आपके लिए और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन ट्रैक्स भी निकल चुका है आपके लिए। एक और बेहतरीन ट्रैक अभिजीत की आवाज़ में। स्टे ट्यून्ड।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। ये है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ दिल्ली तसवाना रंगीला मुंडे अजय गोपाल। प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम बात कर रहे दोस्तों आज की तारीख की, 9 अगस्त। और आज हम उस इतिहास, उस साहसिक अध्याय की बात करेंगे जो आज की तारीख से जुड़ी है और जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं काकोरी कांड की। बात है 9 अगस्त 1925 की। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और देश के क्रांतिकारी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें अपने आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को निशाना बनाया और सरकारी खजाना लेकर जा रही ट्रेन को तक पहुंचे। ट्रेन लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के निकट पहुंची, तभी क्रांतिकारियों ने उसे रोककर सरकारी खजाने पर कब्जा कर लिया। उस कार्यवाही में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी और रोशन सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनका उद्देश्य कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था बल्कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए संसाधन जुटाना था। ब्रिटिश सरकार ने इसके बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, मुकदमा चला, कई क्रांतिकारियों को कठोर सजाएं दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी और रोशन सिंह को फांसी दी गई। काकोरी कांड हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं थी, इसके पीछे अनगिनत लोगों का साहस, संघर्ष और बलिदान था। तो आइए आज उन वीर क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

बिल्कुल जी, है आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और आप हमारे साथ सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। संडे की सुबह है, हल्की सी अलसाई हुई है, बट आई एम श्योर कि अब धीरे धीरे जो शबाब है वो चढ़ रहा होगा इस मौसम का, इस छुट्टी वाले दिन का। और बहुत सारे काम आपने ऑलरेडी तैयार करके रखे होंगे आज जो निपटाने होते हैं जनरली, लेकिन मौसम जो है ना वो थोड़ा सा कह रहा है कि गो लेजी, और कुछ गलत भी नहीं है उसमें, समटाइम इट्स गुड टू हैव। और जहाँ तक बात हम कर रहे हैं दोस्तों इस मौसम की, वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये जो महीना ख़ास तौर से हम देखते हैं ना, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एक साथ हो रही होती है। मौसम का तकाजा तो है ही, बहुत सारी फेस्टिविटीज़ भी हमको हमारे आसपास नज़र आती है दोस्तों। ये

महीना, हालांकि इस बार रक्षाबंधन थोड़ा सा देर है, लेकिन ये महीना खत्म होते होते आप देखेंगे कि रक्षाबंधन जो है वो उसकी जो वाइब्स है वो अब बाजारों में नजर आने लगेगी हमको। साथ ही साथ कावड़ यात्रा चल रही है दोस्तों, और मौसम की वजह से जो रोड्स हैं उनकी कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए हमारे जो दरख्वास्त है, जो रिक्वेस्ट है आप सभी से, वो यही है कि जब आप रोड पर हैं, जब आप अपना वाहन अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी

साथ ही साथ जो धीरे धीरे फेस्टिव वाइब्स ऐड हो रही है हमारी लाइफ में, उसे इंजॉय करते जाए। और सबसे पहले, इनफैक्ट रक्षाबंधन से भी पहले, इट्स ऑल अबाउट इंडिपेंडेंस डे। बिल्कुल मेरे भाई, स्वतंत्रता दिवस का जो अपना एक अलग चाम है ना, अपना एक जो अलग जोश है, वो अब धीरे धीरे फिजाओं में घुलने लगा और आज से और भी ज़्यादा जो है वो अपने चरम पर पहुंचने लगेगा, क्योंकि आज से शुरू हो रही है तिरंगा यात्रा। बिल्कुल हर घर तिरंगा जो है वो आज से सेलिब्रेट किया जाएगा 17 अगस्त तक। तो आप भी अपने घर में तिरंगा लगाइए, अपने मोहल्ले में छोटी छोटी तिरंगा यात्राएं निकालिए और कहीं ना कहीं देश प्रेम की इस भावना को और मजबूत बनाइए। क्योंकि कोई भी देश अगर उस देश के व्यक्तियों से नहीं, जो ताकत है उसे उस देश के व्यक्तियों से मिलती है। तो बहुत ज़रूरी है कि वो देश प्रेम दिखाएं, पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम कितने मजबूत लोकतंत्र हैं, कितना बड़ा समृद्ध डाइवर्स जो ये देश है, उसके बावजूद कितनी यूनिटी इस राष्ट्र में है। और यही हम सब चाहते हैं। 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली दसौड़ा रंगला मुंडा जी गोपाल। अवे गुड मॉर्निंग एवरीवन।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 7:33, यानी कि आपकी हमारी भाषा में संडे सुबह के 7:30 हो चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर मैं रुकूंगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, एंड व्हेन वी से छोटा सा ब्रेक, ट्रस्ट मी आई मीन इट, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में वापस लौटूंगा मैं, इसलिए कह रहा हूँ कहीं जाएगा नहीं, रेडियो से बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: बिल्कुल जी, हमारे 60 सेकंड्स पूरे हुए और मैं पहुंच चुका हूँ वापस आपके लिए लेकर एक और बढ़िया वाली खबर। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ ये फ्रिक्वेंसी है जहां पर हम आप तक पहुंचाते हैं हर वो खबर जो रखती है आपसे सीधा सामाजिक सरोकार। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है, सारा का सारा शहर इसे रेडियो रोमियो के नाम से जानता है, गोपाल भट्ट आपके साथ। पहली पनाते नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट के जो एडमिशन्स हैं उसकी। दोस्तों, दाखिले के लिए तीसरे चरण की सीट आवंटन सूची जो है वो जारी कर दी गई है। छात्र 11 अगस्त तक ये जो सीट है ये स्वीकार कर सकते हैं। फीस जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 13 अगस्त है दोस्तों। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी जल्दी, अगर आप DM एडमिशन चाहते हैं और लुकिंग फॉरवर्ड

टू कंफर्म अ सीट इन इन द राउंड थ्री, तो जरूर फटाफट से आपको रिएक्शन यहां पर देना होगा दोस्तों। मिड एंट्री सीटें भी हैं तीसरे दौर के लिए, टोटल 11,274 नए छात्रों को सीटें मिली हैं दोस्तों, और खाली सीटें भरने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से जारी है। और एक और खबर यहां पर है कि बिना CUET के भी दाखिला हो रहा है। DU ने आदित्य महाविद्यालय और भागिनी निवेदिता कॉलेज, इन दो कॉलेजेस में खाली सीटों को भरने के लिए 12वीं के अंकों के आधार पर, 12th के मार्क्स के बेसिस पर ऑफलाइन दाखिले की एक विशेष छूट जो है वो दी है दोस्तों। तो अगर आप CUET में एनरोल करना भूल गए, डेट छूट गई थी, या फिर इस समय आपको लग रहा है कि जो तीनों लिस्ट निकल रही है मेरिट लिस्ट उसमें आपका स्थान पक्का हो तो आपको नजर नहीं आ रहा है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है कि आप अदिति महाविद्यालय या भगिनी निवेदिता कॉलेज जो है वहां पर 12th के मार्क्स के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ इग्नू में भी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इंक्लूडिंग MCOM, मल्टीपल कोर्सेज जो हैं वहाँ एडमिशन्स किए जा रहे हैं। तो DU के अलावा जो और बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पर भी अब धीरे धीरे एडमिशन्स खुल रहे हैं या खुल चुके हैं। तो बिल्कुल नेट इंटरनेट सो कॉल्ड का जमाना है, और आप लगातार अपने हिस्से की जानकारी छानते रहिए। हमारा काम है थोड़ी सी जानकारी के साथ आपको इक्विप करना कि आप किस तरह से अपने लिए उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल कर उसको प्रयोग कर सकते हैं। 102.6 MHz पर अब एक बहुत ही प्यारा वाला गाना लता दी की आवाज़ में, फ्रॉम द फिल्म चांदनी।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर शो है। मैं हूं आपके साथ दिल्ली तसवाना रंगला मुंडा अजय गोपाल। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 7:42 यानी कि आपकी हमारी भाषा में संडे सुबह के लगभग 7:45 होने को है। दोस्तों यहां पर मैं रुकूंगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि छोटे मतलब बहुत ही छोटे ब्रेक, बिल्कुल कहीं से भी कंपेयर करके देखिए, क्योंकि मैं लौट रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स में। कहीं जाएगा नहीं, रेडियो से बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया वाली खबर आपका इंतजार कर रही है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी बिल्कुल, हम आपको बताने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, क्योंकि आई एम श्योर कि सबसे ज्यादा चिंता इस समय अगर किसी को है तो वो यही कि बारिश कितनी ज्यादा होने वाली है। 16 साल का रिकॉर्ड ऑलरेडी दिल्ली में टूट चुका है दोस्तों, पहले 8 दिनों में आई शुड से, जहां तक बात दिल्ली की बारिश की है, और खास तौर से शुक्रवार की जो बारिश है उसने तो बल्ले बल्ले कर दी बहुत इलाकों में। और एट द सेम पॉइंट इन टाइम यस, कुछ परेशानियां भी हुई दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए जब बारिशें नहीं हो रही होती तो हम बहुत ही शिद्दत से रिक्वेस्ट करते हैं कि बारिश होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए। और जब बारिश होती है तो हमें लगता है कि यार इतनी ज़्यादा बारिश क्यों हो गई। और एट द सेम पॉइंट इन टाइम कभी कभी कहा जाता है अब तो बारिशें नहीं होती, पुराने ज़माने में क्या बारिशें हुआ करती थी। आई मीन देर इज समथिंग कनेक्टेड टू एवरी स्टेटमेंट, सम एक्सक्यूज, सम कंप्लेंट। आई बिलीव इट्स नॉट राइट। जो है जैसा है, जिस फॉर्म में हमारे पास पहुंच रहा है ना, वी शुड एक्सेप्ट इट एट टाइम्स। बहुत खुशनसीब है हम कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर अलग अलग मौसम जो है उसका मिजाज हमें कहीं ना कहीं महसूस करने को मिलता है, उसका आनंद हमें उसकी अनुभूति जो है वो हमें करने को मिलती है दोस्तों। इसलिए कंप्लेन अवॉइड करते हैं, यस हमें कहीं ना कहीं खुद अपने आसपास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना है, प्रशासन की मदद करनी है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन अगर बात आज के मौसम की करें तो आज बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही है दोस्तों। सेकेंड हाफ में लगभग 10-12% का ही प्रोडिक्शन है कि बारिश हो सकती है, इसका मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। इस समय ऑलरेडी लगभग 85-90% ह्यूमिडिटी लेवल चल रहा है दोस्तों। आज मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस। तो थोड़ा सा गर्मी रहेगी आज, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो आज घर में बैठिए, आराम कीजिए और जो फैमिली है उसके साथ समय गुजारिए। दैट्स अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट आइडिया। और इसके साथ साथ अगर आप बाहर निकलते भी हैं तो कोशिश कीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, क्योंकि रोड्स जिस तरह से कंडीशंस है, पानी अगर हल्का सा भी भर जाता है तो उसके बाद जो ट्रैफिक हो बहुत स्लो हो जाता है, और उसकी वजह से आपको भी दिक्कत होती है और बहुत सारे लोग जो आपके साथ चल रहे हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें भी दिक्कत होती है। और जब हमारे पास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, मेट्रोज हैं, और अगर आप उसका प्रयोग कर

सकते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए, सोच के देखिए ना, कोई रीजन नहीं मिलेगा आपको। 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये है आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। और अब जो गीत निकल रहा है उसे सुनकर आप कहेंगे वाह जी मेरे लाल, मजा आ गया गोपाल, नॉट इन 90s का ये ट्रैक आपके लिए बिल्कुल भी डुप्लीकेट नहीं है गाना, ट्रस्ट मी।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

बिल्कुल जी, है आकाशवाणी रेनबो, जहां पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 7:54, यानी कि 8 बजने को है संडे सुबह के, और यहां पर आई विल गो फॉर अ टी ब्रेक। बिल्कुल जी, लेकिन उससे पहले एक और बढ़िया वाली खबर आपको बताना जरूरी है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के अलग अलग स्थानों पर दोस्तों अगले महीने से 45 नई पार्किंग साइट्स जो हैं वो शुरू करने का फैसला किया है। इससे जो भीड़ भाड़ है वो थोड़ी सी कम होगी सड़कों पर, और बेहतर तरीके से जो पार्किंग है वो आपको मिल पाएगी। और ये जो साइट्स हैं एमसीडी के सेंट्रल जोन, साउथ जोन, करौल बाग जोन और वेस्ट जोन में होंगे। हम आपको बता दें दोस्तों कि एमसीडी के कुल 12 जोन है, और उनमें से इन 4 जोन में ये जो सुविधा है वो शुरू की जा रही है। और नई पार्किंग शुरू होने के बाद दिल्ली नगर निगम के पास ऑलमोस्ट 500 पार्किंग साइट्स जो हैं वो हो जाएगी, और इन पार्किंग साइट्स में लगभग 90,000 वाहन खड़े किए जा सकते हैं, जिसमें 4-व्हीलर, 2-व्हीलर, बसें और ट्रक जो हैं दोस्तों वो शामिल होंगे। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 1,00,000 गाड़ियों को पार्क करने की जगह जो है वो है, विच इज़ लाइक ऑथराइज्ड वन। और कई बार हम बिना कहीं रूल्स को देखे पार्क कर दिया करते हैं। अरे रिक्वेस्ट है आपसे, अवॉइड किया कीजिए, बड़ी मुश्किल होती है जी। सोच के देखो, आपने रोड पर बस सामान लेने जा रहा हूँ बोल के अपना स्कूटर जो है वो खड़ा किया, स्कूटी खड़ी की, और वो इस तरह से खड़ी की कि वो बाकी लोगों को परेशान करे, एंड देन पीपल स्टार्ट हॉन्किंग, उसकी अपनी एक अलग से जो समस्या है वो शुरू हो जाती है। तो इट्स एक्चुअली अ चेन प्रॉब्लम, अगर आप देखो तो चेन रिएक्शन जो है वो नजर आता है। 102.6 MHz पर आप हमारे

0: साथ सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैंने आपके लिए प्रोमो बजाया था ना, आपकी याद आती रही और बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास पहुँच रहे हैं और लोग कह रहे हैं आशु की याद आ रही है। तो मैंने कहा भैया बिल्कुल, मैं समझ गया मेरे जाने का वक्त हो चुका है और आशुतोष जी जो है वो ऑलरेडी स्टूडियो में आ चुके हैं। तो आई विल गो एंड आई विल हैव अ टी ब्रेक। राम शर के आशुतोष का टी ब्रेक पूरा हो चुका है।
1: एब्सोल्युटली, और आपने जो माहौल बनाया ना उसको कंटिन्यू करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश जरूर कर रहे
0: हैं। भाई साहब आप गदरा बजा दोगे।
2: थैंक यू।
1: So, stay tuned.
0: चलिए आप रहिए एकदम करीब आशु के और मैं चोरी चोरी यहाँ से निकलता हूँ। दोस्तों सुनते रहिए, सुनाते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन, बजाते रहिए। समझ जाएंगे इन शब्दों का प्रयोग मैंने क्यों किया। बिकॉज दिस इज द ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट ओनली ऑन द स्टेशन ऑफ द नेशन

नमस्कार, प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह आज गौरीमेडू स्थित पुलिस परीक्षण स्कूल मैदान में पुडुचेरी पुलिस को उपराष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ राज्य सरकार की अगले दौर की वार्ता आज दोपहर 12 बजे होगी। केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए जजों की नियुक्ति की। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होगा और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। खराब मौसम के कारण पहलगांव और बालतल दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है और मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज से मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 99 हुई। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: इस फीलिंग को हम हमेशा बरकरार रखते हैं और जिस तरह से गोपाल भाई ने इतना अमेजिंग म्यूजिक ट्रैक आपके लिए प्ले किए और उस सिलसिले को हम यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहेंगे इस घंटे में भी। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के इस घंटे को और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि मौसम बहुत ही औसम है और जब बारिश की बूंदें हमें छूती है ना तो एक अलग ही फीलिंग आती है। और इस मॉर्निंग में फिलहाल बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन उसकी फीलिंग बिल्कुल हमें अभी कुछ बीते दिनों से बहुत अच्छी अच्छी आ रही है। फिलहाल उसी फीलिंग को हम कंटिन्यू करेंगे नॉटी 90s के इस ट्रैक के साथ। फिलहाल ये ट्रैक कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में खास आपके लिए। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आशुतोष आपके साथ कनेक्टेड है, स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग।

एग्जैक्टली बिल्कुल, और हम भी बिल्कुल आपसे प्यार में हो जाते हैं जब आपसे जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं. फिलहाल आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर. और बिल्कुल आज के मौसम की बात कर लें तो बिल्कुल मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है आज 24 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस. और बारिश तो नहीं होगी लेकिन बादल बिल्कुल आपको लगातार नज़र आते रहेंगे आसमान में, और उसको एन्जॉय आप बिल्कुल कर सकते हैं. अपने मौसम जो है ना, इसको बहुत ही खूबसूरत मौसम है, इसको बिल्कुल एन्जॉय कीजिए और अपने इस दिन को और भी खूबसूरत नहीं, क्योंकि छुट्टी दिन और छुट्टी वाले दिन अगर आप अपने अपनों के साथ रहेंगे ना और मौसम इतना खूबसूरत हो जाए तो क्या बात है. और फिलहाल हम भी आपके साथ हैं, स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर.

बिल्कुल जी, धूम मचाने का टाइम बिल्कुल आ चुका है, क्योंकि आ चुका है हर घर तिरंगा अभियान 2026 और 9 अगस्त से 17 अगस्त तक आज से शुरू हो चुका है अभियान और देश भर में चलेगा खास तौर पर सभी के लिए। लेकिन ये सिर्फ तिरंगा फहराने का अभियान नहीं है, ये मौका है अपनी अगली जनरेशन को बताने का कि तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का कपड़ा नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारा गौरव, हमारी आज़ादी की कहानी है। और इस बार सेलिब्रेशन है और भी खास, क्योंकि देश मना रहा है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का गौरवपूर्ण अवसर। और बिल्कुल, तो अब आपकी बारी है, और घर की छत हो या फिर बालकनी हो या फिर आपके आसपास कोई भी सामुदायिक स्थान, सम्मान और नियमों के पालन करते हुए तिरंगा फहराइएगा। और हर घर तिरंगा के आधिकारिक पोर्टल यानी कि harghartiranga.com पर अपनी भागीदारी दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सेल्फी लेनी है आपको मोबाइल से और बिल्कुल वहाँ पोस्ट कर देनी है। तो इस अगस्त को एक प्रॉमिस जरूर कीजिएगा कि घर घर तिरंगा होगा और दिल दिल में भारत होगा। सो 9 से 17 अगस्त हर घर तिरंगा 2026 अभियान को आपको सफल बनाना है, और आप भी जुड़िए, अपनों को जोड़िए और तिरंगे की आन बान और शाम को सलाम करिए। फिलहाल आप सुनते रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग टेली एनसीआर, स्टे ट्यून्ड। और आपके साथ मैं हूं आशुतोष।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और बिल्कुल दिल्ली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और अगर आप रेगुलरली दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं तो एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको बिल्कुल नोट करके रखना होगा अपने एक बिल्कुल किसी नोटबुक में। और मेट्रो स्टेशन पहुँचने में जितना टाइम आपको लगता है ना, अब उसे थोड़ा सा आपको घर से पहले निकलना पड़ेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बिल्कुल कर लिया है। और आज से 9 अगस्त से 16 अगस्त तक दिल्ली मेट्रो में सभी स्टेशनों पर सिक्योरिटी चेकिंग और भी ज़्यादा सख्त रहेगी और बैगों की जांच होगी। सिक्योरिटी चेक में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो ख़ासतौर पर पीक आवर्स में आपको एक्स्ट्रा टाइम लेकर चलना होगा। सो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेट्रो में सफ़र करते हैं, कि अगर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज पहुँचते हैं और कहीं ज़रूरी काम से निकलते हैं तो लेट मत हो जाना जी, है ना, बिल्कुल थोड़ा सा पहले निकलना। और थोड़ा पहले निकलेंगे तो कतार में जाने से आप बच सकते हैं, और अगर कतार में फंस भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और CISF के जो जवान हमारे हैं ना, उनको उनके पूरा सहयोग करना, क्योंकि वो लगातार ड्यूटी पर रहते हैं और उनके साथ आप अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाता है लाइफ और बहुत ईजी सफ़र हो जाता है हमारा। और सुरक्षा जाँच बिल्कुल कोई रिकावट नहीं होती, ये हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तो इस इंडिपेंडेंस डे को मेट्रो में सफ़र को स्मार्ट भी बनाइए और सेफ भी बनाइए। क्यों, इतना तो मैं आपसे फेवर ले ही सकता हूँ ना। फिलहाल स्टे ट्यून्ड और सोनू निगम साहब बुला रहे हैं आपको। वेलकम।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

कल्पना कीजिए एक ऐसे दौर की जब पूरा देश गुलाम था और अंग्रेजी हुकूमत का शासन था पूरे देश पर, लेकिन हिंदुस्तान के दिल में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजा करती थी, आज़ादी, और सिर्फ आज़ादी। साल था 1942 और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज़ भारत से सहयोग चाहते थे लेकिन भारत को स्वतंत्र करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसे में महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ी हुकूमत के सामने रख दी एक बहुत ही स्पष्ट मांग। उन्होंने कहा भारत छोड़ो, और 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी जी ने देशवासियों को एक ऐतिहासिक मंत्र दिया कि करो या मरो। और अंग्रेजी सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी और 9 अगस्त की सुबह होते होते गांधी जी समेत देश के अनेक बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज़ों को लगा कि इन नेताओं को गिरफ्तार करके आंदोलन की आवाज़ दबा दी जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब ये आवाज़ नेताओं की नहीं पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन चुकी है। और इसी दिन बम्बई में ग्वालिया टैंक मैदान, जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है, यहीं से अरुणा आसफ अली ने तिरंगा फहराकर आंदोलन का शंखनाद कर दिया। और इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुए और विरोध तेज़ हो गया और छात्र, युवा, महिलाएँ, किसान और आम नागरिक, हर कोई आज़ादी की इस अंतिम लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल तत्पर था और सबसे आगे बढ़ रहे थे। और अंग्रेज़ी हुकूमत ने आंदोलन को दबाने के लिए गिरफ्तारियां की, गोलियां चलाई और कठोर दमन किया, लेकिन देशवासियों के हौसले को वो दबा नहीं सकी। महात्मा गांधी जेल में रहे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, लेकिन आज़ादी का संकल्प कमज़ोर नहीं हुआ। और यही वजह है कि 9 अगस्त भारतीय इतिहास में सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उस अदम्य साहस की याद है जब भारत ने अंग्रेज़ी हुकूमत को साफ कह दिया था कि अब बहुत हुआ, भारत भारतवासियों का है, अब हमें आज़ादी चाहिए। और इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में 9 अगस्त को मनाया जाता है अगस्त क्रांति दिवस। आइए अगस्त क्रांति दिवस पर हम संकल्प लें और याद रखें कि देश सबसे ऊपर है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जय हिंद।

0: संभाल के।
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: एब्सोल्युटली, हम भी बिल्कुल ऐसा ही फील करते हैं जब आप हमारे सामने आते हैं। हमें भी आपसे प्यार हो जाता है। और आप इमेजिन कीजिए कि सुबह ऑफिस के लिए निकल लें और सड़क खाली हो और गाड़ी भी बहुत ही स्मूथ चल रही हो, बढ़िया चल रही हो, और तभी सामने आ जाए लाल बत्ती। अरे यार क्या यार, फिर से ऐसे ही माइंड में आपके ख्याल आते हैं ना। लेकिन अब कुछ सड़कों पर फिर से ये कहानी बदलने वाली है और ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के मुद्रिका मार्ग और बाहरी मुद्रिका मार्ग और UER2 से जुड़े कॉरिडोर को सिग्नल फ्री बनाने की तैयारी बिल्कुल चल रही है। और योजना के तहत इन रास्तों पर मौजूद 17 ट्रैफिक सिग्नल्स हटाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो सके और बार बार रुकने की से जो रुकावटें पैदा होती ना उससे आपको राहत मिल सके। और बिल्कुल अब लाल बत्तियाँ भी कम होंगी, रुकना भी कम होगा और बिल्कुल सफ़र आपका बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। लेकिन एक बात याद आपको ख़ास तौर पर रखनी है कि सिग्नल फ्री रोड का मतलब ये नहीं होता है कि रूल फ्री रोड हो जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। स्पीड लिमिट का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, लेन पर डिसिप्लिन में चलना है आपको, और सड़क पर अपनी नहीं सबकी सेफ्टी के बारे में सोचकर चलना है। तो बिल्कुल आपका सफ़र अब स्मूथ होने वाला है, मंजिल तक पहुँचने का जो सफ़र है ना बिल्कुल समय वो बहुत ही कम हो जाएगा और मज़ेदार हो जाएगा बिल्कुल। और हमारी दिल्ली आगे बढ़ रही है, ट्रैफिक भी बिल्कुल स्मूथ हो जा रहा है और आप भी लगातार इस जो रेनी सीजन है ना इसको भी एंजॉय करते जाइए और बिल्कुल अपने घर से निकलते वक्त ट्रैफिक अपडेट ज़रूर लीजिए जब भी चलिए, और जो रूट है रूट मैप को भी ध्यान से देखिए और जल भराव के रास्तों से आपको बचना चाहिए, और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो बारिश के दिनों में यात्रा टाल देनी चाहिए, है ना। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए, और गाड़ी की जो स्पीड है ना उसको बहुत ध्यान से बहुत कंट्रोल में आपको चलाना है और सेफ्टी का बहुत ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। और जो टू व्हीलर्स है ना, जो टू व्हीलर चलाते हैं उनको हेलमेट और अपनी जो रेनकोट्स वगैरह हैं वो ज़रूर अपने साथ रखें, तो आपका सफ़र ना बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। फिलहाल ये जो गाना अगर बारिश में ना प्ले किया जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है क्योंकि छूट गया, कुछ मिस हो गया। फिलहाल आप सुनते रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग डेली NCR। आपके मैसेजेस भी शामिल करने वाला हूँ कुछ ही पलों में, स्टे ट्यून्ड, सुनते रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग, आशुतोष आपके साथ कनेक्टेड है।
1: ऐ मेरी हमरा मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूँ।
2: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे साथ जो है ना 90s के बिल्कुल एक क्या बोलते हैं चार्मिंग हीरो इस वक्त हमारे सामने खड़े हैं, और देर आपको लगने लगे लेकिन उनको बिल्कुल नहीं लगती है। क्यों?
1: आपको चाय की जरूरत आशु?
0: नॉट एट ऑल, क्योंकि इतना अमेजिंग मौसम, इतने अच्छे आपने ट्रैक चलाए, और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम फॉलो कर सकें, और आगे वाले घंटे में क्या कुछ होने वाला है, कुछ सरप्राइज है या फिर हमारे लिसनर्स को कुछ बताना चाहेंगे आप?
1: 9 to 10 AM every day on FM Rainbow, it's always धमाका, because this is all about non-stop music, back to back अंदाज में सुनेंगे, कोई नहीं होगा हमारे आपके और बेहतरीन म्यूजिक।
0: क्या बात है, तो ये फ्लो ऐसे ही बना रहे, और यही दुआ करता हूँ कि गोपाल भाई के साथ जो अगला घंटा है ना, बहुत ही अमेजिंग गुजरेगा आपका, और इस फ्लो को हम बिल्कुल टूटने नहीं देंगे आपके लिए। और कुछ कहना चाह रहे हैं? यस,
1: मैं बस ये बोल रहा था, घड़ी बहुत अच्छी लग रही है।
0: हाय हाय, क्योंकि आप घड़ियां घड़ी घड़ी बदल देते हैं, तो इसलिए वो घड़ियां हम ले लेते हैं, उसको वेस्ट नहीं होने देते हम
1: बिल्कुल।
0: थैंक यू सो मच। सो आप बस बने रहिए, और गोपाल भाई आपके साथ बहुत ही अमेजिंग शो यहाँ पर लेके आने वाले हैं। फिलहाल जो हमारे साथ जुड़े हैं लिसनर्स, उनको बिल्कुल शामिल कर लूँ। हमारे साथ राजकुमार अकोला महाराष्ट्र से कनेक्टेड हैं, पंकज भी अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं, और राजेश बालाजी मेरठ से इस वक्त हमें सुन रहे हैं, हिरेंद्र दास इस वक्त असम से हमारे साथ जुड़े हैं, डॉली इस वक्त हमें सुन रहे हैं दिल्ली से, और इस वक्त हमारे साथ हैं दुर्गेश नागन, ये हमारे साथ जुड़े हैं नागनपुर से, और साथ ही साथ एक और मैसेज हमारे पास आ रहा है, और ये हैं सुमन करवाकर सोनितपुर असम से। फिलहाल स्टे ट्यून्ड और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। फिलहाल आशुतोष चलता है, आपसे अनुमति लेता है गोपाल भाई के साथ, एंजॉय कीजिएगा इस अगले घंटे को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देशभर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ राज्य सरकार की अगले दौर की वार्ता आज दोपहर 12 बजे होगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी ट्रेन घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा, काकोरी ट्रेन घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है। अंतर्राष्ट्रीय जगत से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ शांति और बातचीत का रास्ता जारी रखेगा। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ा। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों को हथियारों का उत्पादन और उनकी आपूर्ति तेज करने का आदेश दिया है। मौसम से बारिश के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। खेल के मैदान से सकनिक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9th वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो ये थे अब तक के AIRFM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वंस अगेन वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड, दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में तैरती ध्वनि तरंगे है 102.6 मेगाहर्ट्ज और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीडीएच के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप हमें सुन सकते हैं। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है संडे सुबह के 9:03, यानी कि ये वो समय है जब हम आपसे मुखातिब होते हैं लेकर आपके लिए दिल के तराने गाने नए पुराने बैक टू बैक अंदाज में आज के जमाने के सुपरहिट ट्रैक, साथ ही साथ कुछ बेहतरीन ओल्डन गोल्डीज आपको मिलते हैं और वो भी बिना किसी एड ब्रेक के। तो बस बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए मेरे साथ। मैं बोले तो दिल्ली तो सोना रंगला मुंडे आज गोपाल अवे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले ईश्वर के चरणों में अपनी स्तुति जो है वो अर्पित करते हैं। कावड़ का मौसम है, सावन का मौसम है, शिव का मौसम है, तो नमो नमो तो होना ही चाहिए। 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप अंदाज में आपके लिए बैक टू बैक म्यूजिक।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर ईश्वर की स्तुति के बाद अब ये राष्ट्र स्तुति करते हैं, बिल्कुल वो भी जेंजी अंदाज में। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए, क्योंकि हम पहुंच रहे हैं आप तक लेकर बैक टू बैक अंदाज में दिल के तराने, गाने नए पुराने। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसौड़ा रंगला मुंडा जगोपाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

रिदम कंटिन्यूज। अब यूथ के अंदाज में यूथ का गाना आपके लिए निकल चुका है सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरिजीत सिंह गा रहे हैं ये ट्रैक फ्रॉम द फिल्म वॉर।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं बैक टू बैक अंदाज में दिल के तराने गाने नए पुराने, जहां पर कोई एड ब्रेक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैक टू बैक म्यूजिक और साथ में कुछ बढ़िया वाली खबरें और कुछ बेहतरीन ओल्डन गोल्डीज भी। और ये पड़ाव है ओल्डन गोल्डीज का ही, घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में। इस घड़ी वक्त हुआ है 9:18 यानी कि संडे सुबह के 9:15 हो चुके हैं आपकी हमारी भाषा में मेरे दोस्त। और जो गाना अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ओल्डन गोल्डीज से, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। इस ट्रैक की अगर हम बात करें तो ये जो फिल्म है ये 1972 में आई थी, 1972 में सीता और गीता, आशा भोसले और किशोर दा ने इस ट्रैक को गाया। पंचमदा का संगीत, आनंद बख्शी साहब के गीत बोल, और समझ गए ना आप, बिल्कुल कहीं ना कहीं उस जमाने के यूथ के फ्लेवर के साथ ये ट्रैक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। और साथ ही चल द मिलेनियल वॉइस

इस सुपर रिडंडेंट गोल्डीज के बाद अब आज के जमाने का एकदम लेटेस्ट हिट सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये है तनिष्क बागची गिफ्टी और हरनूर लेकर आपके लिए कोई ना 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, दिल्ली दसड़ा रंगीला मुंडा अजय गोपाल है आपके साथ। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन।

सोच के देखिए भाई साहब, नॉन स्टॉप अंदाज में इतना बेहतरीन म्यूजिक कहीं किसी और स्टेशन पे मिल सकता है आपको? सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए तो हम हैं स्टेशन ऑफ द नेशन। अब आपके लिए आदित्य रिखारी, साइबा, सुनते रहिए, सुनाते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन, बचाते रहिए। दिल्ली तो सोना रिंगला मुंडा अजय गोपाल आपको कह रहा है गुड मॉर्निंग।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 9:32, यानी कि आपकी हमारी भाषा में संडे सुबह के 9:30 हो चुके हैं भाई साहब। और ये पड़ाव है एक और ओल्डन गोल्डीज का, और अब जो ट्रैक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो है 1981 में आई फिल्म तूने और रंगीले, कैसा जादू किया। ये ट्रैक है कुदरत फिल्म का, ये गाना दोस्तों लता दी की आवाज़ में, पंचमदा का म्यूजिक और गीत है मजरूह सुल्तानपुरी साहब के। ये ट्रैक आपके लिए ऑलरेडी क्यू है, लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दूं कि मौसम की जहां तक बात है तो कुछ नहीं बदला हमारे लास्ट अपडेट से इस अपडेट के बीच में। दोस्तों 32 डिग्री सेल्सियस इस समय ऑलरेडी टेम्परेचर हो चुका है, ह्यूमिडिटी इज एज हाई एज 80% एट दिस मोमेंट, मैक्सिमम टेम्परेचर कैन गो अप टू 35 डिग्री एंड मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस। तो ये है आपके लिए मौसम का हाल, और बिना किसी ब्रेक के अब आपको लिए चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत हसीन दुनिया में लता दी की आवाज़ में, कुदरत फिल्म का ये ट्रैक।

0: बिल्कुल जी, इस बेहतरीन मिलेनियल ट्रैक के बाद आप एक बार फिर से जन अल्फा की तरफ लौटते हैं और सुनते हैं हे हरी राम।
1: इंडिया तू मेरा है अफसाना, लेकिन सो हैप्पी शेकिंग माय बॉडी, लेट्स सेट द वर्ल्ड ऑन फायर, हे हरी राम।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं दिल के तराने गाने ने पुराने नॉन स्टॉप अंदाज में बैक टू बैक म्यूजिक आज के जमाने के लेटेस्ट हिट साथ ही साथ कुछ बेहतरीन ओल्ड एंड गोल्डीज भी दोस्तों। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर जाना होगा, थोड़ा सा जल्दी जाना है मुझे, इसलिए निकलूंगा। काश ऐसा हो पाता हमारी जॉब में ना, पॉसिबल ही नहीं जी, हम ये कह नहीं पाते। आज मैं थोड़ा जल्दी निकलूंगा बिकॉज हमारे लिए समय समय है दोस्तों। लेकिन ये गाना सर्टनली इस शो का आखिरी ट्रैक होगा क्योंकि 9:45 से आप हम सुनेंगे हमारा एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम। लेकिन अभी के लिए इस बेहतरीन गाने के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ, नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़ में तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो, दिल से बोल रहा हूँ। चलिए जी, मैं रेनबो की सतरंगी दुनिया में कुछ और सतरंगी सपनों को बुनता हुआ फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए बस यूं ही चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए और दिल में हिंदुस्तान बनाए रखिए। शुभ दिवस, नमस्कार, जय हिंद।

0: आकाशवाणी रेनबो पर आइए सुनते हैं अब हमारा विशेष कार्यक्रम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
1: वी ब्रिंग यू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू क्लासरूम लर्निंग बाय प्रोफेसर वागेश्वरी देसवाल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज़्यादा उम्र का होगा। तो हम जब इस टॉपिक पे बात करें तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीजन कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे। इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं। यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है। तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं। इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं, देव स्वरूप हैं। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एल्डर एब्यूज, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें

एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उसको किस चीज की आवश्यकता है उस चीज का ध्यान रखा जाता था। लोनलीनेस की तो कोई बात थी ही नहीं, अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीजों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं उसमें, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे। तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे, सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था। पेरेंट्स जो थे, एल्डरली थे, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं। तो एक कल्चरल कॉन्टीन्यूटी भी बिलोंग थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था। लेकिन जैसे जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21 वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें वो कहता है, नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके डायमेंशंस बहुत ज्यादा हैं, और राइट टू लाइफ सिर्फ एक पशु की समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए, आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर चीज का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए। राम दुलार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें, मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 41, स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ ओल्ड एज। एंड आर्टिकल 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमजोर वर्ग हैं उन सब के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उन कमजोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं। तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी है जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों की को सुरक्षित रख सके। हमारे पास अन्य कानून भी हैं जैसे कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है जहां कि ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है। तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की। देखिए पहले हम कहते थे बेटी को जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन अब कानून क्या कहता है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी। और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे। तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए। इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है, पहले हम CRPC कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहां पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम

0: हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएं बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में। तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में हैं, लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं, तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ्स का प्रावधान है कानून में।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू क्लासरूम लर्निंग। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning.
2: Major areas जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, income security, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये ensure कर सकें कि बुजुर्गों के पास अपने लायक एक income है, तो उनको हम protect कर सकते हैं। फिर उनके health care एक बहुत ही major area of concern है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं, functional capacity उनकी impair हो जाती है। उनकी safety और security के लिए helplines बनाई जानी चाहिए, जो कि हमारे state में बना भी रखी हैं। Housing loans मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं, तो उनको री एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके, ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम करती रहे, उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें, अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे, बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं, वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, जरूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए, तो जहां वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज दी जाती हैं, बच्चे मिलकर उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स प्रेजेंटेशंस, वहां पर अलग अलग कॉम्पिटिशन किए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतम एक गेम डिजाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। हमें जरूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है, कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना, हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स, ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर एब्यूज तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटर जनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है, ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाएं, हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स नहीं, बच्चे समझे, वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीज़ों का असर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सके, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सके, उनको एजुकेट कर सके, तो वो चीज बहुत अच्छी होगी, चाहे स्कूल्स में कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स हैं लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जाकर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए, या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है, सारे के सारे हमारे पास पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का। उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा। वो ये नहीं समझते, परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी। आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं, बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी, आप तो समझ सकते थे। लेकिन अब देखिए, इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं ना, आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अपने घर में एब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूंढूं, या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफर को भी वॉइड कर सकती हूँ। तो वी हैव गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज कि लोगों को पता नहीं है, जिससे की वजह से वो घबरा जाते हैं। एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें ई कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बस ज़रूरी है अवेयरनेस की, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं अवेयरनेस, जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पे काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी।
1: You had been listening to a talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
3: Before we move on to the next show, let's take a look at the news headlines at this hour. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram. Union Home Minister Amit Shah to flag off Har Ghar Tiranga Yatra at Murga Theatre Signal in Puducherry today. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Jharkhand students protesting against alleged irregularities in JPSC and JSSC recruitment examinations to hold another round of talks with the representatives of state government in Ranchi today. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltan routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. Prime Minister Narendra Modi today pays tribute to all those who participated in the Quit India movement. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh calls on President of Kot Diwar, Ala Hassan Huatra, in Avizan and discusses growing India-Kot Diwar partnership. US considering ending provision that gives H-1B skilled foreign workers up to 60 days to find a new job after losing their employment. Ukraine reaches agreement with US on monthly deliveries of interceptor missiles for the Patriot air defense system. News from the weather desk, IMD issues orange.

0: Chuck Berry there with rock and roll music. And before we board our next flight to our next destination, let's take a small little breather.
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, न नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
4: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
4: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
0: वेलकम बैक, यू आर विद अस ऑन Akashvani Rainbow, and we are about to board our next flight for our next event. So we are now traveling to northern coast of Spain to a place called Cantabria. Here we get to catch a glimpse of the ethnic Cantabrians indulging in a vibrant celebration which highlights their rich cultural identity. They come alive with music, dance and festivities, creating a colorful and rich display of native pride. This celebration, called Cantabria Day, honors and preserves the cultural heritage of their region and also helps them maintain a distinct identity. We at Akashvani Rainbow also maintain a distinct identity with the variety of our shows and the music we play. We always strive towards giving you the best that we got.

0: And now we are headed for yet another break, and please do stay with us at Akashvani Rainbow. We'll see you on the other side in just a few minutes.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
0: Welcome back. You're with us on Akashvani Rainbow. And time once again to play out a Hindi song. And as we did mention earlier that today, on the occasion of International Co-Working Day, we are fixing the spotlight on some of the female actors who, while playing the supporting roles, held their own space, made a mark of their own, and won the admiration of the audiences. First, we talked about Anuradha Patel. And now we turn our attention to another actor who was not just an actor, but also a singer. Despite having faced the worst odds in her life, in very early in life, she lit up the screen with her presence and tickled our funny bones with utmost ease. And I'm sure each and every one of you must have guessed who I'm talking about.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे बुनकर भाई बहनों का उत्साह वर्धन किया है और हथकरघा जो है उसका महत्व उन्होंने बताया है। साथ ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो कि समर्पित किया गया है बुनकर भाई बहनों को, उसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाती हूं आज स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ से, और उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे मन की बात का वो हिस्सा जिसमें हमारे बुनकर भाई बहनों का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। आज स्टूडियो में हमें समय दिया है हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और विकास आयुक्त हैं हथकरघा से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
4: नमस्कार।
3: आइए अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मन की बात का एक अंश।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाता है। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है।

0: तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है, कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।
1: तो साथियों, आपने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उल्लेख करते हुए इसके संदर्भ में बुनकर भाई बहनों के विशेष हितों का भी एक तरह से उल्लेख किया है। तो इस बारे में हम और जानते हैं। आज इस कार्यक्रम में बात करते हैं उस धागे की जो सिर्फ कपड़ा नहीं बुनता बल्कि भारत की विरासत, संस्कृति और लाखों परिवारों के सपनों को बुनता है। सामाजिक ताने बाने का हिस्सा वो धागा जो हमारी विरासत भी है और साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी है। स्वदेशी आंदोलन से लेकर वैश्विक पहचान तक ये धागा भारत में और भारतीयता भर देता है। महात्मा गांधी ने चरखा चलाते हुए जन जन को जोड़ा और साथ ही स्वदेशी का महत्व बताया। स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ा और उसके बाद एक से एक बढ़कर उपलब्धि जो हमें हासिल हुई है और आज हम कहते हैं कि भारतीय वस्त्र की पहचान वैश्विक पहचान है, तो ये भी हमने हासिल की है अपने बुनकर भाई बहनों के परिश्रम से ही। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। डॉक्टर एम बीना, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी मैडम कि हमारा जो विभाग है और हमारा जो मंत्रालय है वो किस तरह से हमारे जो बुनकर भाई बहन हैं उनके लिए कार्य करता है।
2: ऑफिस ऑफ डीसी हैंडलूम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर काम करने वाला विभाग है एंड उसका पूर्णतः लक्ष्य ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द हैंडलूम सेक्टर। तो उसमें हमें हैंडलूम को भी बढ़ावा देना है और हैंडलूम के जो वीवर्स हैं उनकी भी मदद करना है, ये हमारा पूर्णतः लक्ष्य है
1: जी।
2: तो इसमें हमारे 2 प्रधान कार्यक्रम है। एक तो नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें हम देते हैं एंड टू एंड सपोर्ट वीवर्स को, स्किलिंग देते हैं उनको, मार्केटिंग असिस्टेंस देते हैं उनको, करखे नए करखे देते हैं उनको, वर्कशीट्स दिया जाता है, तो उस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। दूसरा, हम तभी बुनाई शुरू करेंगे जब हमारे पास धागा होगा
1: जी।
2: तो सबसे एक बड़ा चैलेंज है बुनकर को कि धागा रॉ मटेरियल को आपूर्तिकरण के लिए, तो इसके लिए हमारा दूसरा स्कीम है रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम जिसके तहत हम देते हैं 15% प्राइस सब्सिडी और ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी। तो ये तो हमारे बड़े कार्यक्रम है जो हर स्टेट में चलाया जाता है, हर क्लस्टर में चलाया जाता है, तो इसी से हमारे वीवर्स को बहुत मदद मिलती है
1: जी। जब हम बात करते हैं मैम वीवर्स की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर बुनकर अपने पूर्वजों से सीखकर ये कार्य कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते कई बार, तो उन्हें पता नहीं चलता कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है। हम चाहेंगे कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से वो सीधे आपसे सुने कि ऐसी क्या योजनाएं हैं जिनका लाभ वो उठा सकते हैं।
2: तो हमारे जो भी स्कीम्स है वो अंततः वीवर का ही इसमें बेनिफिट होता है
1: जी।
2: जो वीवर ये नहीं जानते, काफी वीवर्स जानते हैं, लेकिन जो वीवर अभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनसे मुझे ये बोलना है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, देखो एक वीवर को नॉर्मली क्या चाहिए, उनको तो पहले धागा चाहिए
1: जी।
2: तो धागे के लिए अगर आपको मदद चाहिए तो हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के तहत 2 तरह की सब्सिडी दिया जाता है। तो एक तो है आपका प्राइस सब्सिडी। प्राइस सब्सिडी उन धागों को दिया जाता है जो नेचुरल फाइबर्स है
1: जी।
2: जैसे कि कपास हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स है हम उनमें 15% प्राइस सब्सिडी देते हैं। जैसे कि अगर आप एक्रिलिक पे काम कर रहे हैं, आप सिंथेटिक पे काम कर रहे हैं, उसको भी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसमें हम बस ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी देते हैं, माने आपको धागा मिल जाएगा मिल गेट प्राइस। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रधान कार्यक्रम
1: जी।
2: तो दूसरा, आपका जो हथकरघा है अगर वो पुराना हो गया या फिर अगर आप बहुत आउटडेटेड लूम पे काम कर रहे हैं तो आपको नया हथकरघा की जरूरत है, तो वो हम आपको दे सकते हैं हमारे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। दूसरा, बहुत सारे घरों में अब ये देखा जा रहा है कि घर नए बन रहे हैं तो घर में टीवी आ गया, सोफा आ गया, सब आ गया, अब हथकरघा के लिए जगह नहीं है
3: जी।
2: तो हम एक वर्कशेड का भी एक कार्यक्रम है जहां हम 1,20,000 तक वर्कशेड में मदद देते हैं, जिसका 90% सरकार की ओर से जाता है और 10% वीवर को बेयर करना पड़ता है। तीसरा है, हमारे बुनकर काम करते हैं तो उनको लाइट की जरूरत है
3: जी,
2: तो इसके लिए सोलार लाइटिंग का भी एक कार्यक्रम है जहां हम अप टू 15,000 सोलार लाइट के लिए भी देते हैं। तो ये अपने घरों में बैठकर ये तीन आपको मिल जाएंगे
3: जी।
2: लेकिन इसके अलावा हमें डिजाइन डेवलपमेंट करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है
3: जी।
2: तो इसके भी कार्यक्रम है। अब मार्केटिंग में हमारे बहुत सारे मेले लगते हैं, आपने सुना होगा गांधी बुनकर मेला जो जिला स्तर पर होता है, फिर राज्य स्तर पर होता है, और नेशनल हैंडलूम एक्सपो अपने दिल्ली खाड में भी देखा होगा, हमारे बुनकर भाई लोग आते हैं। तो इन सब के लिए मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए एक तो अपना राज्य सरकार को भी हम पैसे देते हैं इसका आसूत्रण करने के लिए, तो आइदर राज्य सरकार द्वारा वो अप्लाई करें या फिर हमारा एक पोर्टल होता है दिल्ली हाट वगैरह, और जो भी नेशनल लेवल पे जो मिले होते हैं उसके एप्लीकेशन के लिए दे हैव टू अप्लाई थ्रू दी नेशनल पोर्टल। ये हो गया मार्केटिंग। नाउ अब ये है कि आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसमें देखो आजकल ना बहुत सारे फेक हैंडलूम भी चलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब तक बुनकर अपने प्रोडक्ट पे हैंडलूम मार्क नहीं लगाएगा तो हैंडलूम मार्क लगाने से जनता ये जान जाएगी कि ये ऑथेंटिक है
3: जी।
2: तो हैंडलूम मार्क के लिए भी प्रावधान है हमारे स्कीम में, हमारे लिए टेक्सटाइल कमिटी हैंडलूम ब्रांड का वो कार्यक्रम चलाती है। एंड कुछ ऐसे भी वीवर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं एंड जो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं
3: जी,
2: तो उसके लिए भी प्रावधान है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग स्कीम। तो वहाँ हमारा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा इनका चयन होता है और उनको बाहर भेजा जाता है। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारा अवार्ड्स
3: जी।
2: एक्चुअली ये जो 7 अगस्त है सारे वीवर्स इसको मनाते हैं क्योंकि उनको अवार्ड्स मिल जाते हैं उस
3: जी।
2: हमारे दो अवार्ड्स है, एक तो संत कबीर अवार्ड और दूसरा है नेशनल अवार्ड। तो ये जो अवार्ड का कार्यक्रम जो बहुत हुनरशाली वीवर्स है उनके सपोर्ट के लिए ये अवार्ड वाला कार्यक्रम है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है वेलफेयर ऑफ द वीवर्स
3: जी।
2: अब वेलफेयर में भी हमारे दो तीन हिस्से है, हमारा एक अम्ब्रेला स्कीम है और हम ये कोशिश करते हैं कि एंड टू एंड वीवर को मदद मिले। अब वेलफेयर में एक तो है हम इंश्योरेंस में हम उनका सपोर्ट करते हैं, तो दो प्रधान हमारे इंश्योरेंस प्रोग्राम्स है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना
3: जी।
2: तो इन दोनों में हम जो जो वीवर को प्रीमियम देना होता है उसका एक इन सुरक्षा बीमा योजना हम पूरा केंद्र सरकार देता है, एंड इन जीवन ज्योति बीमा योजना इट इज अ शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट
3: जी।
2: तो ये एक और है। दूसरा, अगर आप अवार्डी वीवर है और अगर आपके पास वो इनकम कम है तो आपको प्रति मास 8,000 रुपीस का असिस्टेंस मिलता है ओवर 60 इयर्स
3: जी।
2: तीसरा है हमारा स्कॉलरशिप, अगर एक बुनकर के बेटे को टेक्सटाइल में पढ़ाई करनी है चाहे वो डिग्री लेवल पर हो, डिप्लोमा हो या फिर हायर स्टडीज हो, तो वी सपोर्ट अप टू 2 लाख पर ईयर फॉर अ वीवर स्टूडेंट, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन पर वीवर। तो ये हो गया हमारा वेलफेयर कार्यक्रम। और लास्ट में एक और कार्यक्रम है हमारा मुद्रा स्कीम। तो वीवर्स मुद्रा स्कीम में हम देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग मार्जिन मनी, देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग इंटरेस्ट सबवेंशन, देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग क्रेडिट गारंटी। तो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव से स्कीम्स है, अगर बुनकर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत है हमारे हर राज्य में देयर इज अ बुनकर सेवा केंद्र
3: जी,
2: वीवर सर्विस सेंटर, वहां पर उनको ज्यादा जानकारी मिल सकती
3: है जी। यानी एक बुनकर के जीवन में जितने पहलू हो सकते हैं सभी इन योजनाओं के माध्यम से आपने कवर करने की कोशिश की है और हर जगह कुछ ना कुछ मदद उपलब्ध करवाई जा रही है
2: जी।
3: ये रोचक जानकारी हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए बहुत ही जरूरी थी और बातचीत हमारी जारी रहेगी। मैं यहाँ आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी ताकि हम श्रोताओं को सुनवा सकें।
2: मेरी मातृभाषा मलयालम है
3: जी,
2: लेकिन हिंदी के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। जब मैं छोटी लड़की थी तब से ये विविध भारती में जो भी गाने आते हैं तो एक्चुअली हिंदी जानने से पहले हिंदी के गाने। मैं सुनती हूँ
3: जी।
2: और आज के दिन आई थिंक मैं ये बोलूँ कि मोह मोह के धागे आज के सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है।
3: सच में
2: आई विल रेकमेंड दैट।
3: और इससे हम ये भी समझ सकते हैं मैम कि जो विभाग आप संभाल रही हैं उससे आपका कितना मोह है ये धागे।

0: तो इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान बनाने वाले उन धागों की जो हथकरघा से हम तक पहुंचते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संदर्भ में ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया है हथकरघा दिवस का। बुनकर भाई बहन जो हैं उनके कल्याण के लिए क्या योजनाएं हैं, इस बारे में हम जान रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से। आज की मेहमान इस कार्यक्रम में है डॉक्टर एम बीना, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम में। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जब किसी भी चीज को प्रचलित करने की बात करते हैं तो भारत में हम युवाओं को जरूर अपने साथ जोड़ते हैं क्योंकि व्यवहार में वो चीजें उन्हीं के माध्यम से प्रसार पाती हैं। ऐसे में क्या इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जो कि शैक्षणिक स्तर पर हथकरघा से या बुनकरों से जोड़ रही हैं छात्रों को, विद्यार्थियों को?
1: ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया। देखो, हम हथकरघा हमारी विरासत है, हैंडलूम में से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था एक जमाने में
0: जी,
1: लेकिन अब वो कम होता जा रहा है। लेकिन अगर ये लुप्त हो गया तो ये सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो ये नई पीढ़ी की ये जिम्मेदारी है कि इसको आगे लेके चले
0: जी।
1: तो उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं कि उसको पॉपुलराइज करने के लिए, एक तो हमने अपने ओर से कुछ शिक्षा संस्थान हमने स्टार्ट किए हैं। दीज आर द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी
0: जी।
1: तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजीज है और स्टेट गवर्नमेंट और 5 IHDs चलाते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षा दिया जाता है वो हैंडलूम पे और टेक्सटाइल पे बहुत अच्छे से, डिप्लोमा भी चलता है, डिग्री भी का भी कोर्स है। तो ये एक ओर से हम ये कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जो बुनकर सेवा केंद्र है तो उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि आसपास जो भी जनरल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ के बच्चों को जाके वो क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि वो देख सके। को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कभी हथकरघा को देखा ही नहीं है, कैसे चलता है वो उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन आई थिंक ये जो हम बात कर रहे हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लेता है कि आज का जो जमाना है वो सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलरिटी के ओर चल रहा है। एंड आज के जेंसी एनवायरमेंटली बहुत कॉन्शियस है, तो ये चाहते हैं कि देखो, हमारे जमाने में किसी का पहना हुआ हम पहने की वो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज ये ऐसा समाना आ गया कि जेंसीज थिंकिंग ऑफ रीयूजिंग कंजर्वेशन, तो बहुत उनकी सोच में क्रांतिकारी चेंजेस आ रहे हैं। द मैसेज दैट वी आर गिविंग टू द यूथ इज हैंडलूम में जो बनता है इट इज कार्बन न्यूट्रल, बिकॉज वीविंग में तो हम पावर यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है इट इज वेरी सस्टेनेबल, इट इंटीग्रेट सर्कुलरिटी। तो ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं अपने यूथ को। खासकर हमारा एक प्रोग्राम भी ऐसा ही है, वीव द फ्यूचर
0: जी।
1: तो वीव द फ्यूचर में हम जो अपसाइक्लिंग रिसाइक्लिंग में जो ब्रांड्स हैं जो हैंडलूम में काम करते हैं, हम उनको मिला के दिल्ली हाट में, कभी क्राफ्ट म्यूजियम में, ताकि ये लगातार ये कॉन्वर्सेशन चलता रहे कि हैंडलूम इज इंटेग्रल टू सस्टेनेबिलिटी। तो ये हो गया द सस्टेनेबिलिटी कॉम्पोनेंट ऑफ अट्रैक्टिंग यूथ। बट दूसरा, जब तक हम साड़ी पर ही रहेंगे तो यूथ थोड़ा सा इसमें आने से कतराएंगे। तो इसीलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करें। तो हमारे मेरे बुनकर भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप साड़ियाँ बहुत अच्छे बनाते हैं, मैं बहुत पसंद भी करती हूँ, लेकिन जमाना आ गया है कि आप अपना फैब्रिक को नए तरीके से प्रेजेंट करें, उसमें जो आज के जेंसी पसंद करते हैं
0: जी,
1: तो उस तरह का भी आप काम करें। हमारे विभाग से डिजाइनर्स मौजूद हैं क्लस्टर लेवल पे, तो उनकी मदद लेके अब नया काम करने की भी कोशिश करें
0: जी।
1: और दूसरा, मैं बुनकर भाइयों के बच्चों से, जो युवा पीढ़ी है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीविंग नहीं भी आती हो, लेकिन अपने पिताजी से, अपने माताजी से उनका जो हुनर है वो अंडरस्टैंड करें और उसको एटलीस्ट इंस्टा पेज तो वो बना सकते हैं
0: जी,
1: वो एटलीस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग तो वो कर सकते हैं। तो ये मेरी विनती है देश की युवा पीढ़ी से
0: जी। और कुछ समय पहले हमें एक छात्र से बात करने का अवसर मिला था, तो उन्होंने यही बताया कि NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, उन्होंने कहा कि इस तरह के संस्थान बड़ी भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि जब फैशन शोज होते हैं

0: हम फैशनेबल कपड़े बना रहे होते हैं तो उनके पैटर्न्स में भी हम इस तरह की वीविंग्स यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने कहा कि जो बुनकर हैं उनके बच्चे भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
1: एक्चुअली आपने अच्छा देखो, देयर इज अ निफ्ट नाम की संस्था है, तो निफ्ट के साथ हमने एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हम चलाते हैं, यह है क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव। तो निफ्ट का हर एक बच्चा किसी न किसी आइदर हैंडलूम क्लस्टर या हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर में जाते हैं, वो समझते हैं कि ये कैसे किया जाता है, एंड कुछ इनपुट्स वीवर को भी मिलता है, कुछ सीख बच्चे को भी मिलता है। एंड इस एसोसिएशन से हमने ये देखा कि एक बच्ची थी जो गुजरात में निफ्ट में पढ़ी थी, तो उसके बाद आफ्टर स्टडिंग शी हैज स्टार्टेड एन ई कॉमर्स पोर्टल फॉर ऑल द वीवर्स, एंड इतना अच्छा उसका टर्नओवर आज आ गया है, इतना सक्सेसफुल हो गया है। दिस इज सच अ लवली एग्जाम्पल कि बच्चे जब युवा द यंग ब्लड एंड इनोवेशन कम्स इनटू द पिक्चर, इट रियली ट्रांसफॉर्म्स द एंटायर सेक्टर।
0: जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथी जो इस समय हमें सुन रहे हैं वो ये समझेंगे कि उनकी ऊर्जा की जरूरत हमारे बुनकर भाई बहनों को भी है और उनके नए विचारों की जरूरत भी है। तो मैम इसी मोड पर आपकी पसंद का एक और गाना,
1: हमारे केरला से एक बहुत मशहूर सिंगर है येशुदास, केरला में तो वो मशहूर है ही, लेकिन उनके जो हिंदी के गाने हैं वो भी बहुत पॉपुलर है
0: जी।
1: तो उनका एक गाना है मधुबन खुशबू देता है, बहुत पसंदीदा गाना है।
0: बहुत ही अच्छा गाना आपने चुना है, यही गाना हम सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

0: इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, आईएएस ऑफिसर हैं मैम और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, विकास आयुक्त हैं हथकरघा की। और आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान तक पहुंचे उन धागों की जो हमारे बुनकरों को समाज से जोड़ते हैं और समाज के अलग अलग वर्गों को भी आपस में जोड़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे मैम इस गाने से पहले कि किस तरह से हम ट्रेंड पे ला सकते हैं अपने हैंडलूम को। आजकल जब युवा आपस में मिलते हैं या पहले भी हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, हमारे घर अतिथि आते हैं या हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ भेंट हम देते हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगी हम हथकरघा से बुने हुए उत्पादों को कैसे शामिल कर सकते हैं?
1: इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं।
0: जी,
1: वे जब भी बाहर जाते हैं या फिर बाहर से कोई लीडर्स इंडिया में आते हैं तो हमेशा उनका गिफ्ट जो है आइदर हैंडलूम का होता है या फिर हैंडीक्राफ्ट का होता है। तो हम तो बोलते हैं कि हमारा सबसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर अपने प्रधानमंत्री जी ही हैं।
0: जी,
1: तो वो एक्चुअली अच्छा उदाहरण है। जब भी हमें तोहफा देना होता है
0: जी,
1: तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में जो दिवाली पर गिफ्टिंग करते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं, तो अपना जो ट्रेडिशन है उसको भेंट करें। तो कुछ लोग करते भी हैं एंड कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने सीएसआर के द्वारा कंपनीज खड़े किए हैं या फिर संस्थाएं खड़े किए हैं फॉर इंडियन हैंडलूम्स, चाहे वो आदियम हो चाहे तनेरा हो, तो ऐसे भी प्रयास हो रहे हैं। बट गिफ्टिंग के लिए दिवाली अब आने को है तो अभी से आप अपना प्रोक्योरमेंट शुरू कीजिए, अपना कहने हम जो भी करें अपने आइडेंटिटी को याद करें। जब हम आइडेंटिटी को याद करेंगे, अपने रूट्स को याद करेंगे तो हथकरघा तो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है।
0: जी, ऐसे में मैम हमारे संस्थान का भी मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगी, हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारे जो भी अतिथि होते हैं उन्हें हम अंगवस्त्र जो है वो हैंडलूम से दें और सिर्फ पौधा भेंट करें, बाकी जो प्रतीक चिन्ह है उनके अतिरिक्त।
1: बहुत अच्छा,
0: तो ये भी हम आपस में ध्यान रख सकते हैं। और जेन ज़ी जो है, जैसा कि मैम ने कहा कि बहुत तेजी से आप चीजों का प्रसार करते हैं, तो ऐसे में जो अपनी पहचान है, हर राज्य के अपने अलग ऐसे धागे हैं जिन पर हमें गर्व है, हर राज्य का अलग पैटर्न है, तो हम उसके बारे में जानें और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मैम हम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करते हैं ऐसे में इस बात पर भी विशेष ध्यान देते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचे और हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो, ऐसे में क्या इस तरह की नीतियां हैं कि हमारा हैंडलूम विदेशी बाजारों में भी अपनी पहचान भी बनाए रखे और ज्यादा विस्तृत पहुंचे?
1: हैंडलूम का जो सस्टेनेबिलिटी एंगल है वो मोर देन इंडिया, एक्चुअली फॉरेनर्स उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं
0: जी।
1: लेकिन पहले हमारा ये इश्यू था कि हमारे पास ना कोई रिपोर्ट था ना कोई स्टडी था जो एक्चुअली ये बता सके कि हैंडलूम पे जब कपड़े बुनते हैं तो उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है
0: जी।
1: सो लास्ट ईयर हमने इसी अराउंड दिस टाइम IIT दिल्ली द्वारा हमने एक स्टडी संचालित किया था, तो उसका ये रिजल्ट आ गया है कि अगर हम हैंडलूम पे कपड़ा बुने कंपेयर टू मिल मेड, इट इज अराउंड लेस देन 1/4 ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट। तो ये जो है, एंड इसका सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंटरनेशनल मार्केट्स अब पूरी तरह दे आर लुकिंग एट सर्कुलरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, खासकर यूरोप में जो देश है, UK जो है वो बहुत इस पर इंसिस्ट करने वाले हैं इन द कमिंग ईयर्स। तो अभी एक्सपोर्टर्स आर ऑल्सो कॉन्शियस। हाल ही में भारत टेक्स हुआ था जो हमारा एक बहुत बड़ा

0: इवेंट था जो एक्सपोर्ट पे फोकस करता था, तो वहां पर भी ये बार बार हर मीटिंग में ये दोहराया गया कि सर्कुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द चैलेंज बिफोर अस इज टू इंटेग्रेट सस्टेनेबिलिटी इनटू द हैंडलूम. तो इनहेरेंटली सस्टेनेबल है, लेकिन उसको सर्टिफिकेशंस, क्वालिटी चेकिंग एंड वो एक्सपोर्टेबल लेवल तक उसको लेके आना है. तो हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसमें बहुत काम कर रहे हैं. एंड हम ये भी अभी एक नेक्स्ट ईयर फ्रांस में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, प्रीमियर विजन. तो इंडिया हैज द हैंडलूम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ अ पार्टनर फॉर प्रीमियर विजन एंड वी विल बी शोकेसिंग इट बिफोर एन इंटरनेशनल ऑडियंस कि हमारा हैंडलूम क्या है, विरासत क्या है, प्लस उसका सस्टेनेबिलिटी एंगल क्या है.
1: एक बड़ी समस्या आजकल व्यवहारिक तौर पर ये आती है मैम कि घर में आम तौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके पास भी, बच्चों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं और ऐसे में फैशन भी तेजी से बदलता है तो हमारा वार्डरोब चेंज होता रहता है. एक चुनौती होती है कि जो पुराने कपड़े हैं जो पहनने की स्थिति में है उनका हम क्या करें. क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि अगर हथकरघा के उत्पाद हैं तो वो कहीं उचित माध्यम से पहुंचाए जा सके और उनका रीयूज हो सके बजाय इसके कि हम उन्हें फेंके या किसी को दें.
0: एक्चुअली ये रीयूज का कल्चर, रिसाइकलिंग का जो कल्चर है, तो हाल ही में हमने एक इवेंट किया था वीव द फ्यूचर. तो वीव द फ्यूचर में हमने क्या किया, वी केप्ट अ बॉक्स
1: जी,
0: ताकि आपके जो यूज्ड कपड़े हैं आप वहां दे दीजिए. एंड वी कलेक्टेड यूज कपड़े एंड वी स्टार्टेड, इट इज गिवन टू आवर रिसाइकलिंग सेंटर्स. तो अभी ऐसे प्रयास चल रहे हैं हमारे जो सिटीज में, कुछ ऐसे चल रहे हैं. एंड हमने एक ऑक्शन भी किया था जो हमारा कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने कुछ कपड़े डोनेट किए थे, तो उसका हमने ऑनलाइन ऑक्शन भी किया था जो भी बहुत सक्सेसफुल था. तो ऐसे प्रयास हो रहे हैं एंड खासकर हैंडलूम्स का इससे जो मिलता है कि ऐसे अगर रिसाइकल धागे होते हैं वो नॉर्मली जो बड़े मशीन में वो चलेगा नहीं, द बिग मशीन में वो ज्यादा ब्रेकेज और श्रिंकेज होता है, तो उसके लिए हथकरघा ही मोर सूटेबल है. तो इसलिए हैंडलूम एंड ये रिसाइकलिंग सब साथ में लेके चलते हैं. एंड वीव द फ्यूचर के अभी तक हमने 4 एडिशंस किए हैं, अब ये 5th एडिशन विल बी लॉन्च्ड अलोंग विद द नेशनल हैंडलूम डे.
1: जी, हमारी एक ऑब्जर्वेशन ये भी है, जैसे गांधी स्मृति और राजघाट पर जो संस्थान है वो चरखे का उपयोग अभी भी करते हैं खादी को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को ये सिखाने के लिए कि कैसे काता जाता है, कताई क्या होती है, कतान किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. क्या इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं जहां पर वॉलेंटरली जाकर युवा जो हैं वो सीख सकें कि हथकरघा कैसे चलाना है भले ही वो उनका पेशा नहीं है.
0: एक्चुअली आपका सजेशन बहुत अच्छा है एंड अभी सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम में हमारा एक एग्जीबिशन है द वीव्स ऑफ इंडिया. तो वहां पर वी हैव सेट दी स्मॉल लूम्स, हम उसको टॉय लूम्स या एक्सपीरियंशियल लूम्स हम बोलते हैं, बहुत छोटे से लूम्स है
1: जी.
0: तो हम वहाँ बहुत इंटरेस्ट भी है, छोटे बच्चे महिलाएं सब जाके ट्राई आउट कर रहे हैं. देखो वो इतना आसान भी नहीं है, द एक्चुअल जो हथकरघा है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बट ये सिंपल थिंग ऑफ यू नो जॉइनिंग अ वार्प एंड वेफ्ट जिससे कपड़ा निकलता है वो एक्चुअली हम भी कर सकते हैं. तो उसके लिए ऐसे एक्सपीरियंशियल चीजें हम अपने जो एग्जीबिशंस या एक्सपोस होते हैं हम उसमें वो शामिल कर रहे हैं
1: जी, उसमें शामिल किया जा रहा है. आमतौर पर ये होता है हैंडलूम पहनना सभी चाहते हैं और हैंडलूम की जो साड़ियां होती हैं बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही सुंदर होती हैं, लेकिन क्योंकि वो हाथ से तैयार की गई हैं और बहुत लंबा समय लगा है बुनकर को उसे तैयार करने में, तो इसलिए वो अक्सर महंगी भी होती हैं. अभी तक हमने जो बात की वो इस तरह की योजनाओं की है जिनका लाभ बुनकर उठा सकते हैं. क्या जो खरीदार हैं उनको भी हैंडलूम खरीदने पर कुछ विशेष प्रोत्साहन मिल सकता है?
0: एक्चुअली मिनिस्ट्री का ये थॉट है कि कस्टमर को, हालांकि कुछ राज्य सरकार सब्सिडी दे रहे हैं
1: जी,
0: बट हमारा ये यू नो व्हाट वी आर रिक्वेस्टिंग द कंज्यूमर्स इज टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट. देखो जब हम एक बार देखें कि ये कैसे बनता है
1: जी,
0: एक बार एक बुनकर के घर में जाएंगे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, इस यू नो इंक्रीज प्राइस देने में कोई हिचक नहीं होगी. तो द स्टोरी ऑफ द वीवर, जब आप ये समझ सके एक प्रोडक्ट पे अगर उसमें QR कोड स्कैन करने पे आपको मालूम पड़ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन से गांव से आ रहा है, वहां से एक बुनकर की कारीगरी है. देखो हम सोचते हैं कि वीविंग इज इजी, इट इज नॉट इजी
1: जी,
0: इट इज एडवांस्ड मैथमेटिक्स. मैंने ये जो वॉर्प एंड वेफ्ट का जो हिस्सा है एंड उसमें देखो वॉर्प एंड वेफ्ट तो हम कर सकते हैं लेकिन उसमें डिजाइन बनाने के लिए द काइंड ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स दैट हैज टू बी डन इज रियली कॉम्प्लेक्स. तो माय पॉइंट हियर वुड बी कि हमें खरीदना चाहिए एंड जो एक्चुअली वीवर को सीट एज अ प्रीमियम आर्टिकल,

0: सो दैट वी रीच द प्रीमियम मार्केट एंड ताकि वीवर को अच्छा वेजेस भी मिले. एट द एंड ऑफ द डे वीवर को अच्छा वेजेस मिलना चाहिए. नाउ एज फार एज अ कस्टमर इज कंसर्न, अगर आप वीवर से डायरेक्टली खरीदेंगे तो यू विल गेट इट एट अ रीजनेबल प्राइस. अगर बीच में मिडल मैन आ जाए, बीच में एक मार्केटिंग एजेंसी आ जाए, तो प्राइसेस ज्यादा सा इंक्रीज होगा. तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि हम जो मेलाएं लगाते हैं, जब भी एक अपॉर्चुनिटी आ जाए, जब आप वीवर से डायरेक्टली खरीद सके, तो आप उसका लाभ उठाए. दूसरा, मंत्रालय ने एक वेबसाइट बनाया है indiahandmade.com. इंडिया हैंडमेड एक ऐसा पोर्टल है जहां वीवर खुद अपना डालता है, वीवर पुट्स हिज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, तो वहां पर भी आपको बहुत रीजनेबल रेट्स मिल जाएंगे. तो इन सुविधाओं का आप इस्तेमाल करें.
1: जी, एक अनुभव मेरा इस बारे में बहुत अच्छा रहा कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं, बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं कि वो जो स्पॉट रखते हैं घुमाने के लिए, साइट सीइंग के लिए ले जाते हैं, उसमें उस जगह के बुनकरों को भी शामिल किया जाए. तो हमने एक इस तरह का दौरा किया और उसमें हमने ये जाना, जैसे अभी आपने कहा कि कितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, उसमें बुनकर ने हमें बताया कि जो हमारा राज्य का पेड़ है हम उसकी पत्तियां इसमें लगाते हैं, जो हमारा राज्य का पक्षी है हम उसकी छवि इसमें देते हैं, और इस तरह से हम अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं अपना काम करते करते. तो ट्रैवल एजेंसीज भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. आप क्या सोचती हैं इस बारे में?
0: बहुत अच्छा सोच है, बिकॉज देखो टूरिज्म एंड हैंडलूम
1: जी
0: का बहुत अच्छा मेल हो सकता है. तो हमारा एक कार्यक्रम भी है, यह है क्राफ्ट टूरिज्म विलेज
1: जी.
0: तो क्राफ्ट टूरिज्म विलेज में हम ये करते हैं कि जहां टूरिस्ट फुटफॉल है, अगर अगल बगल में कोई हैंडलूम का क्लस्टर है, हम उसको लिंक करते हैं एंड वहां, ताकि टूरिस्ट वहां जा सके, वीवर के घर जा सके, वीविंग का कोई एक्सपीरियंस ले सके, एंड एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हो, उनका मार्केटिंग भी हो
1: जी.
0: तो अभी देश में हमारे 6 क्राफ्ट हैंडलूम विलेजेस ऑलरेडी चालू हैं और 3 में अभी काम चल रहा है. तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि टूरिज्म का इंटेग्रल पार्ट है ट्रेडिशन एंड हेरिटेज. आपने सही पहचाना कि देखो जो धागा यूज किया जाता है, जो मोटिफ करते हैं, जो रंगाई करते हैं, मतलब एवरीथिंग इज लिंक टू द कल्चर ऑफ दैट एरिया. तो इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम उसको छोड़ ना दें, हम उसको मेंटेन करें, उसको चेरिश करें, उसको आगे लेके जाए
1: जी. तो इसी मोड पर मैम आपकी पसंद का एक और गाना.
0: अभी एक रिसेंटली एक मूवी आया था कारवा
1: जी,
0: तो जहाँ हमारा एक यंग स्टार है दुलकर, तो जो कि ममूटी जी, बहुत रिनाउंड मलयालम एक्टर है, उनका बेटा है दुलकर, एंड देयर इज अ वेरी नाइस सॉन्ग इन दैट, एक छोटा सा फसाना
1: जी,
0: वो प्ले करिए
1: जी. बिल्कुल, यही गीत सुनवाते हैं.

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस गाने के बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हम अपने बुनकरों की दिनचर्या को जान रहे हैं, उनके जीवन की उपलब्धियां भी समझ रहे हैं और उनके संघर्ष भी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान बनाने वाले हमारे देसी धागों की राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संदर्भ में। और कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान हैं आईएएस ऑफिसर डॉक्टर एम बीना, आप डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम से। मैम, अभी हमने बात की कि किस तरह से हम युवाओं को जोड़ सकते हैं हैंडलूम से और किस तरह से जो बुनकर हैं वो भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारी चीजें आसानी से पा रहे हैं, तो कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए?
1: एक्चुअली हैंडलूम जो है वो ट्रेडिशनल है, बट ये नहीं है कि उसमें टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन नहीं है। एक्चुअली हैंडलूम को स्ट्रेंथन करने के लिए वी शुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो उसमें एक दो प्रयास हमारे मिनिस्ट्री की ओर से चल रहा है। तो एक तो है कि हैंडलूम टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाने के लिए एक संस्था का अभी हाल ही में उसका इनॉग्रेशन हो रहा है
0: जी।
1: वो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी, जो हम आईआईटी दिल्ली के साथ हम कर रहे हैं, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी में, बेटर लूम्स में, बेटर एर्गोनॉमिक्स में, नए डिजाइन में, नए डाइस में, इन सब में रिसर्च करे और उस रिसर्च का जो नतीजा है हमारे व्यूअर्स को दे। दूसरा, हम फ्रॉम द यूथ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, हम एक लूम हैकाथॉन हमने अनाउंस किया था
0: जी।
1: काफी उसमें रिस्पॉन्स भी आया है एंड दैट इज ऑल्सो वन वे जहां हम अच्छे आइडिया समेट सके ताकि हम हैंडलूम सेक्टर में यूज करें
0: जी।
1: तीसरा है, हमने अभी एक पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया है। देखो, ये ट्रेसेबिलिटी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन हैंडलूम सेक्टर, कि एक्चुअली वो हैंडलूम पे बना है, कहाँ बना है, कैसे बना है। तो इसके लिए एक आईओटी डिवाइस है जो लूम पे लगाया जाता है एंड ये जो डिवाइस है वो एक तो वो जीआई टैग्ड है, तो ये कहाँ पे बुन रहा है वो ऑटोमेटिकली वो डेटा आ जाता है। दूसरा, जो लूम का जो मूवमेंट है वो उसको कैप्चर करता है। देखो, अगर पावरलूम में है तो मूवमेंट इज एंटायरली यूनिफॉर्म, अगर हाथ से बन रहा है तो एक मूवमेंट में ज्यादा फोर्स होगा, एक में कम होगा। तो इन अ वे इट इज ऑथेंटिकेशन, इन अ वे इट इज जियो टैगिंग एंड कितना धागा बन रहा है एक दिन, वो पूरा डेटा उसमें कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये भी हम एक बड़े स्तर पर पायलट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा एंड अब नए फेज में हम 10,000 ऐसे सच डिवाइसेस हम लेके आ रहे हैं
0: जी। हथकरघा घाट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
1: हैंडलूम हार्ट इज आवर ड्रीम प्रोजेक्ट, जहाँ हम एक अच्छा सा एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स जैसे इन दिल्ली वी आर वर्किंग फॉर दैट, ताकि एक अच्छा सा रिटेल स्पेस मिले जो हमारे हैंडलूम के बुनकर को, प्लस जो स्टार्टअप्स यहाँ काम कर रहे हैं, जो निफ्ट के यंग डिजाइनर्स पास आउट हो रहे हैं, उन सबको मिला के हम एक हैंडलूम हाट का भी आयोजन कर रहे हैं
0: जी। क्या बुनकरों से संवाद का कोई सीधा तरीका है जहाँ वो अपनी समस्याएं भी रख सके, कोई ऐसा मंच उपलब्ध करवाया गया है?
1: दर इज सम

0: कॉल द चौपाल
1: जी,
0: तो हमारे सारे वीवर्स सर्विस सेंटर्स फील्ड पे जाते हैं एंड क्लस्टर लेवल पे चौपाल कराते हैं। तो एक और तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, एंड जैसे कि आपने सुना कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन हर बुनकर को ये जानकारी नहीं है। तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो गांव में जाते हैं, चौपाल कराते हैं, स्कीम के बारे में बताते हैं, एंड कहीं कहीं तो वहीं से एप्लीकेशन भी ले लेते हैं। तो ये है एक एवेन्यू। दूसरा, हम जो भी हमारे बड़े ट्रेनिंग्स होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है समर्थ ट्रेनिंग। तो समर्थ ट्रेनिंग के तहत वीवर को एक अच्छा एक है कि उसको वेज कॉम्पेंसेशन मिलता है। कभी कभी ये लोग ट्रेनिंग पे नहीं आते क्योंकि एक दिन का उनका वेजेस चला जाता है। तो अंडर द स्कीम वी प्रोवाइड फॉर वेज कॉम्पेंसेशन। तो समर्थ हमारा एक बहुत सक्सेसफुल स्कीम है हैंडलूम सेक्टर में। तो वहाँ भी दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद दीज मैटर्स। एंड हैंडलूम दिवस जैसे जो बड़े सेलिब्रेशन होते हैं, तो वो तो हर क्लस्टर में, हर WOC लेवल पर, राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर, ये सब दीज आर प्लेसेस वेयर वी कम टुगेदर। अभी हाल ही में बजट में एक नया स्कीम अनाउंस हुआ है, नेशनल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम। तो उसको बनाने के लिए काफी चर्चाएं हुई एट द फील्ड लेवल, एट द स्टेट लेवल, जो इसमें विशेषज्ञ हैं उनसे भी काफी बातचीत हुई है। तो ये हमेशा एक ऐसे वार्तालाप का हम स्वागत करते हैं ताकि वीवर्स भी अपना मन रख सके हमारे पास।
2: जी, इस विषय में हम और जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गाना।

इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, आईएएस ऑफिसर हैं मैम और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, विकास आयुक्त हैं हथकरघा की। और आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान तक पहुंचे उन धागों की जो हमारे बुनकरों को समाज से जोड़ते हैं और समाज के अलग अलग वर्गों को भी आपस में जोड़ते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे हथकरघा से जुड़े हुई जो आर्थिक पक्ष है उसकी भी, साथ ही सरकार ने जो योजनाएं उपलब्ध करवाई हैं उनकी और सामाजिक पक्ष भी। अब बात करते हैं हथकरघा से जुड़े हुए स्वास्थ्य

0: पक्ष की। हम कहते हैं कि हैंडलूम जो है, ये जो धागे हैं, ये स्किन फ्रेंडली है और स्किन डिजीज से हम बच सकते हैं अगर हम सही तरीके के कपड़े पहने, वो फैब्रिक जो है वो ठीक हो। इस बारे में मैम क्या कहेंगी?
1: हैंडलूम जो बनता है वो ज्यादातर नेचुरल फाइबर्स पे बनता है, एंड क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स पे बनता है एंड मोस्ट ऑफ देम यूज नेचुरल डाइस ऑल्सो, आजकल बहुत नेचुरल डाइस का भी यूज हो रहा है
0: जी।
1: तो हमारा एक स्टार्टअप है जो साउथ में है, तो उन्होंने एक योगा मैट बनाया है हैंडलूम पे। तो नॉर्मली हम योगा मैट जो जो चाइनीज इंपोर्टेड है वो यूज करते हैं, मैंने योगा करते हैं एंड उसी के फ्यूम्स हम इनहेल करते हैं, लेकिन ये कंपनी जो है वो हैंडलूम योगा मैट बनाते हैं ताकि जब हम योगा करें और पसीना निकले जो हम फ्यूम्स इनहेल करें वो बहुत यू नो हर्ब्स जैसे है उसमें मिलाया जाता है। अगर हैंडलूम का भी बेडशीट यूज करें, हैंडलूम के कपड़े यूज करें, वो डेफिनेटली वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये नेचुरल कलरिंग भी आ गया है ताकि वो और बेटर बन जाए
0: जी। हम बात कर रहे थे कि युवा किस तरह से और ज्यादा यूज कर सकते हैं हैंडलूम प्रोडक्ट्स का। ऐसे में सोवनियर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, अगर उस इंडस्ट्री से हमें लोग इस समय सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है?
1: तो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के बहुत अच्छे सोवनियर बन सकते हैं एंड उसको हमें ज्यादा यूज करना है। एंड यूथ के लिए एक्चुअली मैं अपने बुनकर भाइयों को भी बोलती हूँ कि अब यूथ के लिए जो कपड़े बनने हैं, तो हाल ही में हमने एक डिजाइनर कॉन्क्लेव के लिए एक कॉन्टेस्ट जैसे रखा, देश में जो 72 क्लस्टर्स थे जहाँ हम क्लस्टर डिजाइनर्स थे, हमने एप्लीकेशन मंगवाए एंड इतने अच्छे नए तरीके के ड्रेसेस आए हैं। मैंने जो हैंडलूम में यू नो पहले तो हम ओनली साड़ीज देखते थे, लेकिन अब इतना इनोवेशन अब चल रहा है ताकि युवा भी इसमें जरूर आकर्षित होंगे
0: जी। और हम तो अपने सभी श्रोताओं से ये कहेंगे ही कि जैसा कि मैम ने भी कहा कि जब भी कभी कोई उपहार दे, कोई भेंट दे किसी को, उसमें हैंडलूम आइटम जरूर रखें। जब कभी दोस्ती यारी निभानी हो तब भी आप कोई अच्छा सा गिफ्ट लें तो उसमें भी ये याद रखें कि हमारी जेब से जो पैसा निकलता है वो देश में घूमे और सही हाथों में पहुंचे, तो हमारा छोटा सा उपहार भी बुनकर जो भाई बहन हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बड़ा हिस्सा होता है, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। चलते चलते मैम क्या संदेश आपका हमारे सभी श्रोताओं के लिए?
1: तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 7 अगस्त को तो आपको पहनना ही है हैंडलूम, तो आपको हर भारतीय को 7 अगस्त को हैंडलूम पहनना है
0: जी।
1: और उससे ऊपर हम हैंडलूम को जीवन का हिस्सा बनाएं, ये बुनकर की जो कला है उनकी जो जो सर्गात्मकता है उसको आप प्रोत्साहन दें, उनका हौसला बढ़ाएं एंड सबसे ऊपर हमारी विरासत को हम अपनाएं, उस पर फकर करें, उसको पूरी तरह से अपनाएं
0: जी।
1: तो हैंडलूम को पूरी तरह से सपोर्ट चाहिए, उनको प्यार चाहिए और जीवन में उसका हिस्सा बना दीजिए
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। और हम कहेंगे कि ये वो संस्कृति और ये वो विरासत है जो पहनी जा सकती है, जिसे हम हर जगह अपने साथ ले जा सकते हैं, अपने देश के कोने कोने में भी और साथ ही भारत से बाहर भी। आप सुन रहे थे पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में हमारी विशेषज्ञ थी, हमारी अतिथि थी डॉक्टर एम बीना, IAS ऑफिसर आप और डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम से। मैम ने हमसे बात की और बहुत सारे नए विचार भी हमें पता चले और साथ ही ऐसी योजनाओं के बारे में भी हमने जाना, हमारे श्रोताओं ने जाना जो खास तौर से बुनकर जो हैं उनके लिए है, उनके कल्याण के लिए है। मैम आप हमारे स्टूडियो आई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने हैंडलूम के लिए टाइम दिया, अपने देश के बुनकरों को आपने याद किया, थैंक यू।
0: तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान और कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: That was Avicii and Sandro Cavazza with the track Forever Yours. And Samina Sefi from Maharashtra has sent in some suggestion for magic, which we all could use. And of course, some beautiful lines sent in by Indu. I will read it all out to you. And in the meantime, of course, you too can let us know. Our number is 9868107070. Right now, I'm heading for my teeny weeny little break.
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा

मैसेज नित्यानंद शर्मा, थैंक यू सो मच. एंड ऑल राइट, सो दिस इज माइकल फर्नांडिस वंस अगेन रिक्वेस्टेड फॉर राइट. ओके, आई विल चेक आउट दीज ट्रैक्स एंड वन ऑफ देम आई वुड डेफिनेटली प्ले फॉर यू. एंड देन वी हैव ओजोय फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ओजोय, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हाउ हैव यू बीन एंड व्हाई हैव यू बीन मिसिंग? आई मीन एटलीस्ट ऑन माय शो आई एम हियरिंग फ्रॉम यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड हाउ इज लाइफ, हाउ आर थिंग्स? आई होप एवरीथिंग्स बीन ग्रेट एट योर एंड एंड इट्स रियली गुड टू हियर फ्रॉम यू. एंड द ट्रैक यू रिक्वेस्टेड फॉर, वेल आई डू हैव वन एंड आई, इज इट पॉसिबल इफ यू कुड गिव मी कपल ऑफ मोर ऑप्शंस, बिकॉज द वन दैट यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर, द पर्टिक्युलर वन, आई डोंट हैव दैट. सो इट वुड बी nice if you could please send us a few more options. And then this is Samina Saifi once again. She says, keep a beautiful family command center, a small wall or board for weekly schedule, important reminders, shopping list, children's school activities, appointments, etc. A beautiful home is not one that is always perfect, it is one that makes goodness easy. Oh wow, that was out of the world, next level, beautiful message. And moving ahead, songs. Okay, if someone were to ask me, what is that little magic you would like in your home? Well, it wouldn't be magic exactly. But one thing which I definitely do miss in my home, you know, majority of people across the country, not just across the country, across the globe, maybe people face this problem, lack of sunshine coming into their homes. And if I just could have sunshine in my room, oh boy, it would be just something else.

0: Sunshine in my room. And moving ahead, we do have a few more messages that have come in. This is from Rajkumar K. Santani from Akola, Maharashtra. Very good afternoon to you as well. Thank you so much for asking. And then this is Dolly. Dolly says, I love your teeny weeny breaks. All right, thank you so much. And she says, I want some magic in my home, that is all the members of the family live together with love. I wish that too. I wonder why people fight with each other and why they do what they do. If just everybody could live together with so much love, life would become so simple, right? And since you said you love the teeny weeny little breaks, I'm taking yet another one. And of course, I'll see you on the other side. Please stay with us on Akashwani Rainbow.
1: ना तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
6: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
5: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
6: हैं? इतनी जल्दी?
5: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर 7 के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
10: Welcome back after that break, and you're with us on Akashvani Rainbow, and this is a message. Yes, I did receive a message from, let me go back to that one. And okay, right now this is from Vijendra Akola, Maharashtra. Vijendra, this is the Western music section right now, so sorry I can't play those songs, but yes, on Akashvani, we play all kinds of songs, and both Western music and Hindi. And the Hindi show is just about to come up in less than 10 minutes. So please hold on. And whoever the RJ here is, in case he can incorporate your request for the music, he will definitely do that. We all do that. All of us RJs, we love to play music for you. And then this is Swati's. Once again, she says, I don't have a pet of my home right now, but those street dogs make me feel like I do. I can so much relate to that. And as far as playing your request goes, you're most welcome. And I would love to play music for each and every one of you as far as we could. And then, yes, this is, I'm still trying to get back to that message that was, I still need to search. In this tsunami of messages, you know, one or two get lost and it becomes a little difficult to retrieve them. And that is what gives us anxiety.

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देशभर में शुरू। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। यह छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून 3 महत्वपूर्ण स्तंभों प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास पर आधारित हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी ट्रेन घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा, काकोरी ट्रेन घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने कहा है कि तेहरान अमरीका के साथ शांति और बातचीत का रास्ता खुला रखेगा। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर देश में तैयारी के चलते शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द। विश्व अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने स्वदेशी ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया है। बारिश के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक अपने नाम किए हैं। सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांजिशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता और भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा ने आज शानदार वापसी करते हुए विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। एफएम रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। जी हाँ, आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप। दिल से दिल तक प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। और मेरा वाला सॉन्ग यानी कि आपका वाला सॉन्ग। आप अपनी पसंद के गाने सुनते हैं इस प्रोग्राम में, अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाते हैं और उन फरमाइशों से जुड़ी कोई अगर बात होती है तो वो भी आप हमारे साथ साझा करते हैं। और वो आपकी फरमाइशें हम तक कैसे पहुँचती हैं? आपके व्हाट्सएप के जरिए। जब आप हमें व्हाट्सएप करते हैं और बताते हैं कि आपकी पसंद का गाना हम आप तक पहुंचाएं, तो आपकी पसंद का जो गाना है वो तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले बता देते हैं वो व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप अपनी जो फरमाइशें हैं हम तक पहुंचाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, 9868107070। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार और आपके स्वागत में। क्योंकि स्वागत इसलिए भी इस गाने से कर रहे हैं हम आपका कि एक तो सावन है और दूसरा आप लोगों की जो फरमाइशें हैं वो भी कुछ इस गाने के साथ साथ मिलती जुलती है। तो चलिए, स्वागत है आपका इस गाने के साथ। आप हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो स्टेशन पर जिसे सुनते हैं आप दिल से दिल तक।

बिल्कुल जी, हम भी चलते हैं आपके मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि आपने कौन कौन से मैसेज हम तक पहुंचाए हैं व्हाट्सएप पर। जो आपकी जो फरमाइशी बातें हैं, फरमाइशी जो गीत हैं आपके, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश में अब लग चुके हैं। और पहला जो मैसेज बिल्कुल ठीक है, एक बजा और उसके बाद जो पहला मैसेज आया हम तक, वो आया दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। इन्होंने लिखा है, कई गाने लिखे हैं यूँ तो, कई फिल्मों से लिखे हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर आप इनमें से कोई गाना हम तक पहुंचा पाए तो बिल्कुल पहुंचा दें। तो बिल्कुल दोस्त, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पसंद को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पर हाँ, थोड़ा सा शुरू में ही बता देना ठीक होता है कि थोड़ा सा हमारे पास समय का अभाव होता है। अगर आपकी पसंद के गीत नहीं भी चले तो बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि आपके जो मैसेजेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो उस कोशिश को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अगला मैसेज आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगला मैसेज है किसका, ये है अमरदीप कुमार, साथ में हैं दीपू, बलिराम भी हैं इनके साथ। ये कुप्पमपट्टी जलाकंडापुरम बाजार सेलम जिला तमिलनाडु से इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है। और एक हमारे पुराने दोस्त हैं सौरभ अनेजा, जो लगातार मैसेज करते हैं और कहते हैं कि इनकी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती, ये बस शो को एंजॉय करते। तो एंजॉय करते रहिए दोस्त, हमारे साथ लगातार बने रहिए। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, कुछ गाने इन्होंने साथ में हम तक पहुँचाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये गाने इन्हें सुनवाए जाएं। तो बिल्कुल दोस्त, हमने उनमें से एक गाना तो निकाल लिया है, आप तक थोड़ी देर में पहुँचेगा। फिलहाल कुछ और मैसेजेस तक पहुँचते हैं हम, तो और देखते हैं कि और कौन कौन सी बातें हम तक पहुँची हैं। सतरंग श्रोता परिवार है कुम्भार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, श्री ऋषिकेश दले और जीविका दले हैं। साथ ही साथ कई और लोग भी हैं इनके साथ ही, एक ही मैसेज में कई लोगों का नाम है। पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने का भी मैसेज है, और इन्होंने भी अपनी बातें लिखी हैं और एक गाने का नाम हमें भेजा है जिसको कहा है कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए। तो बिल्कुल दोस्त, हम कोशिश करेंगे कि उस गीत को आप तक पहुँचाएँ। अगला जो है मैसेज वो है मनमोहन सिंह, सोनम, काव्या और दक्ष का, यूपी के रामपुर ज़िले के मंडवा हसनपुर गांव से इन्होंने क्या गाना सुनाने के लिए कहा है। और एक ही नहीं बल्कि कई गाने कहे हैं और देखते हैं कि इन कई गानों में से कौन सा गाना आप तक पहुंचता है। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल का भी मैसेज आया है और इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। जोकीहाट दर्शना बाजार अररिया से, बिहार से मोहम्मद सरफराज आलम, कवि प्रेमचंद प्रेमी, डॉक्टर प्रकाश गोगिया, मनोहर लाल गांधी और फारूक अली खान, इनका भी मैसेज आया है और उन्होंने भी एक गीत सुनने के लिए कहा है। हमारे साथी हैं गुड्डू धाकड़, मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेडावन गांव से, इन्होंने भी कहा है कि एक गीत हमें सुनना है और उस गीत को इन्होंने हमारे साथ साझा भी किया है। तो दोस्त, आपकी जो फरमाइशें हम तक आती हैं लगातार, एक से बढ़कर एक होती हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आपकी फरमाइशों में जब हम उन गीतों को सुनते हैं जिनको सुने थोड़ा समय हो गया था और फिर से जब उनको सुनते हैं तो लगता है कि वाह, ये तो क्या कमाल का गाना था और एक ऐसा ही गाना आप तक

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश और आपके जो मैसेजेस हैं लगातार हम तक पहुंच रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 9868107070। और इस पर आप अपनी फरमाइशी जो आप फरमाइश पहुंचा रहे हैं अपनी जो गीत सुनना चाहते हैं उनके बारे में हमें बता रहे हैं, साथ ही साथ उनसे जुड़ी कुछ बातें हैं जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। और अच्छा भी लगता है कि जब किसी गीत के साथ आपकी याद कोई बात आपकी हम पढ़ते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं तो लगता है कि वाकई में गीतों के साथ जो हमारा संबंध है वो बहुत बहुत गहरा है और हमारी जो भावनाएं हैं वो उन गीतों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकल कर बाहर आती है। और कुछ और भावनाएं हमारी हैं जो आजकल बाहर निकल रही हैं और आज का दिन तो और भी ख़ास है क्योंकि कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आज के दिन से जुड़ी हुई हैं और हमने वो तो आपको अपने अलग अलग कार्यक्रमों में बताया ही है। लेकिन आज एक और चीज़ है जो बिल्कुल हमारे साथ बहुत हद तक कहें कि हमारे दिल से जुड़ी हुई है तो बिल्कुल सही होगा। और वो है आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। तिरंगा केवल झंडा नहीं हमारी शान है, तिरंगा तीन रंग लेकिन भावनाएं अनगिनत। केसरिया हमें साहस और त्याग की प्रेरणा देता है, सफ़ेद शांति और सत्य का संदेश देता है, तो हरा हमारे जीवन समृद्धि और विकास का प्रतीक है। और ये इन तीनों को जोड़ता हुआ अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। इसी गौरव और देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान एक बार फिर हमें अपने राष्ट्रध्वज के साथ जुड़ने का अवसर दे रहा है। आज से शुरू हो चुका है ये अभियान और 15 अगस्त तक चलेगा। और इस अभियान में अपने घर पर तिरंगा फहराइए, तिरंगे के साथ सेल्फी लीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी इस अभियान से जुड़ने के लिए बिल्कुल प्रेरित कीजिए, क्योंकि तिरंगा हमारे राष्ट्र का गौरव और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए कुछ और चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और उसमें से एक ये है कि अभियान समाप्त होने के बाद भी तिरंगे का सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने तिरंगा फहराया है तो उसे ज़मीन पर न गिरने दें, तिरंगे को साफ़ सुथरे और सुरक्षित स्थान पर रखें। जहाँ वो मुड़े फटे या गंदा हो तो उस पर ऐसी जगह बिल्कुल ना रखें। अगर तिरंगा क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर ना छोड़ें। और राष्ट्रीय ध्वज के निस्तारण के लिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में निर्धारित सम्मानजनक प्रक्रिया का पालन करें। तो चलिए आइए इस हर घर तिरंगा अभियान में पूरे उत्साह के साथ हम सभी लोग शामिल हों, अपने घर पर तिरंगा फहराएं, अपने दिल में तिरंगे का सम्मान रखें और अभियान के बाद भी उसकी गरिमा की रक्षा करें। जय हिंद।

0: आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। दोस्तों प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मेरा वाला सॉन्ग। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के तुरंत बाद आते हैं और आपके कुछ और मैसेजेस और आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचाते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
6: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
5: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
8: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

बातें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों हम चलते हैं एक बार फिर से आपके मैसेजेस की ओर। और जो लास्ट वाला मैसेज पढ़ा था हमने गुड्डू धाकर जी का, उसके बाद मैसेज जो है वो है कविता जी का देवभूमि उत्तराखंड से। इन्होंने भी कई गाने लिखकर हम तक पहुंचाए हैं और उन गानों को सुनने के लिए कहा है। दोस्तों आप लोग गाने तो पहुंचा रहे हैं लेकिन उन गानों के साथ जुड़ी कोई अगर बात भी पहुंचाते ना तो वो बात थोड़ा और बन जाती, यानी कि और भी अच्छा लगने लगता। रेशम कुमारी जिला छपरा सारण बिहार से इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और फरमाइशें हम तक किसकी आई हैं? बबलेश पनवार, डैनी पनवार, मनीष पनवार, ये हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, और इन्होंने भी गाने की फरमाइश की है। साथ ही साथ मैसेज भेजने वाले में कुछ और हमारे साथी, उनका नाम मैं ढूंढ रहा हूँ, नाम मिल गया है, किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, और इन्होंने एक गाना सुनने की बात कही है। और आज ये देख रहा हूँ मैं, ट्रेंड एक होता है ना किसी खास प्रोग्राम में कुछ खास गीत सुनने का, तो आज खासकर बारिश के, सावन के, कुछ इस तरह के गीत आप पसंद कर रहे हैं और हम बिल्कुल ढूंढ भी रहे हैं, तो अच्छी बात है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा भी मन करता है कि कुछ ऐसे बारिश वाले गाने आप तक पहुंचाए जाएं, लेकिन लगता है फिर कभी कभी कि अरे अभी तो बहुत गर्मी है, ये तो लगेगा कि एक तरफ कहाँ गर्मी, एक तरफ कहाँ बारिश, और एक तरफ सर्दियाँ एकदम आ जाती हैं, तो लगता है कि एक तो इतनी सर्दी पहले से ही पड़ रही है, ऊपर से हम आपको ऐसा भीगा भीगा सा गाना आप तक पहुँचाएं तो भी थोड़ा सा लगता है ना कि मौसम के साथ थोड़ा सूट नहीं कर रहा है। लेकिन आजकल जो है आपके जो गाने पसंद कर रहे हैं आप वो बहुत सूट कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह के और भी गीत हैं जिनकी आपने फरमाइश की है। अगले जो मैसेज हैं उनकी अगर हम बात करें तो मनोज कुमार इन्होंने मैसेज भेजा है और एक गाना सुनने के लिए कहा है। साथ ही साथ सुनीता शर्मा जी शालीमार बाग से भी इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और फरमाइशें हम तक आई हैं मोहम्मद इम्तियाज़ और सलमा बेगम की, जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से। और इन्होंने लिखा कि वैसे तो इनका फर्स्ट सॉन्ग जो था वो फेवरेट था, फिर भी एक गाना और इन्होंने लिखकर भेजा है। तो दोस्त एक गाने से आप थोड़ा सा अपने आप को आज मनाइए, फिर कभी हम आपकी फरमाइश को आप तक पहुंचाएंगे। अगला जो मैसेज है वो है वासुदेव आहिरकर का, महाराष्ट्र से इन्होंने लिखा है, जलगांव से, और एक गाना उन्होंने सुनने की फरमाइश की है, हम तक पहुँचाया है। उसकी पूरी डिटेल्स भी इन्होंने दी है, किसने गाया है, किसका म्यूज़िक है, किस फिल्म से है और उसके बोल भी। तो बहुत अच्छा लगा दोस्त, आपने बहुत डिटेल्स में डिटेल्स जो है उस गाने की आपने बताई है हमें, बहुत अच्छा लगा। कंचन सोनिया विहार दिल्ली से इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है और फरमाइशें हम तक लगातार पहुंच रही हैं। दीपा का बिजनौर से इनका मैसेज आया है, इन्होंने भी फरमाइश की है। और एक और फरमाइश है लेकिन आपका नाम ढूँढ रहा हूँ मैं दोस्त, नाम तो आपने लिखना शायद छोड़ दिया है या भूल गए हैं, दोनों में से कुछ तो है, क्योंकि मैं आपके पुराने मैसेजेस जो है वो भी देख रहा हूँ तो उसमें भी आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपने एक गाने की फरमाइश की है तो धन्यवाद आपका मैसेज भेजने के लिए। लेकिन अगर आप अपना नाम भी लिखकर पहुँचाते और कहाँ से आपने मैसेज भेजा है तो भी हमें बहुत अच्छा लगता। अगला जो मैसेज है शिशिर द्विवेदी का, गुड़गांव से, गुरुग्राम से इन्होंने मैसेज भेजा है और एक गाना सुनने की फरमाइश की है। अगला जो मैसेज है इनका नाम है, नाम कहाँ है आपका, विजय, और इन्होंने गाना ये सुन, अच्छा फिल्म का नाम है विजय भाई, इनका नाम जो है नीरज ध्यानी है और कोटद्वार गढ़वाल से इन्होंने मैसेज हम तक पहुंचाया है। और अगला जो मैसेज है ये है युवराज चौहान का और इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। फरमाइशें आपके लगातार हम तक पहुंच रही हैं। शांतिपाड़ा से, विधाननगर से, दार्जिलिंग से, यानी ये थोड़ा सीक्वेंस पीछे की तरफ जा रहा है, विप्लव दास का मैसेज आया है, इनका भी मैसेज है और इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। इसके अलावा मैसेज हमें भेजा है डॉली ने, इन्होंने कहा है कि पहले पहले जो दो गाने थे रिमझिम रिमझिम और सौदागर का, वो इनकी दोनों पसंद के थे तो वो दोनों ही पहुंच चुके हैं। हमारे कई और दोस्तों के भी पसंद के थे वो, तो ये देखिए आपकी पसंद हमारे और दोस्तों के साथ भी मिल रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक व्यक्ति की पसंद से कई व्यक्ति अपनी पसंद का गीत सुन ले रहे हैं, यही तो है इस प्रोग्राम की खूबसूरती। तो चलिए ज़्यादा इंतज़ार न करवाते हुए एक और गाना आप तक पहुँचाते हैं जो इस खास मौसम में आपके लिए।

बिल्कुल, मैं क्या करूं ये तो मुझे मालूम है, क्योंकि आपके जो लगातार मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, उन मैसेजेस में जो आपकी फरमाइशें हैं उनको आप तक पहुंचाना हमारा काम है, और उस काम को हम बढ़ाते हैं अब आगे। सोनू का बिजनौर से मैसेज आया है, एक गाना सुनने की इन्होंने फरमाइश की है, और फरमाइशें कुछ और भी हैं। मोहम्मद सरफराज आलम ने अपनी स्वरचित एक कहिए इसको कविता का अंश भेजा है, शायरी भेजी है, आप सुनिए और फिर आप खुद ही आप इसको अपनी तरफ से नाम दीजिएगा। शायरी लिखा है उन्होंने कि सावन की बारिश में शहर डूबता रहा, हर शख्स भीगता रहा, दिल रूठता रहा, बूंदों में घुली थी किसी की याद ऐसी, मैं बारिश में भी सारी रात जलता रहा। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, अच्छा लिखा आपने। और अगली जो बात हम तक पहुंचाई है वो किसने पहुंचाई है, ये है अच्छा राजकुमार के संतानी साहब अकोला महाराष्ट्र से, लिखते हैं कि इनकी प्यारी पत्नी नंदिनी जी हैं, इन्होंने कहा है कि एक गाना सुनना है और बातचीत अच्छी लग रही है इनको। दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने जो गाना चुना है वो भी बहुत अच्छा है, और हमारी तरफ से आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला जो मैसेज है ये है धर्मेंद्र, अच्छा इनका नाम धर्मेंद्र तो नहीं है, लेकिन इन्होंने लिखा है पंकज डोगरा, पंजाब पुलिस चंडीगढ़ से इन्होंने लिखा है, और जो प्रोग्राम में बातचीत चल रही है वो लगातार सुन रहे हैं। पंकज डोगरा, बीनू नेगी, आकांक्षा, और इन्होंने लिखा है रेणु रावत, विजय सिंह रावत, कामता नेगी, दक्ष नेगी, और भी कई लोग हैं इनके साथ, ललिता नेगी, रंजीत सिंह नेगी, चैन सिंह नेगी। और ये गाना जो इन्होंने प्रोग्राम के बीच में अपना जो मैसेज डाला है और बहुत सारी बातें लिखकर पहुंचाई हैं, तो बहुत बहुत दोस्त धन्यवाद आपका। छाया रानी का मैसेज है गांव नवली गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, लिखा है कि सावन का पावन महीना है, हमारे यहाँ बारिश तो नहीं हो रही है पर हम लोग पेड़ पर झूला डाले हुए हैं और आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, और सावन और झूलों का तो बहुत पुराना एक आपस में तालमेल है, सावन का महीना है तो लाजमी है सावन का गीत सुनना, और इन्होंने एक सावन का गीत

सुनने की फरमाइश की है। अगली जो फरमाइश हम तक आई है आफसा खानम की है, धामपुर जिला बिजनौर से। इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। फरमाइशें जो हैं कुछ और हैं हमारे पास। इनका नाम है जी एस गिल पटियाला से, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और फरमाइशें हम तक पहुँचने लगी हैं कुछ और हमारे साथियों की। प्रकाश गोगिया हैं इनका जो है, इनके साथ एम एस आलम है दिल्ली से, इन्होंने भी गाने की फरमाइश की है। और फरमाइशें भेजने वालों में हमारे कुछ और साथी हैं जिनका नाम है बागेश्वर निषाद गोरखपुर यूपी से, और अब्बासी परिवार है पूरा, मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार। इसके अलावा जो हमारे कुछ और साथी हैं, उन साथियों में कुछ ऐसे साथी हैं जो हर बार हमसे मिलते हैं, हमारी बातें जो हैं लगातार होती हैं, उनमें से एक नाम है प्रदीप सलूजा जी का, और ये हमें सुन रहे हैं जनकपुरी दिल्ली से, और इन्होंने वंदे मातरम लिखकर भेजा है। तो दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदे मातरम राहत और गज़ल का नेट और बिजनौर से मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। फरमाइशें हैं जैद और हुडा की तरफ से भी, गाज़ियाबाद यूपी से एक गाना इन्होंने सुनने के लिए कहा है। लेकिन दोस्त आपने शायद प्रोग्राम देर से शुरू किया, आपने जिस गाने का जिक्र किया उस गाने से तो हमने शुरुआत ही की थी इस प्रोग्राम की, तो अब क्योंकि उस गाने को तो हम सुन चुके हैं तो दोबारा से उस गाने को इस प्रोग्राम में शामिल करना तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो थोड़ा सा अगर आपने समय पर ट्यून इन किया होता तो वो गाना आपका स्वागत ही आपकी पसंद के गीत से होता। खैर कोई बात नहीं, दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मैसेज आया है और इन्होंने भी कुछ गाने हम तक लिख कर पहुँचाए हैं, और उन्होंने कहा है कि हमें वो गीत सुनने हैं तो सुनवाइए। राजू मल्होत्रा और रानी मल्होत्रा का जम्मू और कश्मीर से आया है, और अच्छा इनकी पसंद का कोई गीत चल गया है तो इन्होंने धन्यवाद कहा है। तो धन्यवाद दोस्त आपका, हमारी कोशिश यही है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पसंद के गीत हम आप तक पहुँचाएँ। तो अब बिल्कुल भी देर ना लगाते हुए एक और आपकी पसंद का गीत आप तक पहुँचाते हैं। और कहते हैं ना कि कुछ गीत ऐसे होते हैं उनकी धुनें ऐसी होती हैं, जब हमने कभी उनको देखा होता है तो उनके साथ हमारी कुछ यादें ऐसी होती हैं कि वो धुन सुनते ही जैसे हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, उन पलों को फिर से जीने लगते हैं। और कुछ ऐसा ही गीत है ये वाला।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
5: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
4: इम्पॉसिबल
5: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
6: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
7: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
8: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
7: अल्फा जेन,
8: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
9: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश और मेरे साथ हैं आपके बहुत सारे मैसेजेस जो व्हाट्सएप के जरिए आपने हम तक पहुंचाए हैं। तो चलिए हम पहुंचते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। जोया का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया है, इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और सुमन कर्माकर सोनितपुर असम से लिखा है इन्होंने, इनके साथ कई और लोग हैं, नयन, मीरा, पूनम, शिवानी और प्रशांत, इनका भी मैसेज आया है। और एक हमारे साथी हैं, इनका नाम है प्राची शिंदे मुंबई से, इन्होंने एक गाना खुद के लिए रिलीज़ नहीं किया है बल्कि डेडिकेट किया है। रिलीज़ हुए इस गाने को 30 साल हो गए ऐसा इन्होंने बताया है। तो दोस्त, आपने अपने आप को डेडिकेट किया है ये गाना, तो हम कोशिश करेंगे कि इस गाने को आप तक पहुंचा भी दें। भगवती जी का मैसेज आया है नई दिल्ली से, इन्होंने कई बातें लिखकर हम तक पहुंचाई। इन्होंने लिखा है कि लोग तिरंगा तो लगा लेते हैं पर जब वही तिरंगा रोड या गलियों में पड़ा होता है तो दुख होता है, दुख तो होता है। और इन्होंने लिखा है कि हम तो तिरंगा लगाते हैं और बाद में उतार कर फोल्ड करके रख देते हैं। ये बहुत अच्छा करती हैं आप और हमें उम्मीद है कि हमारे और भी साथी जो हमें सुन रहे हैं वो भी ऐसा ही करते होंगे, और नहीं करते तो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि तिरंगे का सम्मान है सबसे ज़रूरी काम। और अगला जो मैसेज है, इनका नाम है, नाम तो इनका बाद में आया है, पहले आया है ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप का, इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और एक हमारे साथी हैं, इनका नाम है राजेश शायद, क्योंकि इनके इन्होंने नाम तो नहीं लिखा, सिर्फ हाय लिखा, लेकिन उसके साथ साथ इनका जो नाम हमें दिख रहा है वो यही है। और मनोज कुमार का मैसेज आया है, इनके साथ हैं अंजलि कुमारी, हिमांशी कुमारी और प्रियांशी कुमारी, दिल्ली के संत नगर बंगाली कॉलोनी से, और इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। अगला जो मैसेज है ये है इसरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान का। इन्होंने कहा कि हमारा भी मैसेज शामिल करें किसी भी गीत में, तो बिल्कुल जी, आपका नाम हमने शामिल कर लिया है। आपने गनगोला दाता गंज ज़िला बदायूं से ये मैसेज किया है, बहुत खूबसूरत नाम है आपके जगहों के। और अगला मैसेज है सलीम जसपुर उत्तराखंड से, इन्होंने लिखा है कि कोई गाना सुनवा दीजिए, अच्छा एक गाना सुनने की इन्होंने फरमाइश की है। और अगला जो मैसेज है, इनका नाम है रमेश कुमार विश्वकर्मा, रेनबो की पूरी टीम को इन्होंने नमस्कार कहा है, तो नमस्कार आपको भी लिखा है इन्होंने। अच्छा, ये वाराणसी से हैं और एक जो वाराणसी से हैं और साथ ही साथ सावन का गाना सुनना चाहते हैं। तो दोस्त, हमने कई गाने तो यूँ सावन से जुड़े हुए सुनवाए हैं, लेकिन चलिए आप कह रहे हैं तो ढूंढेंगे हम समय के हिसाब से जल्दी हम आप तक पहुंचाएं। कमलेश मुकुल सचिन दीपांशु का मैसेज है, इन्होंने गाना सुनने की फरमाइश की है। मोनू पाराशर का मैसेज है अलीपुर दिल्ली से। मैसेज भेजने वालों में कुछ और साथी हैं हमारे, इनका नाम ढूँढ रहा हूँ मैं, नाम तो मिल नहीं रहा है, लेकिन वरुण वार्ष ने बहुत एकदम, आपने 10-15 मैसेज भेजे उसके बीच में अपना नाम भेजा, आप सही टेस्ट ले रहे हैं मेरा। अगला जो मैसेज है प्रवीण चौहान का, खरगोन मध्य प्रदेश से, इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी का शांतिनगर सोनीपत से मैसेज आया है, और इन्होंने बातें कही हैं कि आज हमारे पास कोई एक गाने की चॉइस नहीं है और प्रोग्राम ये सुनते हैं लगातार और अच्छा लगता है इनको, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका। तो चलिए, आप लोग लगातार यूं ही हमारे साथ बने रहिए और हम सुनते हैं एक और गीत जो हमारे श्रोताओं की पसंद का है।

दोस्तों, आपके मैसेज पढ़ते हुए भी मुझे कुछ इसी तरह ख्याल लग रहा है कि नीचे से जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो कई बार आपका मैसेज जो है उससे पहले कि मैं आप तक पहुँचूँ आपने एक और मैसेज कर दिया, और उसके बाद जो आपका मैसेज है वो और ऊपर चला गया और उस तक पहुँचने में थोड़ा आगे पीछे करना पड़ रहा है। और उसमें क्या हो रहा है कि कुछ हमारे जो साथी हैं उनके मैसेज जो हैं जिन्होंने पहले मैसेज कर दिया और फिर बाद में भी कर दिया, तो उनका मैसेज थोड़ा ऊपर हो जा रहा है, तो उसको ढूंढने में थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन समय और ना गंवाते हुए हम आपके मैसेजेस की तरफ चलते हैं, और आपका जो मैसेज है वो जो हम तक पहुँचा है वो कुछ इस तरह से है। विजेंद्र हैं अकोला महाराष्ट्र से, इन्होंने एक मैसेज किया है और इन्होंने गाना सुनने की फरमाइश की है, साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और मेरठ से शिव का मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। दोस्तों, समय थोड़ा सा हमारे पास कम है तो इसलिए जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस को शामिल करते हैं। रंजीत सिंह का मैसेज आया है, इन्होंने भी गाना सुनने की फरमाइश की है और फरमाइशें हम तक पहुँचाई हैं। किसने? साबिर का मैसेज है बलजीत नगर दिल्ली से, और लिखा है कई और हमारे साथी हैं कस्बा गुंदौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा, इनका भी मैसेज आया है। और मैसेज भेजने वालों में कुछ और साथी हैं जिनके नाम है दुर्गेश नागनपुरे, वंदना बिंदु और दिव्यांश नागनपुरे, और साथ ही साथ अलीगढ़ से सलीम अख्तर और इराम अख्तर का मैसेज आया है। इन्होंने बोला है कि हमारा मैसेज देख नहीं रहे, क्या बात है। अच्छा, तो बात यही थी कि जब तक हम आपके मैसेज तक पहुंचते आपका मैसेज हमसे दूर पहुंच गया था, तो वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए आप एक बार मैसेज करें तो निश्चिंत हो जाए कि वहां तक हम पहुंचेंगे, और जब पहुंचेंगे तो आप तक वो बात पहुंचेगी निश्चित रूप से। जगदीश चंद्र पांडे जी का मैसेज है उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से, इन्होंने लिखा है कि प्रेम की खुशबू से महके मेरे भारत की हर बगिया, सौंदर्य बिखेरे प्रकृति, सजे तिरंगे की रंगत नई नई, माटी से प्रेम वतन पर गर्व यही हृदय का श्रृंगार रहे, देशभक्ति की ज्योति जलती रहे, भारत सदा महान रहे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो मैसेज हम तक आया है इनका नाम है इंदु, दिल्ली से मैसेज इन्होंने किया है, और इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। फरमाइशों में कुछ और हैं हमारे साथ, फरमाइशें जो हमें मिली हैं उत्तम नगर से, एक बार फिर से बोधराज खोरवाल, कमना रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का मैसेज आया है, और मैसेज भेजा है हमें आपका नाम ढूँढ रहा हूँ मोहम्मद उवेश, इनका मैसेज आया है और लिखा है इन्होंने, इनका नाम है कोलार रोड भोपाल से रामबाबू मालवीय, मनीषा मालवीय, इनका अच्छा इनकी पसंद का गीत चल गया, लेकिन उन्होंने कहा है कि नाम नहीं आपने बोला है। तो दोस्त, आप तक पहुंचते इससे पहले आपका मैसेज आ गया था तो आपका नाम हमसे दूर चला गया ना। आप देखिए, आपका नाम तो इतनी बार लिया है कि जब भी मैं भोपाल का जिक्र करता हूँ तो कोलार रोड याद आता है और वहाँ से आप याद आते हैं। अगला जो मैसेज है वो है किसका, इनका नाम ढूंढ रहा हूँ मैं, नवलू वरक गाँव मल

जिला उत्तर गोवा से इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। फरमाइशें हम तक कुछ और भी आई हैं और इनका नाम है, नाम शामिल नहीं गया, इसके लिए दुखी हैं। कुछ ऐसी स्माइली लिखकर इन्होंने पहुंचाई है और इनका नाम तो मैंने एक बार शायद बोल दिया। आपका नाम कहाँ है? विजेंद्र, अकोला महाराष्ट्र से, और मलकापुर से अशोक कुमार आहूजा मूवी का नाम लिखा है। साथ ही साथ बोला है कि कुछ और भी जो फरमाइशें हैं इनकी वो पहुंचाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका अपनी ये प्यारी प्यारी फरमाइशें हम तक पहुंचाने के लिए। और अब से थोड़ी देर बाद हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम जो आप सुनने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं रविवार का दिन है, रविवार का दिन होता है ख़ास। इस दिन कुछ ख़ास प्रोग्राम हम आप तक पहुँचाते हैं, जैसे कि अभी आप जो प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग, इसमें मैं हूँ आपके साथ राजेश। और इसके बाद 2 बजे से आप जो प्रोग्राम सुनने वाले हैं उसमें जो हमारे जो अगले साथी हैं वो है दीपांशी अरोड़ा, छोटे उस्ताद प्रोग्राम लेकर आप तक पहुँचेंगे। और 3 बजे आप सुन पाएंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज का टॉपिक है डेंटल ट्रीटमेंट्स एंड इम्प्लांट्स। और उसके बाद चार बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम रेनबो जीनियस, जिसमें कुछ सवाल हम आपसे पूछते हैं और उन सवालों के जवाब देकर आप बनते हैं रेनबो जीनियस। और उस प्रोग्राम में आपके साथ होंगी हमारी साथी जिनका नाम अभी हमने आपको बताया कि जो 2 बजे आप तक पहुँचेंगी वो हुई, 4 बजे आप तक प्रोग्राम लेकर पहुँचेंगी। और उस प्रोग्राम में आप सुनेंगे दीपांशी अरोड़ा को और आपसे वो सवाल पूछेंगे, उनके सही जवाब देकर आप बन सकते हैं रेनबो लिसनर, रेनबो जीनियस। और हमारे जो प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं उनकी पसंद पर जो हमारे फरमाइशी गीतों की जो हम लगातार आप तक पहुँचाते हैं, उसमें अब समय आ गया है कि एक और गीत आप तक पहुँचाएं। और इस गीत के साथ ही मैं राजेश आपसे लेता हूँ अनुमति, फिर मिलेंगे आपसे और हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा जो है ज़रूर फहराएं अपनी बालकनी पर। और साथ ही साथ जब अभियान समाप्त हो तो इस तिरंगे को बहुत ही सम्मान के साथ उतारें और अच्छे से रखें। नमस्कार, जय हिंद।

0: दोपहर के 2 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देशभर में शुरू। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून 3 महत्वपूर्ण स्तंभों प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास पर आधारित हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी ट्रेन घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा, काकोरी ट्रेन घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। विश्व अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने स्वदेशी ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण पहलगांव और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक अपने नाम किए। साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसलेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। और भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चालिहा ने आज शानदार वापसी करते हुए विक्टर कोरिया मास्टर्स 2026 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। ये थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

जी हाँ, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। करती हूँ आपका बहुत ही वार्म वेलकम वो कार्यक्रम लेकर जिसका करते हैं आप हर रविवार इंतजार, क्योंकि आशियाना के आज के इस अंक में हम बात करते हैं अपने छोटे उस्तादों के साथ। वो छोटे उस्ताद जिनके कंधों पर हमारी जो आने वाला भविष्य है उसकी बागडोर है, जिनके कंधों पर आने वाले भविष्य के ढेरों सपने सजे हुए हैं। तो आज कुछ सपनों की बात कार्यक्रम छोटे उस्ताद में। आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। मैं हूं आपके साथ दीपांशी, लेकर आई हूं प्रोग्राम छोटे उस्ताद।

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम छोटे उस्ताद में। मैं हूं आपके साथ दीपांशी, और आज क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो सोचा कुछ ऐसी बात के बारे में जिक्र किया जाए जो शायद हमारे जीवन का, या कहूँ हमारा जो करियर है, हमारा जो प्रोफेशनल वर्ल्ड होता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। या ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी जो भी हम बनते हैं अपने जीवन में, या जिस भी डेस्टिनेशन पर पहुँचना चाहते हैं, जो भी मंजिल को पाना चाहते हैं, उसकी जो नींव है ना, उसका जो पहला क्या कहते हैं उसको स्टोन रखा जाता है ना, वो इसी जगह से रखा जाता है। बात कर रही हूँ अपने सपनों के बारे में। और अगर हमारे छोटे उस्ताद इस कार्यक्रम में जुड़े हैं तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो बात आज हम करने वाले हैं। मैं उन सपनों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो हम सोते हुए देखते हैं। आज बात करेंगे उन सपनों के बारे में जो हम खुली

आंखों से देखते हैं। जी हाँ, कुछ सपने ऐसे होते हैं जो शायद हमारी नींदें उड़ा देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो हमें सोने नहीं देते। वो सपने जो हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है और उस मंजिल का रास्ता कैसे तय करना है ना? तो ये जो सपने हैं ना, ये हमें सोते हुए बंद आंखों से नहीं दिखते। ये वो सपने हैं जो हमें जागते हुए दिखते हैं, हर दिन, हर समय, हर वक्त, हर पल हमारे साथ चलते हैं। चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि दिस इज आई वॉन्ट टू बिकम, दिस इज आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। आज बात उन सपनों के बारे में, आज बात उन सपनों को उड़ान देने के बारे में। कैसे उड़ान दी जाए, कैसे पहुंचा जाए उन सपनों तक, कैसे पूरा किया जाए वो सपना जो हम सभी ने कभी ना कभी उम्र के किसी भी पड़ाव पर देखा हो, लेकिन वो सपना जो हमें सोने नहीं देता और हर समय बस हमें याद दिलाता है कि निरंतर आगे बढ़ते रहना है, एक प्रयास करते रहना है उस सपने को पूरा करने के लिए। बस जुड़े रहिए आकाशवाणी FM रेनबो पर इस प्रोग्राम में मेरे साथ, क्योंकि उन सपनों की बात आज हम करने वाले हैं जो हमें सोने नहीं देते और हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। एक प्यारा सा गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर अपनी सपनों की बातों को आगे बढ़ाएंगे।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: वेलकम बैक, आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद।
1: केसरी रंग सजाया
0: है। बहुत ही जल्द हम सभी मनाएंगे अपना स्वतंत्रता दिवस। जी हाँ, हर देशभक्त, हर देशवासी के मन में ये जो जज्बा है अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखने का, और उन सभी आंदोलनकारियों, उन सभी क्रांतिकारियों जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए हम सभी के लिए, इस देश की आजादी के लिए, उन सभी को श्रद्धांजलि, उन सभी को नमन।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम छोटे उस्ताद में मैं हूँ आपके साथ दीपांशी। आज बात कर रहे हैं सपनों के बारे में। कुछ पंक्तियाँ आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ हैं। खोई खोई आँखों में एक प्यार सा सपना पलटा है, छोटा सा ये दीप अंधेरे में कुछ कहता है। हारेंगे ना कभी हम, मंजिल को पा ही लेंगे, पंख फैलाकर आसमां में हम दूर कहीं उड़ जाएंगे। जी हाँ, सपने हमारे उम्मीदों को, हमारे जज्बे को, हमारे उस दृढ़ निश्चय को उड़ान देते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है, हमें क्या पाना है। और मुझे लगता है ये सारी कहानी सिर्फ जज्बे की है, दृढ़ निश्चय होने की है, डिटर्मिनेशन की है, रेजिलियंस की है कि अगर हमें कुछ पाना है तो वो एक ना एक दिन हम ज़रूर पा लेंगे। तो ये जो सपने हैं ना कहीं हमारी बहुत सारी उम्मीदों को उड़ान देते हैं। एक बार फिर से, ये वो सपने हैं जो हम खुली आँखों से देखते हैं। जैसे मेरी खुली आँखों का भी सपना था, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे लगता था कि कैसे हम एक छोटे से रेडियो के माध्यम से इतने सारे लोगों तक पहुँचते हैं। तो कभी सोचा, अभी तो इस पार हूँ, कभी मौका मिले और प्रयास करूँगी कि रेडियो के उस पार पहुँचूँ। और देखिए, मुझे लगता है कि अपनी वो खुली आँखों का जो सपना था ना, वो मैं पूरा कर पाई। लेकिन हाँ, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत, निरंतर प्रयास, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा अपने मन में रखनी है। इसके साथ साथ ये भी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रयास करेंगे और कोशिशें करते रहेंगे तो कोशिशें हमेशा सफल भी हो जाएंगी। कभी कभी इस रास्ते पर चलते चलते, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते बढ़ते, बहुत सारी कठिनाइयों का, बहुत उतार चढ़ावों का सामना भी करना पड़ता है। और मेरा मानना यह है कि अगर उतार नहीं आएंगे ना, तो शायद चढ़ाव पर पहुँच कर, उस मंजिल पर पहुँच कर, वो जो मंजिल को पाने की एक खुशी है, उस मंजिल को पाने की एक जो सफलता की एक जो फीलिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं अधूरी रहती है। वहाँ पहुँचने पर ये ज़रूर लगना चाहिए कि इसे, इस सपने को हमने पूरा किया है, इस सपने को यहाँ तक पहुँचने, इस सपने को सच्चाई में बदलने तक की जो मेहनत है ना, वो मेहनत हमने की है। और कुछ चीज़ें और भी हैं ऐसी जिसे ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे अपने छोटे उस्तादों को, अपने बच्चों को ये सिखाया जाए, उनमें इस स्पिरिट को, इस भावना को डेवलप किया जाए कि सपने पूरे होते हैं, बस ज़रूरत है उन सपनों को उड़ान देने की, ज़रूरत है ये विश्वास रखने की कि जो सपना आप देख रहे हो ना, वो सपना एक दिन ज़रूर सच होगा। लेकिन उस सपने को सच करने के पीछे जो मेहनत, जो कोशिश करनी है, जो रेजिलियंस दिखानी है, एक बार गिरकर फिर से खड़ा होने का जो जज्बा है ना, वो कम नहीं होना चाहिए। तो अगर वो कम नहीं होगा तो सपनों तक ज़रूर पहुँचेंगे। कुछ मुझे लगता है कि ऐसे कहूँगी की स्टेप्स हैं जो हमें बीइंग अडल्ट, बीइंग पेरेंट्स या बीइंग गार्डियन याद रखने चाहिए बड़े होने के नाते, कि हम अपने बच्चों को सिखा सकें कि कैसे दें अपने सपनों को उड़ान, कैसे बस उस आसमां में उड़ जाएं और पूरी कोशिश करते हुए अपने सपनों को सच कर पाएं। बात होगी इन्हीं सपनों की यहीं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम छोटे उस्ताद में। मेरे साथ बने रही, मैं हूं आपके साथ दीपांशी।

बिल्कुल, मुझे लगता है कि बेसब्री होनी चाहिए, बेसब्री होनी चाहिए अपने सपनों को पूरा करने की, बेसब्री होनी चाहिए उस मंजिल तक पहुंचने की जो मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही है, बेसब्री होनी चाहिए उन सभी लक्ष्यों को पाने की जो कहीं ना कहीं हमने ठाना है, जो हमारे सपनों का हिस्सा है। बचपन में आपने भी सुना होगा और शायद अभी भी हम बोलते हैं, कभी कोई बच्चा बोलता है ना, मुझे बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है, या मुझे बड़ा होकर कुछ ऐसा करना है जो कभी किसी ने ना किया हो, या कुछ ऐसी चीज़ जो हमें लगता है कि नहीं ये तो बहुत दूर की बात है। और हम कहते हैं सपने उतने देखो जिन्हें तुम पूरा कर सको। सच मानिएगा, सपनों की उड़ान को शायद इससे ज़्यादा कोई नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर सकता, जब हम ये बोलते हैं कि सपने उतने देखो जिन्हें पूरा कर पाओ। सपने जितने बड़े देखोगे आपकी कोशिशें भी उतनी बड़ी होंगी, आपका पैशन भी उतना बड़ा होगा कि

है, और फिर लगता है कि क्या इस उम्र के पड़ाव पर हम ये पा सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सपने पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है। और कभी आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे न जाने कितने ही लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने को मिलेंगी, जिन्होंने उम्र के ऐसे पड़ाव पर, जहां पर लोगों को लगता है कि शायद अब बहुत काम कर लिया, अब थक गए हैं, अब शायद आराम करने का वक्त है, उस उम्र के पड़ाव पर उन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं। जहां लोगों का जो सफर है वो थोड़ा सा थम जाता है, उन लोगों के सफर की शुरुआत उम्र के उस पड़ाव से हुई है। तो अगर ऐसे लोग आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से आपको प्रेरणा मिलती है, तो थोड़ा सा सोचिए कि कोई शायद ऐसा सपना है जिसे पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि कहते हैं ना, कहने से ज्यादा जब हम करते हैं तो हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो बच्चे हमारी तरफ देखते हैं, जो हमसे सीखना चाहते हैं, जिनके लिए प्रेरणा का और मार्गदर्शन करने का जरिया हम हैं, तो वो हमें देखकर ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा मोटिवेट होंगे कि अगर ये कर सकते हैं इस समय तो हम क्यों नहीं कर सकते। हर सपने को पूरा किया जा सकता है। एक अनशेकेबल बिलीफ, जी हाँ, ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा विश्वास जिसे कोई भी हिला नहीं सके। क्योंकि आपका जो विजन है, आपने जो अपने भविष्य के लिए सोचा है, उस पर आपका सबसे ज्यादा विश्वास होना जरूरी है, चाहे भले ही ये पूरी दुनिया उस पर विश्वास करे ना करे। क्योंकि एक जो स्पिरिट है ना ऑफ मेकिंग योर ड्रीम ट्रू, अपने सपनों को सच करने की, ये कहीं ना कहीं आपके पैशन, आपके दृढ़ विश्वास, विदाउट एनी डाउट, जी हाँ, शक की कोई जगह नहीं है कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं। नहीं, हम जरूर कर पाएंगे। और वो डिसिप्लिन कि अगर हमने कुछ ठाना है तो उसे पूरा करना है, वो जो एक अभी शायद होप है, उम्मीद है, उसे सच्चाई में बदलना है। तो इसके लिए इन सभी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक डिसिप्लिन अप्रोच होनी चाहिए, खुद पर और अपने सपने पर विश्वास होना चाहिए, और उस तक पहुंचने के लिए जो ढेर सारा पैशन है ना, वो पैशन होना चाहिए।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: NCRAPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: जी, आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी FM रेनबो के साथ प्रोग्राम छोटे उस्ताद में। मैं हूं आपके साथ दीपांशी। बात हो रही है आज उन सपनों की जो हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं, उस विश्वास की, उस दृढ़ निश्चय की, जो हम उन सपनों को पूरा करने में लगा देते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम छोटे उस्ताद, मैं हूं आपके साथ दीपांशी। जब हम अपने सपनों की बात करते हैं और उन्हें उड़ान देने की बात करते हैं ना, तो ज़रूरत है उसके प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की भी। जी हाँ, सिर्फ बातों में नहीं, अगर हमें अपने उस सपने को पूरा करना है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए, वो लेआउट ज़रूर तैयार होना चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना कैसे है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन और डेली स्टेप बाय स्टेप हर एक दिन थोड़ा सा इंच बढ़ना है, थोड़ी सी दूरी तय करनी है अपने उन सपनों की तरफ। यदि आप एक छोटा सा उदाहरण, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर बनने का सपना संजोया हुआ है ना अपनी आंखों में, तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। चाहे अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, या अगर आप अभी स्कूल में हैं तो अगर आपको वो सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं उसके बारे में सोचना है, किस तरह से कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आपकी जो तैयारी है ना वो पूरी हो, ताकि आप उस सपने तक बढ़ने का पहला जो कदम है, उसके बाद जो दूसरा कदम है, आगे आने वाले जो कदम है ना, वो बखूबी ले पाए। तो निरंतर चलते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। और उसके साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप अपने सपनों की को पूरा करने की दौड़ में जब निकल ही चुके हैं, जब आपने ठान लिया है कि अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो वो जो जर्नी है, वो जो यात्रा है, वो बहुत आसान नहीं होने वाली है। अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ ठीक है, आज ये सोचा है ये पालेंगे और कल का जो दूसरा कदम उठाया है इसमें भी हमें सफलता मिल ही जाएगी, तो ये सोचना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। वो इसीलिए क्योंकि हर एक मंजिल को पाने की जो यात्रा होती है, जो जर्नी होती है ना, वो उतार चढ़ावों से बनी हुई है। आपको उन सेटबैक्स को, उन फेलियर्स को, उन असफलताओं को भी वैसे ही अपनाना होगा जैसे कि आप अपनी सफलता को अपनाएंगे, जैसे कि जब मंजिल पर पहुंचने की खुशी होगी ना, उसे अपनाएंगे। तो जब अगर थोड़ी सी कोई ठोकर लगी, कुछ सेटबैक आया, या कहीं पर थोड़ी सी अड़चने आई, कहीं लगा कि ये थोड़ा सा वैसे नहीं हुआ जैसे हम चाहते थे, तो उनसे आपको सीखना है। वो आपको क्विट करने का कारण नहीं बनना चाहिए कि नहीं अब तो ऐसा हुआ, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना सपना पूरा करना चाहिए, अब मैं इस दौड़ में आगे जा पाऊंगा या अब जा पाऊंगी। तो आपको अपनी गलतियों से, अपनी असफलता से सीखना है कि हमें आगे क्या दोहराना नहीं है, हमें आगे और कैसे अच्छे से बढ़ते रहना है। इस रेजिलियंस के साथ आगे बढ़ना है कि कोई बात नहीं, आज थोड़ी सी

कर लगी है, गिर गए, लेकिन फिर पूरी ताकत से खड़े होंगे, फिर से ये शुरुआत करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। तो ये जो रेजिलियंस है ना, सच मानिएगा, ये सबसे बड़ा आपका शस्त्र है अपनी उस मंजिल को पाने के लिए जिसका सपना आपकी आंखों में है। तो अगर उन सपने को पाना है तो इस शस्त्र को हमेशा अपने साथ रखिएगा। और फिर कोई आसमां दूर नहीं होगा, और फिर आप जब उड़ान भरेंगे ना, तो ये पूरी दुनिया आपको देखेगी।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की

0: ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
0: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

वेलकम बैक, आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। प्रोग्राम चल रहा है छोटे उस्ताद, मैं हूं आपके साथ दीपांशी। और आज बात कर रहे हैं उन सपनों के बारे में जो हमें सोने नहीं देते, वो सपने जो हमारे खुली आंखों में ऐसे समाये होते हैं कि जब तक हम उन सपनों को पूरा नहीं कर लेते ना, हमें लगता है कि अभी तक ये यात्रा पूरी नहीं हुई है। वेल, जब हम उन सपनों की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत सारा जो धैर्य है ना, वो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सपने हैं ये किसी समय सीमा में तो बंधे नहीं होते। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ नई कला सीखनी है, या कुछ ऐसा सपना पूरा करना है जिसमें शायद बहुत मेहनत की ज़रूरत है, तो वो बहुत जो लंबा समय है ना वो लगने वाला है। तो उस लंबे समय में बहुत सारे धैर्य की ज़रूरत है, बहुत सारे ग्रिट की ज़रूरत है कि ठीक है, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, यात्रा थोड़ी लंबी है, पर हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम लक्ष्य तय करते हैं अपनी लाइफ पे ना, कि हमें क्या पाना है, कहाँ पहुंचना है, तो वो जो लक्ष्य है, वो जो गोल है, उसका क्लियरली डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, हमें पाना क्या है, क्योंकि यदि हमें वो पता होगा ना, तो हमारे जो बीच में आने वाले माइलस्टोन्स हैं, उस यात्रा के जो पड़ाव हैं, वो हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होंगे। हमें पता होगा कि आज हमने पहला पड़ाव पूरा किया है, अब तैयारी करनी है इस दूसरे पड़ाव तक पहुंचने के लिए, और धीरे धीरे वो सारे पड़ाव पहुंचेंगे और ख़त्म होंगे हमारे उस लक्ष्य तक। तो वहां बढ़ने के लिए उन पड़ावों के बारे में आपको एक क्लियर पिक्चर होना, माइलस्टोन्स पता होना बेहद ज़रूरी है। और हाँ, वो जो एक सपना है, जब हमें पता है कि उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, चाहे हमने कुछ बनने का सपना देखा हो, चाहे कोई नई कला सीखने का सपना देखा हो, तो उसे ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक डाउन जैसे कि अगर इसमें 5 साल का समय लगने वाला है, तो हमें वीकली या मंथली ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिसे डेवलप करना होगा, ताकि हमारे लिए वो जो रास्ता है वो कठिन ना हो, ताकि वो जो मेहनत हम कर रहे हैं वो ज़ाया ना हो, और कहीं ना कहीं वो हर दिन होने वाली जो मेहनत है ना, वो आपको तैयार करे अपने उस फाइनल डेस्टिनेशन तक, अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात जो हमने कार्यक्रम की सबसे शुरुआत में की, आपका खुद पर विश्वास, भले ही आपके आसपास वाले या कोई भी जो भी आपको जानते हैं वो आपके सपने पर विश्वास करे ना करे, आपका खुद के सपने पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है।

तो बस कार्यक्रम के अंत में बस इतना ही कहूंगी कि जुटे रहिए, लगे रहिए, और जब किसी की जरूरत हो, जब किसी के साथ की जरूरत हो, जो भी आपका गाइड है, और सिर्फ वो व्यक्ति जिसने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, भले ही आपकी इस जर्नी में, आपकी इस यात्रा में और किसी तरह से आपकी मदद ना कर पाए, लेकिन आपके पीछे खड़ा है, आपका साथ बनाया हुआ है और आपका हाथ पकड़ा हुआ है, जब भी ज़रूरत हो, कभी ऐसा लगे कि हाँ आज किसी से बात करने की ज़रूरत है, किसी की मदद लेने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ स्पीक, प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प, प्लीज़ आस्क फॉर सजेशंस, क्योंकि ये जो हमारे संगी साथी हैं, चाहे वो हमारे बड़े हों, हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे गाइड्स हों, हमारे टीचर्स हों, ये सभी हमारे उस सपने के साथ जुड़े हुए हैं और ये भी उतनी ही शिद्दत से चाहते हैं कि आप अपने सपने तक पहुँचें, अपने सपने को पूरा करें जितना कि हम चाहते हैं। तो बस सपने देखिए, उन सपनों को उड़ान भरने के लिए आपके हौसले की, आपके जज्बे की और आपकी कोशिश की जरूरत है, तो उस कोशिश को करते रहिए और अपने सपनों की उड़ान को भरते रहिए। और अब आपसे थोड़ी देर के लिए लेती हूँ विदा, क्योंकि लेकर आपका प्रोग्राम, फेवरेट प्रोग्राम कहूँ तो ज्यादा अच्छा होगा, रेनबो जीनियस फिर से हाजिर होंगी 4 बजे, लेकिन अब समय है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर का, जहाँ आज का जो विषय है वो है डेंटल ट्रीटमेंट एंड इम्प्लांट्स। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी FM रेनबो के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: मुस्कान सिर्फ चेहरे की नहीं आत्मविश्वास की भी पहचान होती है। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और मैं हूं आपकी मेजबान शिल्पा गुप्ता। एक सवाल जो मैं अपने श्रोताओं से करना चाहूंगी कि हम रोज अपने चेहरे की तो खूब देखभाल करते हैं, लेकिन क्या हम अपने दांतों का भी उतना ही ध्यान रखते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। और फिर छोटी सी लापरवाही, कभी कैविटी, कभी मसूड़ों की बीमारी, तो कभी दांत खोने जैसी समस्या का कारण बन जाती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज आधुनिक डेंटल ट्रीटमेंट और डेंटल इम्प्लांट इन समस्याओं का प्रभावी समाधान बनकर सामने आए हैं। हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का विषय है डिफेंडिंग योर स्माइल, यानी अपने दांतों की देखभाल कर हम अपनी मुस्कान बनाए रख सकते हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दंत विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ हैं डॉक्टर हरमीत सिंह, डेंटल स्टाफ सर्जन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: थैंक यू जी, थैंक यू।
3: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं जुड़े रहिए हमारे साथ, आज हम बात करेंगे डिफेंडिंग योर स्माइल पे, यानी मुस्कान को खूबसूरत बनाए रखने के लिए दांतों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो डॉक्टर हरमीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौखिक स्वास्थ्य को क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और ये बाकी स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है?
4: देखिए, मौखिक स्वास्थ्य जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि ओरल हेल्थ इज अ मिरर इमेज ऑफ जनरल हेल्थ, मींस अगर मुख स्वस्थ तो जनरल हेल्थ भी स्वस्थ रहेगी। तो इसके लिए आपको, अगर आपके माउथ में कोई भी इन्फेक्शन या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी जनरल हेल्थ भी ठीक रह सकती है। जैसे कि ये एक गेटवे है, ओरल कैविटी जो है गेटवे है टू द एयर एज वेल एज टू द फूड। तो एनी इन्फेक्शन इन द ओरल कैविटी और क्रोनिक इन्फेक्शन इन द कैविटी, इट कैन इन्फेक्ट द थ्रोट, द लंग्स, इट कैन इन्फेक्शन कैन गो टू द लंग्स और इट कैन गो टू द इंटेस्टाइन ऑल्सो। सो ओरल कैविटी की जो केयर है बहुत जरूरी है। और बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ओरल कैविटी में जो डेंटिस्ट जो है स्पॉट कर सकते हैं कि अगर उसको कोई जनरल बीमारी तो नहीं है, कोई क्रोनिक बीमारी तो नहीं है। जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज है, उसमें ड्राई माउथ हो जाता है, और किसी को ल्यूकीमिया है या HIV एड्स है, उसके साइन एंड सिम्टम्स मुंह के अंदर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ओरल कैविटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप जानते ही हैं कि पुराने जमाने में जब डॉक्टर के पास जाते थे तो वो सबसे पहले किसी को फीवर है, कोई भी बीमारी है, तो मुंह खोल करके टॉर्च से चेक करते थे, तो उससे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ओरल कैविटी, जिससे हमारी जनरल हेल्थ के बारे में पता चलता है।
3: तो डॉक्टर रेखा आपसे जानना चाहेंगे कि आमतौर पर ओरल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं?
5: ओरल डिजीज बहुत तरह के होते हैं, जो कॉमनली नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे हम पाइरिया से अगर शुरू करें, जिसको कि हम, जो मसूड़ों की बीमारी है एक तरह से, जो हड्डी तक भी जा सकती है अगर सही समय पे उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। इसके अलावा दांतों में कीड़ा लगना, तो अगर हम एक मोटे मोटे तौर पे बात करें, देखिए मुंह के अंदर दांत है, हड्डी है, मसूड़े हैं और उसके आसपास हमारे गम सॉफ्ट टिश्यू है, जैसे कि चीक और टंग। तो कोई भी बीमारी जो इससे रिलेटेड है, तो हार्ट टिश्यू को अफेक्ट करने वाली डेंटल केरीज, जैसे मैंने कहा दांतों में कीड़ा लगना, सॉफ्ट टिश्यू यानी मसूड़े को अफेक्ट करने वाला या गम्स को अफेक्ट करने वाला पायरिया या जिंजिवाइटिस या पेडोंटाइटिस जिसको बोलते हैं, जिससे मसूड़ों की सूजन, खून आना, दर्द होना, दांतों का हिलना, हड्डी का गलना, ये सब शुरू हो सकता है। देन कई बार देखा गया है कि जीभ और जो आपके गाल का टिश्यू है, बकल म्यूकोसा, उसके ऊपर कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, खासकर

0: तंबाकू खाने वाले लोग या बीड़ी पीने वाले लोग, उनमें कई तरह के वाइट लीजन्स और इस तरह के प्री कैंसरस लीजन्स भी देखे गए हैं। सो बहुत किस्म की बीमारियां मुंह में देखी जा सकती हैं। और जैसे डॉक्टर हरमीत ने अभी कहा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद से मुंह की बीमारी नहीं है, शरीर में कुछ बीमारियां हैं बट जिसके लक्षण मुंह में देख सकते हैं।
1: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

मुस्कुराने की वजह तुम हो, इसी मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए दांतों को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। आज हम बात कर रहे हैं डिफेंडिंग योर स्माइल पर, तो डॉक्टर रेखा आपसे जानना चाहेंगे कि किन शुरुआती लक्षणों को देखकर हमें लगता है

0: कि हमें डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, डॉक्टर के पास इमिडिएटली जाना चाहिए, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं?
1: जी, कुछ जिनको हम अलार्मिंग सिस्टम कह सकते हैं. सो शुरुआती लक्षण जैसे कि इट कुड बी एज स्मॉल एज मुंह से बदबू आना, या मसूड़ों में ब्रश करते हुए खून आना, या फिर ठंडा गर्म लगना. ये बहुत सारी बीमारियों के शुरुआती लक्षणों में आते हैं, और अगर इन्हें इसी समय पे इस पे ध्यान दिया जाए और ट्रीटमेंट किया जाए तो हम बीमारियों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं. तो कहीं भी किसी तरह की स्वेलिंग हो, खून आ रहा है, दर्द कर रहा है, कहीं आपको सूजन दिख रही है, कहीं काला काला कुछ, मतलब जैसे केरीज अगर नहीं पता लगता कुछ तो उसका दिखने में दांत का कलर बदलता हुआ दिख रहा है, कोई दांत हिलना शुरू हो जाता है, मसूड़े फूले हुए या लाल नजर आते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स. तो ऐसा कुछ भी आपको अगर अपने मुंह में दिखता है तो आपको डॉक्टर को जाके इमीडिएटली दिखाना चाहिए.
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर. हेलो.
2: हेलो,
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ.
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: हाँ, सबसे पहले तो एंकर में मकबोना डॉक्टर साहिबान को नमस्कार.
0: नमस्कार.
1: नमस्कार.
2: मेरे चार सवाल हैं. पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो कई शख्स ऐसे होते हैं उनके मुंह में जो है वो दांतों के बीच में गैप होता है स्पेस, और कई होते हैं उनके बीच में नहीं होता, और किसी के मुंह में 28 दांत होते हैं, किसी के मुंह में 32 दांत होते हैं. तो इसमें मतलब इंसान की, शख्स की अपनी कोई प्रॉब्लम होती है कि ये विरासत में माँ बाप की वजह से मिलता है, ऐसा कुछ क्या है, मतलब ये मिथ दूर करें. दूसरा सवाल मेरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो होते हैं वो दांतों की एक्सरसाइज के लिए माउथ की, मुंह की, जबड़े की और मसूड़ों की वो च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? और चौथा सवाल ये है कि ये जो आपका मौलाना अबुल कलाम डेंटल सेंटर है इसका टाइमिंग क्या है, और आप दांत जो रीप्लांट करते हैं उसमें समय पजर क्या था, कितना समय लगता है, तो जरा ये बताएं, प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी.
3: हाँ, बहुत सारे सवाल कर दिए एक ही बार में आपने. तो पहला सवाल जो आपका ये था कि आपके दांतों में गैप है, तो ये डिपेंड करता है एज के हिसाब से. अगर तो छोटे बच्चों में है वो तो नॉर्मल ही होता है दांतों के बीच में गैप. अगर कोई बड़े हैं उनके दांतों के बीच में गैप है तो जनरली मसूड़े कमजोर होने की वजह से दांत जो है फ्लेयर कर जाते हैं, तो उसकी वजह से गैप आ जाता है. तो मेन है कि आपको अपने मसूड़ों का केयर करना है, मसूड़ों को टाइट करना है कि जो दांत फ्लेयर हो गए हैं और फ्लेयर ना हो, उसको प्रिवेंट करना है और ज्यादा हिलने से बचाने के लिए, और गैप और ज्यादा प्रिवेंट करने के लिए. और अगर दांतों के बीच में कुछ कैविटी है इन बिटवीन एरिया में साइड में से, तो उसकी वजह से भी गैप हो सकता है, तो वो आपको एक चेकअप कराना पड़ेगा अपने डेंटिस्ट के पास जाकर के, और अगर कोई एक्सरे की जरूरत पड़ेगी तो वो करा करके देखना होगा गैप का कारण क्या है और उसका फिर समाधान क्या होगा. और दूसरा आपने पूछा 28 और 32 दांत. देखिए, पहले जो जॉ का साइज जो है बड़ा होता था, क्योंकि इंसान जो था वो रॉ फूड खाता था, मतलब आवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. तो अभी क्या है कि अभी सब सॉफ्ट फूड पे आ गए हैं, सब खाना पका करके खाते हैं, तो आप 32 की अब ज्यादा जरूरत रही नहीं है. तो ईयर बाय ईयर जो दांत जो है 28 होते जा रहे हैं, और जो बाकी के जो पीछे के दांत हैं अकलदार जिसको हम कहते हैं, वो तो या तो इंपैक्टेड रह जाते हैं बोन के अंदर ही और फिर वो प्रॉब्लम करते हैं, और ये एक नॉर्मल है. अगर 28 भी है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है. और मीट्स के टाइमिंग जो है वही है, मॉर्निंग 9 o'clock से ओपीडी स्टार्ट होता है, डेली होता है, आप किसी भी दिन आ सकते हैं वहां पर वर्किंग डेज पे.
1: इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि सैटरडे को, शनिवार को भी खुला होता है अस्पताल, बट हाफ डे होता है, बाकी दिन ये 4 बजे तक चलता है, पर ओपीडी टाइमिंग जनरली 9 से 1 ही होता है, और सैटरडे को हाफ डे है.
0: अच्छा, डॉक्टर रेखा, जैसे कि इन्होंने इम्प्लांट के बारे में भी पूछा था, तो ये डेंटल इम्प्लांट, ब्रिज और डेंचर में क्या अंतर है और किन कंडीशंस में किया जाता है?
1: देखिए, दांतों को लगाने का, किसी आदमी का जब दांत निकल जाते हैं तो उसे हम आर्टिफिशियल दांतों से लगाते हैं, लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं. सो कितने दांत निकले हैं, बाकी दांतों का क्या कंडीशन है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं डेंचर की बात कहूँ, तो निकालने लगाने वाला डेंचर सबसे पुराने समय से जो चला आ रहा है, जिसको हम 32 भी कहते हैं, तो एक दांत से लेके 32 दांत तक हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं. ये पेशेंट को हर रोज निकालना होता है और लगाना होता है. उसके बाद अगर हम आए ब्रिज या क्राउन की जो हम बात करते हैं, तो अगर किसी का 1, 2 या मैक्सिमम 3 दांत तक निकले हैं, तो हम उसको ब्रिज से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें हम आसपास वाले दांतों से सपोर्ट लेके जो मिसिंग दांत है उसे लगाया जाता है और ये मुंह के अंदर फिक्स हो जाता है, पेशेंट को उसे निकालना नहीं पड़ता. तीसरी ऑप्शन आती है इम्प्लांट. सो अब इम्प्लांट जो ट्रीटमेंट है उसमें जब आपका असली दांत निकल गया, सो एक तरह से आप ये कहें कि हम उसका एक कृत्रिम तरीका, एक स्क्रू जैसा होता है टाइटेनियम का, जिसको

0: हड्डी के अंदर लगा देते हैं। इट इज एज गुड एज या सिमिलर टू जो आपके दांत की जड़ होती है, उसके ऊपर जब इम्प्लांट हड्डी के साथ जुड़ जाता है तो उसके ऊपर फिर दांत बनाया जाता है। ये इम्प्लांट का जो ट्रीटमेंट है ये सभी दांतों को रिप्लेस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे मैंने 32 की बात कही, और ये एक दांत को रिप्लेस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। और इवन इम्प्लांट के साथ भी पूरा फिक्स भी हो सकता है और निकालने वाला दांत भी इम्प्लांट से सपोर्ट लेके बनाया जा सकता है। तो ये सिचुएशन पे, पेशेंट की जरूरत पे और बहुत से और फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए चूज किया जाएगा।
1: तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इम्प्लांट नहीं किया जा सकता, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी, मैं यामिन भाई, रेडियो वाला।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: जी मैं सर से और मैम से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम पान गुटखा दूधी कुछ भी नहीं खाते तब भी दांत पीछे से लाल ही रहते हैं, जैसे कुछ लोगों, और एक ये जानना चाह रहा हूँ जैसे कुछ बच्चों के दांत टूट जाते हैं फिर वो आते ही नहीं है, बड़े हो जाते हैं बच्चे, इसका भी क्या कारण है तो ये बताएं।
0: मैं इसका जवाब देती हूँ, अगर दो ही आपके सवाल हैं तो। देखिए, अगर जो पान सुपारी कुछ तंबाकू नहीं खाते फिर भी आपने कहा लाल दांत, तो दांतों का रंग आमूमन लाल नहीं होता, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई ना कोई कारण जरूर होगा, जैसे कि कई दंत मंजन एक है जो, या तंबाकू वाले पेस्ट कुछ होते हैं जिसे पेशेंट यूज करते हैं, तो कई बार वो भी दांतों का डिस्कलरेशन कॉज कर देते हैं। इसके अलावा जब दांत की ऊपरी परत घिसने लगती है तो जो नीचे से परत निकल के आती है वो थोड़ा पीलेपन पे होती है, तो वो भी उस सिचुएशन में भी आपको ऐसा लगता है कि दांतों का रंग बदल गया है। और कुछ हिंदुस्तानी खान पान तरीके ऐसे होते हैं जो बहुत सारी तरह की स्टेनिंग कॉज कर सकते हैं, जैसे हमारे खाने में हल्दी बहुत होता है, चाय कॉफी हम बहुत पीते हैं, तो इवन ये वाली चीजें भी दांतों की डिस्कलरेशन कॉज करती है। देन आपने दूसरा सवाल पूछा कि बच्चों के दांत टूटने के बाद नहीं आते, ऐसा हो सकता है कि दूध का दांत था और वो टूटा तो पक्का दांत नहीं आया, तो ये वाली चीज एक्सरे से कन्फर्म किया जा सकता है, क्योंकि इसके कई कारण है, कई सिचुएशंस में तो दांत बनता ही नहीं है, पक्का दांत बना ही नहीं तो वो कभी भी नहीं आएगा, बट कई सिचुएशन में ऐसे होता है कि वो हड्डी के अंदर टेढ़ा है या अगल बगल वाला दांत उसको ऊपर आने से रोक रहा है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो कई बार हम उसे सर्जिकली या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से बाहर भी निकाल सकते हैं, इरप्ट करा सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि बच्चे का दांत नहीं आया है दूध का दांत टूटने के बाद, तो आपको जाके डॉक्टर से उसकी जांच करानी चाहिए कि उसका कारण क्या है।
1: जैसे कि कई बार होता है बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते दांत टूट गया, या कोई बड़े भी हैं वो बाइक पे जा रहे हैं या कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, इंसिडेंट हो गया, दांत टूट गया, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है?
3: देखिए, बहुत सारे स्पोर्ट्स भी हैं और एक्सीडेंट में भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका कि दांत या तो टूट जाता है या पूरा का पूरा ही दांत उखड़ के बाहर आ जाता है। तो कोई भी अगर पार्ट आपका दांत का टूट गया है या दांत उखड़ के बाहर आ गया है, तो सबसे पहली केयर तो ये करनी है, उसको ट्रांसफर करना है उस टूथ को। तो सबसे बेस्ट मीडियम जो है ट्रांसफर करने के लिए वो है मिल्क, कोल्ड मिल्क। और कोई छोटा सा कप लीजिए, उसमें मिल्क कहीं भी आसपास से लेकर के उसके अंदर स्टोर करके आप नियरेस्ट डेंटिस्ट को आप अप्रोच करिए। तो अगर टूथ बाहर रहता है ओरल कैविटी से, तो विद इन 30 मिनट्स उसके जो लिगामेंट हैं वो डिजनरेट होना शुरू कर देते हैं, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो है बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो मिल्क जो है बेस्ट स्टोरेज मीडियम है, हर स्कूल में या कॉलेज में जहां भी स्पोर्ट्स खेला जाता है या घर के आसपास, तो वहां पर मिल्क होता ही है नॉर्मली, तो उसमें स्टोर करके आप नियरेस्ट डेंटिस्ट को विद इन 1 आवर अगर आप रीच करते हैं, तो चांसेस हैं कि हम उस टूथ को दोबारा से रीइम्प्लांट करके उसको जो है 10 डेज के लिए वायर से फिक्स कर देते हैं, ताकि वो दोबारा से बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। बट ऐसा हम जनरली परमानेंट टीथ में करते हैं, जो डेसिड्यूस टीथ होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं, उनको हम रीइम्प्लांट नहीं करते हैं। इसके अलावा जैसे कोई दांत टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो आजकल टेक्निक है कि हम फ्रैक्चर पोर्शन को भी मटेरियल के साथ फिक्स करके, और अगर उसमें रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है, आरसीटी करने की जरूरत पड़ती है, एक्सरे करके हम देखते हैं, तो वो भी करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो तुरंत डेंटिस्ट के पास आना चाहिए।
1: एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
4: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं यूपी गाजियाबाद से उमेश बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए उमेश जी, क्या प्रश्न है आपका?
4: मेरा डॉक्टर साहब से ये प्रश्न है कि ब्रश करते समय कभी कभी मसूड़े में सूजन आ जाती है, तो डॉक्टर साहब एक दो खुराक देते चली जाती है, क्या इससे अलग भी कोई और टेस्ट करवाना चाहिए कि अंदर से क्या बीमारी है, ये पूछना चाह रहा था।
0: क्या आप अपना सवाल एक बार रिपीट करेंगे? आपने कहा मसूड़े में सूजन आ जाती है, उसके बाद आपने क्या कहा?
4: ब्रश करने पर कभी कभी सूजन आ जाती है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक दो खुराक दे देते हैं और सही हो जाती है।
0: ओके, ओके
4: इससे आगे क्या कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे पता पड़े कि क्यों हो जाती है?
0: देखिए अगर आपको एक ही मसूड़े पे बार बार सूजन आ रही है एक ही जगह पे तो फिर इसका मतलब उसमें कोई ना कोई तरह का इन्फेक्शन है जो बार बार मसूड़े की सूजन कॉज कर रहा है। कई बार मसूड़े के अंदर या हड्डी के अंदर पस पड़ जाता है जिसको हम एब्सेस बोलते हैं। जो आपने कहा कि ब्रश करते हुए, तो वो कई बार तो ब्रश करते हुए अगर मान लीजिए ब्रश जोर से लग गया या ऐसा हुआ तो उससे भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर एक ही मसूड़े पे बार बार आ रहा है और सूजन दिख रही है, बड़ी सूजन दिख रही है जो दवा देने से ठीक हो जाती है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपको एंटीबायोटिक दिया गया होगा तो उससे वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, पर वो पूरी तरह नहीं जाएगा जब तक कि उसका जो कारण है वो नहीं जाना जाएगा और उसको नहीं हटाया जाएगा। तो उस दांत में इन्फेक्शन है इसका मतलब, या तो मसूड़े में या नीचे हड्डी में, तो आपको डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले उसकी क्लिनिकली जांच करानी चाहिए और एक छोटा एक्सरे कराना चाहिए जिस मसूड़े के आसपास वो सूजन आती है उस एरिया का, सो दैट हमें उसका कारण पता चल सके और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट किया जा सके।
4: थैंक यू।
1: एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली। मेरी एज 40 है और मैं किसी भी तरह का स्मोकिंग पान मसाला नहीं करता, मगर पिछले 3 महीने से राइट साइड लास्ट के नीचे वाले टीथ में हल्का दर्द और हल्का काला है सेंटर में हो रहा है और लास्ट के चारों टीथ की सफाई में दिक्कत हो रही है, तो कैसे हाइजीन करूं प्लीज बताएं। 2 बार टीथ की सफाई भी करवा चुका हूं हॉस्पिटल में।
3: देखिए अगर आपके दांत के ऊपर स्टेन्स हैं वो डार्क हो रहे हैं तो हो सकता है कि वो एक कैविटी की शुरुआत हो, कैविटी हो रहा हो आपके दांत में, तो उसका चेकअप कराना होगा। अगर उसमें कैविटी है तो उसको क्लीन करके उस कैविटी को उसके अंदर फिलिंग मटेरियल या परमानेंट रिस्टोरेशन उसके अंदर करना होगा। और अगर मुंह खोलने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको चेकअप कराना चाहिए, कहीं उसमें विजडम टूथ तो नहीं है जो इम्पैक्टेड है, जो बार बार वहां पर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो आपको चेक नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाकर के चेकअप कराइए और आप उसका समाधान कराइए।
1: एक और मैसेज हमारे पास ही लिखते हैं, एंकर मैम और डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर सिंह को गुड आफ्टरनून। जहाँ तक मिसिंग दांत लगाने की बात है तो ये काफी महंगा है, तो इसकी एक बार इसकी कितनी कॉस्ट है, क्या इसको आम आदमी अफोर्ड कर सकता है और इसको कितना पेनफुल है ये ट्रीटमेंट, ये बताएं। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: हरदेव जी, मैंने थोड़ी देर पहले अभी अलग अलग तरीके बताए थे दांत को लगाने के, तो ऐसा नहीं है कि सारे ट्रीटमेंट महंगे होते हैं। अफोर्डेबल अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे हैं इलाज जो काफ़ी अफोर्डेबल हैं और ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में वो या तो फ्री या बिल्कुल बहुत ही कम चार्जेस के साथ वो ट्रीटमेंट किया जाता है, तो आप बिल्कुल उसे अफोर्ड कर सकते हैं। अब सबसे महंगा जो अगर हम बात करें, शायद आप वही पूछना चाह रहे, डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि उसे बनाने का तरीका, उसका मटेरियल जो है वो कॉस्टली है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि दांत निकला है तो हमें इम्प्लांट ही लगाना है, और भी बहुत सारे तरीके उसे लगाने के जो इक्वली अच्छे हैं और आपको खाने में, बोलने में और आपकी जो भी दांत मिसिंग होने के कारण प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कितने दांत मिसिंग है तो ही हम बता सकते हैं कि कितना खर्चा होगा और कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है।
1: जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि डेंटल इम्प्लांट किन कंडीशंस में नहीं किया जा सकता, तो उसके बारे में हमें बताएं।
0: जी, आजकल बिकॉज इंटरनेट का जमाना है तो ज्यादातर मरीज हमारे पास इस उम्मीद के साथ आते हैं कि हमें इम्प्लांट लगा दिया जाए। सो अभी जैसे मैंने हरदेव जी को कहा कि आपका पर्पस इम्प्लांट लगाना नहीं है, आपका पर्पस या डेंटिस्ट का पर्पस दांत लगाना है जो मिसिंग है। अब या मैं उसे इम्प्लांट की मदद से लगाऊं, बाकी दांतों की मदद से लगाऊं, के मसूड़ों की मदद से लगाऊं, राइट? सो बहुत सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें इम्प्लांट नहीं किया जा सकता। सबसे पहला तो हड्डी जहां से दांत निकला है, इम्प्लांट डालने के लिए हमें एक हेल्दी बोन जो कि वॉल्यूम और हाइट दोनों चीजों में अच्छी हो, मतलब एक अच्छी क्वांटिटी की हड्डी होना चाहिए जो उस स्क्रू को या इम्प्लांट को रिसीव कर सके। तो अगर हड्डी ही नहीं है, घिस चुकी है या हाइट में छोटा है, या कई बार होते हैं बहुत से नर्व्स वहां पे हैं जो उस एरिया में पास है तो इसलिए हम, या साइनस है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स है, ब्लड वेसल्स हैं, तो जिसके कारण वहां इम्प्लांट नहीं डाला जा सकता। और इसके अलावा दूसरा कारण होता है सिस्टमिक डिजीज, जैसे कि किसी को अगर मान लीजिए शुगर है, ब्लड शुगर जो अनकंट्रोल्ड है, या किसी और तरह की बीमारियां हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, सो इन सिचुएशंस में बहुत सी ऐसी और सिचुएशन है जो सबका नाम मैं नहीं ले रही, उस सिचुएशन में हम डेंटल इम्प्लांट ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं। एक और प्रॉब्लम कॉमन, जैसे ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, कई लोग ऐसी दवाइयां लेते हैं जिसके कारण ब्लीडिंग ज्यादा होती है, ब्लड थिनर्स होते हैं जो बहुत कॉमन है बहुत सी बीमारियों में, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें बहुत सोच समझ के इम्प्लांट का ट्रीटमेंट करना होता है।
1: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हर तरह से रास्ता कट जाता है, मुस्कुराते हुए बस अपनों का साथ जरूरी है। आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं डिफेंडिंग योर स्माइल, कि अपनी मुस्कान को कैसे बनाए रखें और अपने कैसे दांतों को सुरक्षित रखें। तो डॉक्टर रेखा, हम जैसे की बात कर रहे थे डेंटल इम्प्लांट पर, तो ये तो आपने हमें बताया कि कब करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं। अगर कुछ डेंटल इम्प्लांट नहीं करा सकते कुछ कंडीशंस में, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है?
1: उनके लिए डेंचर्स, जो कन्वेंशनल निकालने लगाने वाले डेंचर, वो लगाए जा सकते हैं, जो सबसे सिंपल प्रोसीजर है। और अगर कुछ ही दांत मिसिंग है तो हम क्राउन एंड ब्रिज की हेल्प से, जिसमें आसपास वाले दांतों से सपोर्ट लेके हम दांत लगाते हैं, वो भी किया जा सकता है। एक चीज मैं यहाँ और मेंशन करूंगी, जैसे कई बार होता है कि पेशेंट्स के 3-4 दांत बचे हैं, ज्यादातर निकल चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक ऑप्शन होती है जिसको हम आजकल नेचुरल इम्प्लांट, में अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि ये आपके नेचुरल इम्प्लांट्स हैं। अगर वो दांत हेल्दी हैं तो उनको हम बचा सकते हैं, और उसके ऊपर डेंचर लग जाता है जिसको कि ओवर डेंचर बोलते हैं। तो ये कुछ एक ऑप्शंस हैं जो इम्प्लांट के बिना भी की जा सकती है।
0: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, एक दिन में कितनी बार ब्रश करना अच्छा होता है टीथ की हेल्थ के लिए? मोहित काम्बोज, विलेज जोधा बंस, सहारनपुर, यूपी। जी डॉक्टर हरमीत बताइए।
2: हाँ जी मोहित जी, ब्रश जो है दिन में 2 बार करें, रूल ऑफ 2 बोलते हैं इसको, ब्रश दिन में 2 बार करना चाहिए और 2 मिनट के लिए करना चाहिए, और हर साल 2 बार ही डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, ये तो रूल ऑफ 2 है। और ब्रश करने के लिए अलग अलग टेक्निक होती है, वो हम एज, पेशेंट की एज देख करके और उसका जनरल कंडीशन देख करके बताते हैं किस किस तरह से ब्रश टेक्निक है, बट जनरली हम मॉडिफाइड बास टेक्निक जनरली हम एडवोकेट करते हैं कि पेशेंट्स को इसमें क्या है, ब्रश के ब्रिसल्स जो हैं 45 डिग्री एंगल्स पे रखना होता है गम्स पे, और उसको वाइब्रेटरी मोशन से स्वीप मोशन के साथ डाउन मूव करके उसको क्लीन करना होता है टीथ के सर्फेसिस को। आप वैसे भी इसको गूगल पे सर्च करके मॉडिफाइड बास टेक्निक आप सर्च कर सकते हो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे किस तरह से करना चाहिए। और छोटे बच्चों में जनरली हम उसको चार्टर टेक्निक बोलते हैं, उसमें जो है सर्कुलर मोशन के साथ बच्चे को टीथ को क्लीन करना चाहिए। और रही टूथपेस्ट के बाद, टूथपेस्ट जो है फ्लोरिडेटेड होना चाहिए, फ्लोराइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टीथ के एनेमल की सेफ्टी के लिए, जो एनेमल जो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, और जो फ्लोराइड जब हम यूज करते हैं वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट करता है, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल एनेमल, तो इसलिए जो है हमेशा फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। और उसकी कंसेंट्रेशन अलग अलग टूथपेस्ट में अलग अलग होती है, तो जनरली हम जो बच्चे न्यू बॉर्न है, नए अभी टीथ आए हैं, नॉर्मली 10 महीने के आसपास छोटे बच्चों में टीथ आ जाते हैं, तो हम जनरली कहते हैं 18 महीने की उम्र तक बच्चे को ब्रश जो है सुपर सॉफ्ट ब्रश करना चाहिए, और बिना टूथपेस्ट के कर सकते हैं। 18 महीने से 6 साल की एज तक के बच्चों को 500 ppm का टूथपेस्ट आता है, 500 ppm जिसके अंदर फ्लोराइड होता है वो यूज करना चाहिए, और उसके बाद 6 साल से ऊपर सभी को एडल्ट टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। ये है नॉर्मली, अगर कोई ज्यादा केरीज प्रोन है जिसमें ज्यादा कैविटीज होती हैं, तो उसके लिए हम मोर फ्रीक्वेंट या हाई फ्लोराइड कंसेंट्रेशन का भी टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं, बट वो क्लिनिकली पेशेंट को देखने के बाद ही। और ब्रश करने से एक बात बताऊं मैं, उससे सिर्फ 60% ऑफ द टीथ सर्फेसिस जो है क्लीन होते हैं, तो आपको कंप्लीट क्लीनिंग के लिए फ्लॉस करना मस्ट है, फ्लॉस इज मैंडेटरी, तो फ्लॉस करना जरूर कभी ना भूलें, ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस भी करना है, जो इन बिटवीन सर्फेसिस हैं टीथ के, तो फ्लॉस से उसको जरूर क्लीन करना है। और रेगुलर माउथवॉश जो जनरली लोग यूज करते हैं वो नहीं यूज करना चाहिए, जब तक कि डॉक्टर की सलाह ना हो। और दूसरा, माउथवॉश जो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है, वो गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के उससे रिंसेस कर सकते हैं, डेट इज अ बेस्ट माउथवॉश फॉर इंडिया।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
3: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: जी मैम मेरा नाम सोनू पासवान है, मैं दिल्ली आजादपुर से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे राइट साइड में दांत के ऊपर वाले दांत के राइट साइड के सेकंड दांत में एक अजीब सा उठा हुआ सा घाव टाइप का है या क्या है नहीं पता, लेकिन उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन वो उठा हुआ सा है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो कभी कभी, ब्रश करते हैं तो सही से सफाई नहीं हो पाती उस दांत की, या जो भी कह लें, बिल्कुल जिसे हम लोग शुद्ध देशी भाषा में कहें तो खोड़ी टाइप का निकला हुआ है, तो वो कैसे ठीक होगा, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: जो पासवान जी आपने ये बोला, एक बार बताएं क्या ये दांत के ऊपर है कि मसूड़े के ऊपर है?
3: जी दांत के ऊपर है।
1: तो ये नॉर्मल है, आप कह रहे कि उसमें दर्द नहीं होता और ये बहुत टाइम से वैसा ही

0: बना हुआ है, ना घटा है ना बड़ा है, उसके आसपास कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, तो ये दांत जब बन रहे होते हैं, इनामल डिपॉजिट हो रहा है, उसके ऊपर मिनरल डिपॉजिट होते हैं, तो वो कई बार अलग अलग शेप में डिपॉजिट होते हैं। और
1: लेकिन मैम ये पहले नहीं था, ये कुछ कुछ सालों से ये है, ये अचानक हुआ है। पहले कुछ हल्का सा दबा था दांत पर, फिर अचानक ये धीरे धीरे उठने लगा।
0: दांत खुद से नहीं उठता है जनरली, मगर देखिए दो चीजें जो मैं सिर्फ सुन के इमेजिन कर सकती हूँ, एक तो ये कि हो सकता है उसके ऊपर कुछ कैलकुलस डिपॉजिट हो, कई बार वो इतना हार्ड हो जाता है कि वो दांत का हिस्सा ही लगने लगता है अगर उसको समय पे साफ ना कराया जाए, क्योंकि दांत के ऊपर एक बार जब दांत इरप्ट हो गया, बन गया, तो उसके ऊपर कुछ भी उसकी शेप वैसे चेंज होना, गड्ढा हो सकता है पर उठेगा नहीं। तो अगर आपको वो तकलीफ दे रहा है और अभी कुछ टाइम से आपने नोट करना शुरू किया है, तो प्लीज एक बार किसी भी डेंटिस्ट के पास जाके उसकी जांच कराएं। पर जहां तक मुझे आपके सिम्टम से समझ आ रहा है, कुछ घबराने वाला तो नहीं होगा, बिकॉज कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी एक बार आप उसे जाके जरूर से दिखाएं।
1: नहीं, लेकिन कई बार ठंडा पानी या कोई भी गर्म चीज हल्की फुल्की लग जाती है ना, तो
0: हाँ जी,
1: थोड़ा लगता है।
0: हाँ तो फिर आप दिखा लीजिए, क्योंकि उठने का कारण अगर देखिए ठंडा गर्म जैसे आपने कहा लगता है, तो वो ना कई बार दांतों में कीड़ा जिसमें लगा होता है उसमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, या दांत ऊपर से कई बार घिस जाते हैं जिसके बहुत से कारण होते हैं, तो ऊपरी परत जो सख्त परत होती है जिसको इनामल कहते हैं, उसके घिसने के बाद भी ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। बट जो आप क्लिनिकल अपियरेंस बता रहे हैं वो आप उल्टी बता रहे हैं, इन सब चीजों में कम होगा दांत, बढ़ेगा नहीं। सो अगर ये बढ़ रहा है कोई भी एक हिस्सा, सो मेरे को लगता है क्वाइट पॉसिबल कि वो टार्टर डिपॉजिट या कैलकुलस डिपॉजिट हो सकता है।
1: मैंने एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था इस चीज के लिए, तो उन्होंने बोला कि इसमें मसाला भरा नहीं जा सकता, अगर इसमें मसाला भरा जाएगा तो दर्द होगा, आप इसको बस नॉर्मली सफाई करते रहें, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर अगर आपको अगर मुझसे वो नहीं लग रहा है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को और दिखा
0: आप
1: सकते हैं।
0: किसी और को जरूर से दिखा लें। मसाला हम हर दांत में भर सकते हैं, पर सिर्फ इतना होता है कि जब दांत में जो केरीज है वो गहरी होती है, पल्प तक चली जाती है, तो फिर सिंपल मसाला भरने से उसमें दर्द बढ़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में कई बार रूट कैनाल कराना पड़ता है और उसके बाद मसाला भरा जाता है। मसाला जो मसूड़े के बीच में जगह बन जाती है उस जगह पे हम नहीं भरते कभी भी, वो हम मना करते हैं कि उस स्पेस को हम मसाला भर के खत्म नहीं कर सकते।
2: एक मैसेज है हमारे पास, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ब्रशिंग टेक्निक पे, तो उन्होंने लिखा है, यह है ज्योति का, ये लिखते हैं, क्या कभी कभी एडल्ट टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं बच्चे? मेरी बेटी 2.5 साल की है।
3: नहीं, 2.5 साल के बच्चे में जनरली जो है हम किड्स टूथपेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें 500 से 550 ppm फ्लोराइड होता है, और बच्चों में तभी हम एडवाइस करते हैं एडल्ट टूथपेस्ट, अगर उसमें बहुत ज़्यादा कैविटीज हैं, बहुत ज़्यादा केरीज प्रोन है, और वो भी पेरेंट्स की सुपरविजन में एडल्ट टूथपेस्ट यूज करना है और उसको इमिजिएटली स्पिट करना होता है, बट अपने आप आपको एडल्ट टूथपेस्ट बच्चे को नहीं देना चाहिए।
0: मैं इसमें थोड़ा सा कुछ और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि देखिए बच्चे और अडल्ट का अलग अलग क्यों होता है टूथपेस्ट, क्योंकि बच्चे कई बार उसको थूक नहीं पाते, स्वेलो कर लेते हैं, तो जैसे डॉक्टर हरमीत ने कहा अगर फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा है और बच्चा उसे स्वेलो कर लेता है, ठीक से थूक नहीं पा रहा, तो वो फिर उसको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बट अगर आपका टूथपेस्ट उसमें फ्लोराइड नहीं है, नॉर्मल है, जैसे बड़े लोग भी कई बार बहुत सारे कंपनीज के आते हैं जिसमें अलग अलग फ्लेवर वाले, बट अगर उसमें फ्लोराइड या कोई मेडिकेशन नहीं है और आपका बच्चा 2.5 साल का है और अच्छे से थूक सकता है, स्वेलो नहीं कर रहा है, तो आप छोटा अमाउंट, बहुत छोटा, जैसे हम जिसे कहते हैं पी शेप वाला, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं यूज करना, छोटा सा उसको दे सकते हैं।
2: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, डॉक्टर नमस्ते सर, मेरा सवाल यह है कि बच्चों के दांत जो बाहर की तरफ आ जाते हैं, सर इसका कारण क्या है और इससे कैसे बचें? और एक सवाल यह है कि मेरे दांत में कभी कभी ठंडा पानी लगता है, ऐसा क्यों और इसका क्या उपाय है बताएं प्लीज। आसिफ सैफी फ्रॉम मेरठ।
0: देखिए बच्चों के दांत बाहर आने में बच्चे की एज के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि दांत बाहर आने के बहुत से कारण होते हैं, अगर बच्चा छोटा है कि जब दूध का दांत टूटा और पक्का दांत आया, तो कई बार ऐसा लगता है कि दांत बाहर आ गए, क्योंकि दूध के दांत छोटे होते हैं साइज में और जो आपके परमानेंट टीथ होते हैं वो बड़े होते हैं, तो उसमें फर्क नजर आने लगता है। ठीक है, एक कारण ये हो सकता है, एक है कि दांत इरप्ट होने के बाद धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो गए, तो वो कई बार कुछ हैबिट्स के कारण भी ऐसा हो जाता है, जैसे कि कई लोगों को जिसे हम टंग थ्रस्टिंग कहते हैं कि जीभ से दांतों को बाहर पुश करने की आदत होती है, या कई बार लोग बच्चे मुंह से जो सांस लेते हैं माउथ ब्रीदर्स, तो उसमें कई बार दांतों की पोजीशन चेंज हो जाती है। तीसरा सबसे कॉमन कारण है अगर पेरिडोंटल प्रॉब्लम, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि छोटे बच्चों में इतना जल्दी नहीं होगा, बट अगर मान लीजिए सफाई न रखी जाए, मसूड़े की प्रॉब्लम होके वो बढ़ती जाती है, हड्डी घिसने लगती है, तो उस सिचुएशन में दांत अपनी जगह से हिल के थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं या बाहर की तरफ आने लगते हैं। तो ये कुछ कारण हैं। और कई बार जब दूध से, मैंने कहा दूध के दांत से पक्के दांत पे जाते हैं, सो कई बार देखा गया कि दूध का दांत नहीं टूटता और पक्का दांत आना शुरू हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो पक्का दांत कहीं से भी आ सकता है और ज्यादातर वो बाहर की तरफ निकल के आता है। तो कभी भी ऐसा अगर देखें, इसकी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन की, तो आपको ध्यान रखना होगा जब आपके बच्चे के दूध के दांत टूट रहे हैं, तो देखिए अगर पक्के दांत नजर आना शुरू हो गया और दूध का दांत वहीं पड़ा है, तो कई बार हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाके दूध के दांत को निकलवाना पड़ता है, ताकि पक्का दांत अपनी सही जगह पे आ सके, बाहर की तरफ ना आए।
2: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
1: हाँ जी मैम।
2: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: नमस्कार मैम, और रविंद्र भट्ट दिल्ली से बोल रहा था, नारायणा से।
2: अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न ये है मैम कि जैसे 4-5 सालों से मैं खाना चबाते समय दोनों साइड के चोबर से दाल के मसूड़े कट जाते, दाल के मतलब मांस कट जाते थे, तो मैंने दांत को घिसवा दिया, दांत घिसवाने के बाद थोड़ा सा नुकीला हो गया, तो गाल में रगड़ पड़ता है खाना चबाते समय अंदर साइड में, तो लालिमा सा बना हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं?
3: हाँ जी, जरूर दिक्कत है उसके साथ। अगर आपका चीक बाइट बोलते हैं इसको, कि अगर आपके लास्ट वाले टीथ जो हैं, जनरली ये विजडम टीथ जो होते हैं अक्लदाड़, उसके साथ एसोसिएटेड होता है, और आपके चीक को बाइट करता है, तो उसकी वजह से अगर उसमें अल्सर बन जाता है, और कोई भी अल्सर जो है 2 हफ्ते से ज्यादा है, 2 से 3 हफ्ते, तो उसका जो है बायोप्सी होना मस्ट होता है, ये गाइडलाइंस हैं। तो आपको तुरंत नियर बाय डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर वहां पर कुछ रेडनेस या अल्सर बन रहा है तो उसका चेकअप कराइए, और अगर वो रिपीटेडली टूथ ट्रोमा कॉज कर रहा है और विजडम टीथ हैं, तो ऐसे केस में हम एक्सरे करा करके साधारण सा तो उस टूथ को रिमूव भी करते हैं। जो विजडम टीथ होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा होते हैं, उसकी हमारे को जरूरत भी कई बार नहीं होती, बाकी वो आपको क्लिनिकली देखकर ही बता सकते हैं कि इसका कारण क्या है इसका।
1: जी डॉक्टर साहब, मैं एक बार दिखाया था, तो ये बीच बीच में क्या होता है 15-20 दिनों सही हो जाता है, जैसे नेचुरली होता है वैसे हो जाता है, और कभी कभी हार्ड चीज खाने की वजह से बाद में ऐसे लालिमा सी बन जाती है।
3: हाँ, तो अगर बार बार चीक बाइट हो रहा है आपको, तो आपको इसको चेकअप करा करके ट्रीटमेंट कराना होगा, चाहे और दांत को घिसना हो या दांत को निकालना हो। बाकी अगर अल्सर बना हुआ है चीक के ऊपर, वो एक खतरनाक साइन है।
1: नहीं सर, अभी तो फिलहाल 1-2 महीने से तो नॉर्मल है, एकदम सही हो।
3: ठीक है, हाँ, तो फिर आप चेकअप कराइए, है ना।
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करें तो ओरल हाइजीन की, आपने अभी बताया माउथ अल्सर के बारे में, तो ये माउथ अल्सर क्या है और किस तरह के होते हैं और कैसे इनसे प्रिवेंट किया जा सकता है?
3: जनरली अल्सर जो है, मोस्ट कॉमन जो है एप्थस अल्सर होते हैं, वो कॉमनली होते रहते हैं जनरली, और वो उसका मेन कारण होता है स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, नींद पूरी ना होने की वजह से एप्थस अल्सर हो जाते हैं, और इसके अलावा कोई डेफिशिएंसी है, बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, उसके वजह से हो जाता है, तो उसको तो एप्थस अल्सर बोलते हैं, वो नॉर्मली 3-5 डेज में हील हो जाते हैं, तो उसके लिए हम कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं, माउथ वॉश या जेल, तो उससे पेन रिलीफ हो जाता है, अल्सर हील हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ अल्सर्स होते हैं जो फीवर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि हर्पिस इन्फेक्शन है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन होता है, उससे पहले वेसिकल बनता है, फिर उसमें से फ्लूइड निकलता है, वहां पर अल्सर बन जाता है, वो फिर इन्फेक्शियस होता है। और इसके अलावा और भी अल्सर होते हैं, जैसे ट्रोमेटिक अल्सर है, कोई शार्प टूथ है, या कोई प्रोस्थेसिस है जो इल फिटिंग है, उसकी वजह से जो है एक अल्सर बन जाता है, जिसको हम ट्रोमेटिक अल्सर बोलते हैं। तो अगर कोई भी, अगर बॉडी में कोई भी अल्सर है मुंह के अंदर, तो अगर 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा है, तो गाइडलाइंस हैं इसके लिए कि उसका बायोप्सी होना मस्ट है, तो उसका बायोप्सी करके रूल आउट करना है कि कहीं वो कैंसर की स्टेज में तो नहीं है या कैंसर की तरफ जा रहा है, तो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट होना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया। एक मैसेज भी हमारे पास आया है, ये लिखते हैं, नमस्ते जी, दांतों के बीच में गैप है, खाना फंसता है, क्या करें?
0: दांतों के बीच में गैप नया आया है या पहले से है ये आपको बताना होगा। देखिए कुछ जब हम दांत इरप्शन की, अभी जैसे दूध के दांत से पक्के दांत पे जाने की बात कर रहे थे, कई बार क्या होता है आपका जबड़े का साइज बड़ा होता है, दांत का साइज छोटा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में दांतों के बीच में गैप दिखता है। वो किसी एक जगह भी हो सकता है और मल्टीपल दांतों के बीच भी हो सकता है, वो भी ट्रीट किया जा सकता है। और जो आप जैसे कह रहे हैं कि खाना फंसता है, दूसरा कारण उसका है कि अगर कीड़ा लग गया है, दांतों का कॉन्टैक्ट आपस में ब्रेक हो गया, उसके बीच में जगह बन गई और अब वहां पे खाना फंस रहा है, तो अब देख के कॉज क्या है, कीड़े के कारण खाना फंस रहा है तो हम फिलिंग कर सकते हैं। और अगर वो नेचुरल गैप था, दांत इरप्शन के साथ ही आया, तो उसके लिए भी हमारे पास ब्रेसिस का ट्रीटमेंट है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या कई बार कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की उस दांत के ऊपर दांत के रंग की फिलिंग करके उस गैप को हम भर सकते हैं।
2: एक और मैसेज हमारे पास, ये है रविंद्र पाठक, आशा पाठक फ्रॉम नीदरलैंड। वेरी रिस्पेक्टेड शिल्पा मैम जी एंड डॉक्टर मैम जी, डॉक्टर सर जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार जी। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हमारा प्रश्न है कि मैं आशा डायबिटिक पेशेंट हूँ, क्या इस सिचुएशन में दांतों पर भी कुछ गलत प्रभाव हो सकता है? इस हालत में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? वेरी थैंक्स एंड वेरी रिगार्ड्स।
0: देखिए अगर आप डायबिटिक हैं और वो कंट्रोल में है तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर डायबिटिक पेशेंट में दांतों के ऊपर नहीं पर मसूड़ों के ऊपर और हड्डी के ऊपर जरूर फर्क पड़ता है। अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा, शुगर लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा है, तो वो एक कारण बन जाता है जिसको हम जैसे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहते हैं, कि एक आम आदमी को जितनी देर में इन्फेक्शन होगा आपको उससे जल्दी होगा सेम सिचुएशन में। तो मसूड़े सूजना या अगर कोई भी किसी भी तरह का ट्रॉमा हुआ तो वो देर में भरेगा। हड्डी जल्दी घिसती है, दांत निकलने के बाद डायबिटिक पेशेंट में बोन रिजॉर्प्शन ज्यादा होता है और फास्ट होता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो देखे गए हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, स्पेशली अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आपको अपना शुगर कंट्रोल करना होगा, खान पान में बदलाव लाना होगा, मसूड़े की मालिश करें, ध्यान रखें कि किसी भी तरह का मुंह में ट्रॉमा ना हो प्रोस्थेसिस के कारण, शार्प टीथ के कारण या कोई भी और कारण। तो ये कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं। और एक जो प्रॉब्लम और डायबिटिक में देखी गई है, मुंह का सूखना, ड्राइनेस ऑफ माउथ, वो डायबिटिक पेशेंट में जिसको जीरोस्टोमिया कहते हैं बहुत कॉमन होता है। सो आपको शायद वाटर इनटेक अपना बढ़ाना पड़े या एक आर्टिफिशियल सलाइवरी सब्स्टिट्यूट भी आता है, वो भी यूज किया जा सकता है अगर आपको ज्यादा ड्राइनेस हो रही है तो।
2: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, मैम मेरी उम्र 71 वर्ष है, मैं दोनों समय खाने के बाद ब्रश करता हूँ, मेरी सभी जार अभी सुरक्षित है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से दाई तरफ के ऊपर की एक जाड़ के मसूड़े में सूजन है। मैं अब एक सप्ताह से केवल बाई तरफ से ही खाना खा सकता हूँ। खाना खाने के समय दाई तरफ के ऊपर की दाढ़ जब नीचे की दाढ़ से टकराती है तो काफी दर्द होता है। केवल खाना खाने के समय ही दर्द होता है वैसे नहीं, कृपया बताएं मैं क्या करूं। दिनेश शर्मा, शिमला, राजस्थान।
3: देखिए इसमें अगर आपको वहां पर स्वेलिंग हो रही है और पेन कर रहा है चू करने पे जब आप खाना चबा रहे हैं, तो चांसेस है कि वहां पर आपको एक इन्फेक्शन हो गया है जिसको क्रोनिक इन्फेक्शन बोलते हैं, तो जिसकी वजह से आपको रेगुलर पेन नहीं है बट ऑन च्यूइंग करने पर पेन है। तो इसका तो आपको क्लिनिकली चेकअप करवाना होगा और अगर जरूरत पड़े तो एक एक्सरे करा करके देखना होगा कि इन्फेक्शन का कॉज क्या है। अगर दांत में कहीं साइड से कैविटी है या गम्स का रिसीड कर गए हैं, फर्कशन तक अगर गम्स पहुंच गए हैं, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन और पेन कर सकते हैं। तो आपको इसको चेकअप कराना होगा और एक्सरे करा करके अगर कैविटी है तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट कराना होगा।
2: डॉक्टर रेखा, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन की, तो डेंटल एंड ओरल डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं?
0: बहुत साधारण है, लगातार कंसिस्टेंसी, ध्यान दे शुरू से अपने दांतों पे, लापरवाही ना करें। जैसे आप हर रोज नहाते हैं, अपने शरीर को साफ रखते हैं, ऐसे ही अपने मुंह को और अपने दांतों को साफ रखें। सो रेगुलर ब्रशिंग, चाइल्डहुड से ही अगर ये आदत डाली जाए, हमने बात किया इस पूरे प्रोग्राम में आज की बच्चों को भी दांत साफ करने चाहिए, सो चाइल्डहुड से ही ये आदत आपको बच्चों में डालनी है। कुछ भी खाने के बाद एक बार कुरला जरूर करें। अगर आप किसी ऐसी जगह है जहां कुरला करना पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम एक घूंट पानी लेके और उससे अच्छे से रिंस करके उसे पी लीजिए। रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप बिस्तर पे जा रहे हैं तो मुंह में कोई भी खाने का कण बचाना रहे, क्योंकि वो सबसे कॉमन कारण होता है दांतों में कीड़ा लगने का। देन उसके बाद खान पान की आदतें, जो आजकल की जनरेशन में थोड़ा बदल गई हैं, हम फास्ट फूड पे ज्यादा रिलाय करते हैं, तो मैं कहूंगी कि हेल्दी फूड खाएं, फाइब्रस फूड खाएं, सलाद, फल, इस तरह की चीजों को अपने खाने में इंक्लूड करें, बिकॉज ये आपके टीथ और गम की हेल्थ तो इम्प्रूव करता ही है, इसके अलावा इनका कुछ सेल्फ क्लिंजिंग एक्शन होता है कि दांतों की खुद से सफाई भी करता है। फास्ट फूड जैसे च्युइंग गम, जैसे कि हम कहें कि टॉफी, चॉकलेट, स्वीट्स एंड स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स, वो अवॉइड कीजिए, बिकॉज वो बहुत एसिडिक होते हैं और वो दांतों की ऊपरी परत को गला देते हैं। तो अगर खान पान में सुधार और सफाई का ध्यान रखा जाए, और दूसरा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलर चेकअप। कई दांतों की बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनमें सिम्टम जब तक वो डिजीज बहुत बढ़ नहीं गई तब तक नहीं आता, तो एक रेगुलर चेकअप साल में कम से कम, वैसे हम 6 महीने में रेकमेंड करते हैं कि एक रेगुलर चेकअप करा लीजिए, बट कम से कम साल में एक बार तो जरूर ही करा लें, टू मेक श्योर कि कोई किसी तरह की डिजीज स्टार्ट नहीं हुई है।
2: डॉक्टर हरमीत, जैसे कि कई बार हम कहते हैं कि टीथ वाइटनिंग करा लेनी चाहिए या क्लींजिंग कराते रहना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को?
3: देखिए, जैसे स्किन के शेड्स अलग अलग होते हैं, उसी तरह से टीथ का कलर्स और शेड्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो कईयों का व्हाइट होता है, कईयों का येलोइश होता है, कईयों का इन बिटवीन क्रीमिश, अलग अलग से शेड्स होते हैं, तो वो एक नेचुरल शेड्स हैं। तो उसको क्लीनिंग से हम नहीं क्लीन, मतलब और ब्राइट बना सकते, बल्कि अगर उसके ऊपर स्टेन्स हैं जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, चाहे वो टी कॉफी के स्टेन्स हैं या प्लाक डिपॉजिट्स हो गए हैं, कैलकुलस है, उसकी वजह से स्टेन्स हो गए हैं, तो उसको तो हम प्रोफेशनली स्केलिंग एंड क्लीनिंग करके उसको क्लीन कर सकते हैं। और अगर किसी के इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं, जैसे कि किसी को फ्लोराइड स्टेन्स होते हैं, फ्लोराइड बेल्ट काफ़ी है हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट्स के आसपास, तो फ्लोरोसिस की वजह से अगर उसमें इंट्रिंसिक स्टेन्स हैं, तो उसके ऊपर कॉस्मेटिक वेनियरिंग एक ऑप्शन होता है कि हम उसको वेनियरिंग करके उस कॉस्मेटिकली उसको टीथ स्माइल डिजाइन कर सकते हैं, ताकि स्माइल जो है प्रिजर्व कर सकते हैं पेशेंट के लिए।
2: जैसे कि अब जाने का समय हो गया है, तो जाते जाते डॉक्टर रेखा, आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देंगी कि जिससे उनकी स्माइल बरकरार रहे और दांत सुरक्षित रहे?
0: मैं तो एक ही सलाह दूंगी, हम लोगों से मिलते रहें और कोशिश करें कि हमसे रेगुलर चेकअप के लिए मिलने की जरूरत पड़े, बाकी किसी प्रॉब्लम के लिए मिलने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि रेगुलर सफाई अपने दांतों की रखें, उन्हें उतना इम्पोर्टेंट समझे जैसे शरीर के किसी और हिस्से को समझते हैं, तो उनकी देखभाल करें, हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।
2: हर मुस्कान अनमोल है। डॉक्टर हरमीत, आप क्या कहेंगे, मैसेज देंगे हमारे श्रोताओं को?
3: जैसे आज का हमारा टॉपिक था डिफेंडिंग योर स्माइल, इसके लिए है प्रिवेंशन इज वेरी वेरी चीपर, मींस बहुत ही सस्ती है प्रिवेंशन, और इजियर है और वेरी लेस पेनफुल है, ठीक है। और अगर इस कंपैरिजन हम करें फिलिंग के लिए, आरसीटी के लिए और एक्सट्रैक्शन के लिए, वो जो है बहुत ज्यादा पेनफुल है, तो इसलिए प्रिवेंशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन करें और रेगुलर ब्रशिंग और फ्लॉसिंग करें, और मेरा मैसेज है कीप योर स्माइल ब्राइट एंड कीप योर डिफेंस टाइट।
2: तो श्रोताओं, दांत सिर्फ हमारी मुस्कान नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। सही समय पर जांच, उचित इलाज और नियमित देखभाल से हम लंबे समय तक अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर रेखा गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्थोडोंटिक्स, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, न्यू दिल्ली, और साथ में रहे डॉक्टर हरमीत सिंह, डेंटल स्टाफ सर्जन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू।
2: दोस्तों, उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको डेंटल केयर के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी healthairdelhi@gmail.com। इसी तरह स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। और इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत। स्वस्थ रहें, सजग रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
4: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

शाम के 4 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह

मंत्री अमित शाह ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानून तीन महत्वपूर्ण स्तंभों प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास पर आधारित हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी ट्रेन घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा, काकोरी ट्रेन घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय। विश्व अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने स्वदेशी ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। बारिश के कारण पहलगांव और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक अपने नाम किए। साग्निक रॉय और शायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। और अश्मिता चालेहा ने कोरिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नॉगिन नरिश। सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक है क्या आखिर। सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम, खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जाने बॉडी और माइंड के लिए कुछ पौष्टिक भोजन के बारे में। अच्छा, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि बॉडी और माइंड को हेल्थी रखने के लिए किन किन पौष्टिक भोजन का सेवन करते रहना चाहिए, तो फिर आपका जवाब क्या हो सकता है? शायद इस सवाल के जवाब में आप एक नहीं बल्कि कई भोजन का नाम लें। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसे भोजन हैं जो हमेशा ही बॉडी और माइंड के लिए बेहतरीन माना जाता है। अगर आप पौष्टिक भोजन के बारे में नहीं जानते हैं तो इस प्रोग्राम में तो मैं चेतन आपको कई आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन सोर्स करके आपके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, तो ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद में अगर सबसे अच्छा और पौष्टिक भोजन माना जाता है तो उनमें से एक है घी, क्लैरिफाइड बटर। इसका सेवन करना बहुत अच्छा होता है। प्राचीन काल से लेकर मौजूदा समय में घी को एक आयुर्वेदिक आहार भी माना जाता है। ऐसे में डॉक्टर्स कहते हैं कि बॉडी और माइंड के लिए घी का सेवन करने की सलाह देते हैं। हालांकि उचित मात्रा में लेना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो कई ड्राई फ्रूट्स हैं जो पौष्टिक आहार में शामिल है, लेकिन बॉडी और माइंड के लिए सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट्स में से एक खजूर को भी माना जाता है। ऐसे में आप नियमित तौर पर खजूर को भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसे दूध के साथ भी सेवन कर सकते हैं। खजूर के साथ साथ अंजीर को भी आहार में शामिल कर सकते हैं। खजूर और अंजीर के अलावा भी ऐसे कई फ्रूट्स हैं जिन्हें आप आहार में शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार बॉडी और माइंड के लिए पौष्टिक भोजन में अंगूर के साथ साथ कटहल और केले को भी शामिल कर सकते हैं। ये तीनों फल आयुर्वेद

की नजर से सेहत के लिए हमेशा से बेहतरीन आहार माने जाते हैं। इसके अलावा दूध को भी आप आहार में शामिल कर सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर्स घी, खजूर, अंजीर, अंगूर, कटहल आदि चीजों के अलावा कुछ और चीजों को भोजन में शामिल करने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि सूप के साथ काला चना, गुड़, चावल और आंवला आदि चीजों को भोजन में शामिल करते रहना चाहिए। पौष्टिक भोजन शामिल करने के साथ साथ एक्सरसाइज और मधुर संगीत सुनने की भी सलाह देते हैं। अगर आपको ये लम्हे प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप ध्यान से सुनिए और अपने परिवारजनों के साथ भी शेयर कीजिए। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक बेहतर डाइट लें, तभी हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, साथ ही कई बीमारियों के खतरे से दूर रह सकते हैं। हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। यही वजह है कि हमें हमेशा पौष्टिक आहार का ही सेवन करना चाहिए। अच्छी डाइट की मदद से हमारा शरीर कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है। अक्सर ज्यादातर लोग होते हैं जो अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उन्हें तमाम बीमारियों की चपेट में आना पड़ता है। लेकिन जो लोग अपनी डाइट को बेहतर बनाने के साथ उस पर कंट्रोल रखते हैं, वो लोग ज्यादा लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम आपको इस प्रोग्राम में बताते हैं कि ऐसा कौन से सदाबहार पौष्टिक आहार है जिसका सेवन कर आप लंबे समय तक फिट रह सकते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। दूध एक ऐसा विकल्प है जिसको आप बचपन से पीते आ रहे हैं, बड़े होने के बाद भी आपको फिट रखने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। दूध एक तरह से संपूर्ण आहार है जिसमें मिनरल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन की काफी मात्रा होती है। आप रोजाना नियमित रूप से अगर दूध पीते हैं तो इससे आप फिट भी रह सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट्स। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए फल बहुत ही फायदेमंद माना जाते हैं। आपको नियमित रूप से फलों का सेवन करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एक ही फल पर निर्भर रहें। आप बदलते मौसम के साथ मौसमी फल का सेवन जरूर करें। आपको हर प्रकार के फल खाना चाहिए। सभी फलों में अपने अपने गुण होते हैं जो आपको कई बीमारियों से दूर रखने का काम करते हैं। फलों में केला एक ऐसा फल माना जाता है जिसे आप रोजाना नियमित रूप से खा सकते हैं। आप चाहे तो केले को दूध के साथ भी खा सकते हैं। यह आपको हेल्थी रखने के लिए काफी उचित है। ताजी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां यानी ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में बहुत अहम होती है। नियमित रूप से सब्जियों का सेवन करने से हमें हर प्रकार का पोषण मिलता है और हमारी सारी बीमारियां दूर होती हैं। हरी सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। आपको बता दें कि हरी पत्तेदार सब्जियां बढ़ते वजन को कम करती है, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, स्किन में ग्लो लाते हैं, कैंसर आदि से लड़ने में सहायक होती है। रोजाना आपको एक मुट्ठी भर नट्स खाने से आप दिन भर तरोताजा और एक्टिव महसूस करेंगे। नट्स में खासतौर पर बादाम और अखरोट ज्यादा महत्वपूर्ण है। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और खून भी बढ़ता है। साथ ही बादाम के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल और अच्छा वसा पाया जाता है जो शरीर के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होता। इसमें रेशा होता है जो शरीर से वसा को जलाकर उसे स्वस्थ और एक्टिव बनाता है। तो दोस्तों, ये थी न्यूट्रिशियस फूड के बारे में। दैट वॉज द टॉपिक नॉकिंग नरिश इन लम्हे प्रोग्राम एंड दिस इज योर आरजे चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू इन अ नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039।

7039. आई रिपीट 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com. दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर.

जी हाँ, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम वही जिसका रविवार करते हैं आप बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, आज बहुत समय के बाद ये प्रोग्राम लेकर आई हूँ आप सभी के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ते हुए। प्रोग्राम वही जो जिसमें हम चेक करते हैं कि भाई हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी लिसनर्स हैं, वो अपनी नॉलेज को कितना अप टू डेट रखते हैं, क्या कुछ दुनिया में हो रहा है इसकी खबर आपको है कि नहीं। जी हाँ, यही देखने और यही चेक करने, टेस्ट करने हम लेकर आते हैं यह प्रोग्राम जिसका नाम है रेनबो जीनियस, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर हर रविवार शाम को 4 बजे। वेल, जल्दी से हो जाइए तैयार क्योंकि मैं अपने प्रश्नों के पिटारे के साथ बिल्कुल तैयार हूँ। आपको देने हैं 5 प्रश्नों के सही जवाब और अगर आपने उन सभी प्रश्नों के सही सही जवाब मुझे दे दिए ना, तो बिल्कुल आप बन जाएंगे हमारे रेनबो जीनियस और ये जो रेनबो जीनियस का ताज है ना, बिल्कुल आपके सर पर सजा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले करना है बहुत ही छोटा सा काम भाई। वो छोटा सा काम ये करना है आपको कि आपको करना है हमें फोन। किस नंबर पर करेंगे? वैसे तो आपको नंबर पता ही है, लेकिन चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आपको किस नंबर पर हमें फोन करना है। हमारे नंबर है 0112342108 0012342108 4। नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो आपको हमारा एसटीडी कोड 0111 लगाना, 011 लगाना जरूरी है और आप फिर उसके बाद डायल करें 2342108 0234210 2342108 4, जिससे आपकी कॉल बिल्कुल हम तक पहुंच जाएगी। ये बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद लेकर आती हूं अपने प्रश्नों का पिटारा और देखते हैं आज कौन बनने वाला है हमारा रेनबो जीनियस।

0: आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम रेनबो जीनियस। मैं हूं आपके साथ दीपांशी। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: हेलो
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: मैम मेरी आवाज आ रही है क्या आपको?
0: बिल्कुल आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं।
1: अच्छा मैं एक्चुअली आपको रेडियो पे सुन करके मैं बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी अपना नाम बताएं।
1: जी जी मैम आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, लेकिन
0: मुझ तक आपकी आवाज बिल्कुल साफ पहुंच रही है।
1: हेलो
0: हेलो आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो
1: मैम आवाज आ रही है मेरी?
0: पंकज जी हम बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको, आपको हमारी आवाज आ रही है।
1: हाँ मैम आपको मैं रेडियो पर सुन करके बोलूंगा, एक्चुअली मैं आवाज कम कर देता हूँ थोड़ा। जी
0: जी अब आप सुन पा रहे हैं आवाज?
1: मैं आपको रेडियो पे सुन पा रहा हूँ मैं।
0: जी आपको आपको आपका नाम जल्दी से बताइए और ये बताइए आप कहाँ से जुड़े हैं हमारे साथ। मुझे आपका नाम पता है लेकिन
1: मैं पंकज बात कर रहा हूँ दिल्ली से मैम।
0: जी पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पंकज जी आपसे जल्दी से पहला सवाल, आपको हमें बताना है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, किस राज्य द्वारा केसर का?
1: जम्मू कश्मीर।
0: जी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, आपने पहला जवाब बिल्कुल सही दिया है। आपको हमें बताना है भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है?
1: भारत की बुलबुल
0: किसे कहा जाता है? जी
1: फीमेल में आई थिंक लता मंगेशकर।
0: लता मंगेशकर इसका सही जवाब नहीं है, भारत की बुलबुल के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। अगर आप थोड़ा सा अपने बचपन में गए होते तो हम सभी ने स्कूल में ये पाठ जरूर पढ़ा है, भारत की बुलबुल के नाम से सरोजिनी नायडू जी को जाना जाता है।
1: थैंक यू मैम,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। पंकज जी जुड़े हमारे साथ दिल्ली से और कोशिश अच्छी की, प्रयास अच्छा किया, लेकिन पहले प्रश्न के बाद आगे नहीं बढ़ पाए और केवल एक ही जो प्रश्न का जवाब है उन्होंने सही दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जनरल नॉलेज बिल्कुल अप टू डेट है और आपके पास सभी प्रश्नों के जवाब हैं तो इंतजार ना कीजिएगा। हमारा नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 0112342108 है वो नंबर जिससे आपका कॉल हम तक पहुंच जाएगा। आइए एक और कॉलर हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: मैं फिर से पंकज जुड़ा हूँ।
0: जी पंकज जी आपसे हम बात कर चुके हैं, आपको मैं फिर से कॉल पर नहीं ले पाऊंगी, क्षमा कीजिएगा।
1: जी जी मैम।
0: हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: हेलो
0: हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: हेलो
0: आप तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हेलो हेलो
1: हेलो
0: अपना नाम बताएं, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो शायद हमारे इस कॉलर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए मैं जल्दी से देखकर आई कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारे कॉलर्स तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप तब तक ये प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिए।

0: जी, हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो हेलो, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: हेलो, हाँ
0: हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
1: हेलो हेलो
0: हेलो जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हेलो, कभी कभी आपसे मिलने की ये जो बेसब्री है ना, ये थोड़ा सा इम्तिहान हमारा थोड़ा सा ज्यादा ले लेती है। बहुत सारे कॉलर्स हमें फोन कर रहे हैं, लेकिन ये जो थोड़ी सी लाइंस की गड़बड़ी है ना, शायद ये हमसे कुछ और वक्त मांग रही है कि इस गड़बड़ी को जल्दी से ठीक कर देते हैं और फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, बने रहना है आकाशवाणी FM रेनबो के साथ। प्रोग्राम रेनबो जीनियस पे मैं हूँ आपके साथ दीपांशी, और ये प्यारा सा गाना सुनिए और मैं जल्दी से वापस आई।

आपसे भी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? हेलो हेलो,

आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं आप। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं? इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
6: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
4: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
6: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: वेलकम बैक, आप सब जुड़े हैं आकाशवाणी FM रेनबो के साथ। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो।
9: हेलो, नमस्कार।
8: जी नमस्कार, आपको आवाज आ रही है मेरी?
9: जी मैडम, ऑफ एयर में आपकी मेरी आवाज आ रही है, आपको मेरी भी आ रही है, लेकिन जब आप ऑन एयर हमें लेती है ना तब आवाज बंद हो जाती है।
8: जी अभी हम ऑन एयर हैं, आज कुछ गड़बड़ी के कारण शायद आज थोड़ा लेट जुड़े हैं हम, ठीक है, लेकिन अब आपको आवाज आ रही है। जल्दी से पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ लेती हूँ। पहला प्रश्न, आपको हमें बताना है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो

0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: जी मैम, मैं प्रिंस बात कर रहा हूँ अमरोहा उत्तर प्रदेश से।
0: जी प्रिंस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस, आपसे पहला प्रश्न, हम जल्दी से प्रश्न पूछेंगे, समय हमारे पास बहुत अधिक नहीं है। आपको हमें बताना है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
1: मैम ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, बेस्ट कोच जो होते हैं उनको।
0: बिल्कुल सही जवाब, ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आपको हमें बताना है तिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है?
1: सॉरी मैम,
0: आपको इसका उत्तर नहीं पता है?
1: जी नहीं मैम।
0: कोशिश कीजिए।
1: आई थिंक सतलुज।
0: सतलुज इसका सही जवाब नहीं है। टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये भागीरथी नदी के नदी पर स्थित है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस, आप हमारे साथ जुड़े।
1: जी धन्यवाद मैम।
0: बहुत शुक्रिया। प्रिंस ने एक अच्छी कोशिश की लेकिन खेल में आगे नहीं बढ़ पाए। जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ। हेलो।
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: जी मेरा नाम आकाश है।
0: आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: जी मैम धन्यवाद।
0: आकाश, आपसे पहला प्रश्न, आपको हमें बताना है बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था?
2: चंपारण में किया था।
0: चंपारण बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आपको हमें बताना है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? आकाश,
2: अलमाटी बांध
0: जी किस नदी पर स्थित है?
2: अलमाटी सिंधु नदी पर।
0: सिंधु नदी इसका सही जवाब नहीं है आकाश। अलमाटी बांध जो है वो भारत में कृष्णा नदी पर स्थित है। जी हाँ, ये एक जल विद्युत परियोजना है और जिसे पूरा किया गया 2005 में। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आप हमारे साथ जुड़े, कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो समय ना गंवाइए, जल्दी से अपना फोन उठाइए। मैं कर रही हूँ आपके फोन कॉल्स का इंतजार। कार्यक्रम रेनबो जीनियस में मैं हूँ आपके साथ दीपांशी।

0: वेलकम बैक. आप सब जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ. अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम रेनबो जीनियस में, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो
1: जी, नमस्कार.
0: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं.
1: जी मैं प्रकाश चंद, मैं दिल्ली के द्वारका से बोल रहा हूँ.
0: जी प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में. प्रकाश जी, आपसे पहला प्रश्न. अभी कल 8 अगस्त 2026 को पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है?
1: भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ?
0: जी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है?
1: भारत छोड़ो आंदोलन की मतलब जो कौन से सन में शुरू हुआ?
0: जी जी जी,
1: ये मेरे को जहां तक जा रही 1942 में शुरू हुआ थी.
0: आपको मुझे वर्षगांठ कौन से वर्ष की मनाई गई?
1: 48 साल हो गए जी, 26 साल ही हो गए थे
0: जी. आप मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए, ये कैलकुलेशन आप ही को करना है जी.
1: 58 और 27 आने वाले, 58 64 85 84 साल हो गए.
0: 84 वर्षगांठ मनाई गई है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है. आपको अब बताना है, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी, ज्यादा समय ना लीजिएगा क्योंकि प्रश्न
1: समय समाप्त होने वाला है. 5 बजे
0: 5 प्रश्नों का भी सही जवाब देना है आपको.
1: प्रयास करते हैं, नहीं तो समय हो जाए तो आप बंद कर दीजिएगा
0: जी. आपको हमें बताना है, अभी हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर बनी है, उनका नाम बताएं. भारतीय वायुसेना में प्रथम महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर कौन बनी है?
1: प्रथम महिला फाइटर कॉम्बैट वायुसेना में
0: कॉम्बैट लीडर कौन बनी है?
1: कुछ कंठ के उनका नाम पूछे, भावना कंठ.
0: आप श्योर हैं इस जवाब को लेकर?
1: जहां तक मैंने समाचार पढ़े थे तो यही था जी.
0: जी भावना कान, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया. बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, और आपको तीसरा प्रश्न जो बताना है वो ये है, पीपीएफ की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की अवधि क्या है? पीपीएफ
1: की
0: मैच्योरिटी
1: मैच्योरिटी क्या है जी? अच्छा, कितने साल का है मतलब है? ये मेरा ये ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति या जीव है, कोई पूर्ण विकास उसकी अवस्था होती है ना, उसको कहते हैं
0: जी. मुझे आपको वर्ष बताने हैं, पीपीएफ की मेजोरिटी अवधि कितने वर्ष की होती है? मैं इससे ज्यादा समय आपको नहीं दे पाऊंगी. बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और आप अभी इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं. मैं आप सभी को इसका उत्तर दे दूं, पीपीएफ की जो मेजोरिटी अवधि है वो 15 वर्ष होती है. 15 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर. बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमारे.
1: धन्यवाद.

0: कलर हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। आइए उनसे जल्दी से बात कर लेते हैं। हेलो
1: जी, रजनेश राठी बोल रहा हूँ,
0: महेंद्रगढ़। जी रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का बस अंत होने ही वाला है, चलिए आपने कॉल किया, जल्दी से आपसे पहला प्रश्न पूछ लेती हूँ। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है रजनीश जी?
1: 7 अगस्त को।
0: 7 अगस्त इज द करेक्ट आंसर। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपको हमें बताना है, हाल ही में संपन्न हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं?
1: भारतीय खिलाड़ियों ने
0: अभी कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ है।
1: जी जी जी जी जी, कितने? मेरे ध्यान नहीं है जी, 13 के आसपास होंगे।
0: 13 इज नॉट द करेक्ट आंसर रजनीश जी, 39 39 पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स जो अभी हाल ही में आयोजित किए गए थे ग्लासगो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।

और बस आपको छोड़े जा रही हूँ इस खूबसूरत से गाने के साथ, क्योंकि अब जाने का समय है। जाना इसलिए क्योंकि एक बार फिर से आपसे मिलने आना है, मेरी आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। यही गुनगुनाते हुए आकाशवाणी एफएम रेनबो की गलियों में मिलूंगी आपसे। दीपांशी को दीजिए इजाजत, और अब कोमल रहेंगी आपके साथ, लेकर आएंगी दिल्ली की हलचल सिटी लाइट्स प्रोग्राम में, बताएंगी क्या कुछ हमारी दिल्ली में चल रहा है। बने रहिएगा आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीक अहेड।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी के मुर्गा थिएटर सिग्नल में हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले श्री शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर

प्रस्तुति देगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने काकोरी ट्रेन घटना के अमर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा, काकोरी ट्रेन घटना भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता का तीसरा दौर जारी। ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद बागेर जालखाद्र ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने से पहले अमेरिका के सामने मांगों की एक सूची जारी की। यमन में ईरान समर्थित सशस्त्र सेना सशस्त्र गुटी हुती ने सऊदी अरब के अरामको तेल शोधन कारखानों पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली। उड़ीसा में भारी बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। बारिश के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक अपने नाम किए हैं और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: संडे है जनाब, यानी नो मंडे ब्लूज, सिर्फ और सिर्फ संडे वाइब्स, थोड़ा आराम, थोड़ी मस्ती और ढेर सारी बातें। तो चलिए शाम को बनाते हैं थोड़ा और खूबसूरत म्यूजिक और गुड वाइब्स के साथ। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर सिटी लाइट्स, आपका अपना इवनिंग ड्राइव शो। दिल्ली और एनसीआर में तो हम मौजूद हैं ही, हमारी फ्रीक्वेंसी 102.6 पर, लेकिन हमारी आवाज़ की उड़ान यहीं नहीं रुकती है दोस्तों। न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए हम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे हुए अपने श्रोताओं तक भी पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है सिटी लाइट्स, जहां एनसीआर और दिल्ली की रफ्तार में घुलती हैं कुछ मीठी बातें और कुछ काम की जानकारी, और साथ ही साथ हम लेकर के आते हैं आप सभी के मनपसंद गीत। तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ाइए क्योंकि संडे की शाम है और सिटी लाइट्स का साथ है, और मैं हूं कोमल।

0: दिल के तराने, गाने नए पाने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: और FM रेनबो पर चल रहा है प्रोग्राम सिटी लाइट्स, एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें आप सभी का ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, और अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त के महीने में हम सभी जो है बहुत ज़्यादा देशभक्ति में डूब जाते हैं, क्योंकि हमारे देश का जो स्वतंत्रता दिवस है वो हम सब लोग मनाते हैं इन दिनों। और इन दिनों हम सभी देशभक्ति के भाव में जब डूब जाते हैं तो बहुत सारी बातें जो है हमारे जहन में आती हैं। जैसे कुछ रंग सिर्फ रंग नहीं होते, जैसे केसरिया जो होता है वो हमारे साहस और त्याग की याद दिलाता है, और सफ़ेद शांति और सच्चाई का संदेश हमें देता है। वहीं हरा रंग जो होता है समृद्धि, उम्मीद और हमारे जीवन में हरियाली का प्रतीक बन जाता है। और इन सभी के बीच जो अशोक चक्र होता है वो हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की यात्रा जो है वो रुकने की नहीं बल्कि निरंतर आगे बढ़ने की है। इसी तिरंगे को जब हर घर तक पहुंचाने और हर भारतीय के मन में देश के प्रति गर्व की भावना को और मजबूत करने का उद्देश्य जुड़ा हो तो बन जाता है हर घर तिरंगा अभियान। सोचिए, जब किसी गली में किसी एक छत पर हमें तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देता है तो वो सिर्फ उस घर की पहचान नहीं होता, जब पूरी गली में तिरंगा दिखाई देता है तो वो एकता की तस्वीर बन जाता है, और जब पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंग जाता है तो महसूस होता है कि हम अलग अलग घरों में ज़रूर रहते हैं लेकिन हमारा देश जो है वो एक ही है। हमारी देशभक्ति की भावना जो है वो एक ही है, हम सभी के दिल में ये तिरंगा बसता है। तिरंगा फहराइए, पूरे गर्व के साथ फहराइए, लेकिन उसे सम्मानपूर्वक संभालिए भी और निर्धारित नियमों का पालन भी कीजिए, क्योंकि ये जो है अभियान सिर्फ तिरंगा लगाना ही नहीं बल्कि उसके सम्मान और गरिमा का ध्यान रखना भी है, और अपने तिरंगे का सम्मान करना, उसकी गरिमा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि तिरंगा घर पर तभी खूबसूरत लगता है जब हमारे दिल में हमारा देश बसता हो, हमारा तिरंगा बसता हो। तो इस बार

जब आप अपने घर पर तिरंगा लगाएं, तो एक पल रुककर उसे देखेगा, उन लोगों को याद कीजिएगा जिन्होंने देश के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, ताकि हमारा जो आज है वो सुरक्षित और स्वतंत्र रह सके। हर घर तिरंगा, हर दिल में तिरंगे के सम्मान में। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, जहां शहर की आवाज़ के साथ साथ देश की धड़कन भी सुनाई देती है। और बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

जी, और कुछ बात तो हमारे आकाशवाणी एफएम में रेनबो में भी है, तभी तो हम आपसे और आप हमसे हमेशा बस दिन और रात 24 घंटे जुड़े रहते हैं, और तभी हम आप सभी के लिए लेकर के आते हैं एक से एक बढ़कर प्रोग्राम, और हर प्रोग्राम में लेकर आते हैं वो सारी जानकारियाँ जो आपके दिन को, आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना दें। तो चलिए बताते हैं आपको मौसम का हाल। दिल्ली वालों, दिल्ली NCR वालों, इस बार अगस्त ने आते ही जो रेन का जो मोड है ना वो ऑन कर दिया है, लेकिन अब थोड़ा सा वेदर ब्रेक मिलने की उम्मीद है। आज से बारिश की रफ्तार थोड़ी सी कम हो सकती है, और लेकिन बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं पर हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो चलती रहेगी। अगर बात करें कुछ आने वाले दिनों की, यानी 10 से 14 अगस्त की, तो इस बीच में हल्की सी बारिश की संभावनाएं जो है वो जारी रहेंगी। हालांकि 9 से 14 अगस्त तक जो है बीच बीच में एक दो दिन तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर। तो अगर आजकल आपके प्लान्स में भी बारिश बिन बुलाए मेहमान की तरह आ रही है, तो अम्ब्रेला और रेनकोट को साथ रखना बहुत समझदारी रहेगी। और ड्राइवर्स, वेट रोड्स पर थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा अलर्ट, क्योंकि जल्दी पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी है सेफली पहुंचना। बारिश चाहे रिकॉर्ड तोड़े या कुछ भी करे, लेकिन आप अपना सेफ्टी का रिकॉर्ड बनाए रखिएगा। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपका अपना इवनिंग ड्राइव शो।

0: का डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। लीजिए अब सुनिए हमारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

फार्म टू सिटी। अरे किसानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ ओम प्रकाश ओम प्रकाश राठौर यानी ओपी राठौर। आप सभी का स्वागत है इन अ वेरी फ्रेश न्यू प्रोग्राम कॉल्ड फार्म टू सिटी, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित।

ये कार्यक्रम आप तक हम लेके आए। मेरा नाम ओपी राठौर है, बताई चुके हैं। सबसे खास बात इस प्रोग्राम की यह है कि हम अब किसान भाइयों के साथ साथ अपनी सेवाएं उन लोगों के लिए लेके आए हैं जो काम तो कुछ और करते हैं लेकिन मन में उनके किसान रहता है। इस प्रोग्राम में हम उन तथा कथित किसानों की बात करेंगे जो किसान भी हैं और मान न मान मैं तेरे फार्मर भी हैं। उनके घर में आएंगे हम, उनके

0: लगा के बोलता है,
1: मेरी क्यारी में तुम्हारा क्या काम है, हमारी क्यारी में क्या काम कर रही। अवनी उसके पास हम जाते, पता करते किधर खड़ी है उधर वो, बाहर से आउटडोर से अपने को फीडबैक वही देंगे ना।
0: हेलो अवनी, कैसी हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं उसकी?
0: मैं कम अच्छा हूँ, ताकि आपको लगे कि आप ज्यादा अच्छी हैं। और वहाँ क्या माहौल है, मतलब लोग बागवानी के दीवाने हैं हॉर्टिकल्चर के?
2: बागवानी वालों के लिए तो ये सबसे अच्छी सीजन है, क्योंकि बारिश जब होती है तो हर किसान का मन एकदम प्रफुल्लित हो होता है।
0: हाँ ये तो है
2: कि इस वक्त प्रकृति की जो थटा होती है वो बाकी और कभी भी नहीं देखती।
0: ये तो है। थैंक यू अवनी, आपसे कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है फार्म सिटी। लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 एक्शन, एंड जगा लो अपने अंदर का माइकल जैक्सन।

0: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
1: पुतला बोल रहे
0: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
1: मतलब
0: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ? माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी पहली वाली बात कहा
1: पर हम तो सब यही डाले
0: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
1: सच
0: है एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
1: ठीक है भाई मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती

गार्डनिंग के शौकीनों, बागवानी के शौकीनों, अब हम आ गए हैं लेके एक और खास मेहमान। ये एक ऐसे शख्स हैं, स्टूडेंट है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और इन्होंने मजाक मजाक में, मजे मजे में एक छोटा सा इंस्टा चैनल चलाया और वहां पे उनकी एग्रीकल्चर की नॉलेज ने ऐसा रंग दिखाया कि आज उनके पास 1,00,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बहुत सारे प्लांट्स की इनके यहाँ डिमांड है। आइए इनसे बात कर रहे हैं और जाने कि ये कैसे कमाल कर रहे हैं गार्डनिंग में। हाँ तो भाई, जब भी कोई नया प्रोग्राम शुरू होता है तो लिसनर्स के मन में ये प्रश्न आता है, इसमें अलग क्या होगा? तो हम पहले ही आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि यहाँ हम छोटे किसानों अर्थात कि बागवानों की बात करेंगे। हालांकि वो छोटे बड़े नहीं होते, लेकिन समझने के लिए फिलहाल हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज की है। तो हम ये बैल्कनी के, छतों के, आंगन के किसानों के लिए स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं और इसी क्षेत्र में कुछ लोगों ने गजब की हलचल मचा दी है। तो भाई, ऐसे लोगों से मिलवाने, उनके माध्यम से आपके अंदर इंस्पिरेशन जगाने का हम काम करते हैं।

0: ये काम हम शुरू करते हैं। चलिए पहले गेस्ट से आपको ऑनलाइन फोन पे मिलवाते हैं, देखते हैं वो कौन है और क्या वो आपको इस क्षेत्र में, फार्म टू सिटी क्षेत्र में इंस्पायर कर पाते हैं या नहीं। वेलकम टू द शो। क्या नाम है दोस्त आपका?
1: सर मेरा नाम अमान आलम है। सर मैं जौनपुर से बोल रहा हूँ, यूपी जौनपुर से।
0: वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए क्या करते हैं आप?
1: सर मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ होम गार्डनिंग रिलेटेड, इंस्टा पे मेरा एक इंस्टा पेज है।
0: ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके मन में आया?
1: सर मेरे पापा बहुत गार्डनिंग के शौकीन है, तो मैं जब घर पे आया, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर से बीएससी किया हूँ, तो मैं घर पे आया तो मैं अपने पापा के साथ हेल्प करने लग गया। फिर मुझे इंटरेस्ट आया तो मैं इस पे वीडियोस बनाने लग गया और लोगों ने इसको पसंद किया बहुत।
0: तो हमारे लिसनर्स में से जिन्हें फूल उगाना, फूलों की खेती करना घरों में पूजा के लिए या घर सजाने के लिए या यूं ही फूलों से प्रेम है, वो इस बात को जरूर गौर से सुने। आपने बताया था कि आपने जब नया नया चैनल खोला तब एक गजब की सक्सेस स्टोरी पैदा हुई, हमारे श्रोता भी वो जानना चाहते हैं।
1: सर जब मैंने वीडियो डालना शुरू किया तो शुरू में ऐसा रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन एक वीडियो लोगों ने इतना पसंद किया, उस जिसमें मैं बगन बेलिया के बारे में बताया था और ये प्लांट लगाने के लिए लोगों को मोटिवेट किया था कि आप अपने घर पर लगा सकते हो, बहुत बेहतरीन लगता है, तो बहुत ही अच्छा वो वीडियो गया। उसको अभी तक 52 मिलियन व्यूज आए हैं उस पे और पहले ही दिन 1 लाख प्लांट का ऑर्डर आ गया था।
0: अच्छा घरों में हम कौन कौन से फूल की लताएं या बोगनवेलिया क्या लगा सकते हैं, थोड़ा कुछ परामर्श दीजिए ना हमारे लिसनर्स को।
1: गार्लिक वाइन, जैकरेंडा, मधुमालती, बहुत सारे प्लांट्स हैं। ये अभी मैंने ये 3 क्रीपर प्लांट के नाम लिए, छत पर चढ़ाने के लिए काम पे आते हैं। और यहाँ पे जैकरेंडा ये ट्री है, ये बड़ा सा ट्री रहता है जिसके पास स्पेस हो लगा सकता है।
0: जी अब चलने से पहले, अब आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं अमान, तो आप ये भी बता दीजिए कोई ऐसी टिप्स हो जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें।
1: सर लिसनर के लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि वो फर्टिलाइजर ना यूज करें, मींस किसी के बताने पे कोई भी फर्टिलाइजर यूज मत करें, वो काउडंग यूज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं।
0: वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है आपने बताई, थैंक यू सो मच। और चलते चलते कोई गाना भी बता दीजिए जो आप सुनना चाहते हैं और लिसनर्स को सुनाना चाहते हैं।
1: सर मेरा फेवरेट सॉन्ग है तुम ही हो, आस्की टू का।

0: फार्म टू सिटी में हमारे साथ साथ आउटडोर में चल रही हैं अवनी। देखते हैं अवनी के पास हमें बताने के लिए क्या कुछ है।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी हरी हरी दोस्त अवनी और इस समय मैं भरपूर हरियाली के बीच हो रही हूँ मतवाली। घर के हिल के पीछे ही इतनी सी जगह में उग रही है इतनी सारी सब्जियाँ और सब्जियों की बेल, मिर्ची, करेला, घिया, बैंगन, टमाटर और बीन्स। और हमारे साथ इस वक्त है तरुण जी। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे फार्म टू सिटी।
2: धन्यवाद।
1: और साथ में ओपी मेरे साथ हैं जो ग्राफिक डिजाइनर साहब, वो दिल से जज्बे, जुनून और शौक से बिल्कुल रंगीन है, होम गार्डनर, ग्रीन होम गार्डनर है। तो तरुण जी, आप ये बताइए कि आपकी इस तरफ रुचि कैसे हुई?
2: मेरे फादर, हमारे घर के पीछे बहुत सारी जगह है तो वहाँ पे कुछ न कुछ उगाते रहते थे, तो बचपन में वो देखता था मैं। और ऐसे इंटरेस्ट उस टाइम तो बहुत नहीं था, लेकिन कोरोना के टाइम पे थोड़ा टाइम मिला तो लगा कि कुछ हम भी मतलब करना चाहिए। वैसे तो मेरा गार्डन पूरा हरा भरा ही है, लेकिन नॉर्मली हम सब फ्लावरिंग प्लांट बहुत लगाते हैं, फूलों का बगीचा सबको अच्छा लगता है।
1: जी जी।
2: तो मैंने सब्जियां लगाना शुरू की और धीरे धीरे सफल होता गया। निष्फलता भी यही, बहुत बार ऐसा हुआ कि पूरा बेल इतनी बड़ी हो जाती है पर एक भी फल नहीं लगा, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए।
1: जी जी। पर वो एक बैंगन, एक मिर्ची, एक करेला जो होता है उससे कितनी खुशी मिलती है ना।
2: जी जी जी। मेरे घर पे जो अगर एक या दो बैंगन लगते हैं तो मैं वो तोड़ के बड़े चाव से ले जाता हूँ किचन में और बोलता हूँ कि इसका डंठल मत काटना, इसको ऐसे ही डालना, तो मुझे सब्जी बनने के बाद में भी पता चले कि कौन सा घर का बैंगन है। और मैं तो ये बताऊंगा कि अगर आपके घर में पांच या छह ऐसे पौधे होने ही चाहिए सब्जी के तो लगाइए लगाइए, लेकिन तुलसी है, जैसे पारिजात है, अड़ोसी है, कड़ी पत्ता है, सहजन है, तो ये सारे इतने हर दिन अपने को काम में आने वाली ये सब्जियां और ये चीजें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक लोग लगाइए।
1: और ये सब आसानी से उग भी जाता है, बहुत मेंटेनेंस नहीं मांगता है?
2: नहीं, बिल्कुल आसानी से।
1: एक्चुअली बात ये है कि दरअसल जब हम कुछ खुद अपने गमलों में उगाते हैं तो हमें उन किसानों की वैल्यू पता चलती है, उनकी मेहनत, उनकी लेबर, और जो वो दृढ़ता से और हिम्मत से सब तरह के मौसम को झेलते हुए वो लोग हमारे लिए एक फूड बास्केट जो तैयार करते हैं। सलाम है उन किसानों को और उनकी मेहनत को।
2: तो यही सोच करके थोड़ा थोड़ा हम लोग सब उगाएंगे ना घर पे, तो कुछ तो फायदा होने ही वाला है।
1: आपको क्या लगता है कि ये होम गार्डनिंग लोगों को एनकरेज करना चाहिए या ऑलरेडी लोग एनकरेज हो चुके हैं होम गार्डनिंग के लिए?
2: नहीं नहीं, करना चाहिए और करने की बहुत जरूरत है। लोग होम गार्डनिंग करना चाहते हैं, कई लोग ऐसे हैं और कई लोग मुझे पूछते हैं कि हमारी तो छोटी सी बालकनी है तो हम तो क्या करें, तो हम यही कहते हैं कि अगर बालकनी है तो एक करेले का बेल लगा दीजिए, ककड़ी की बेल लगा दीजिए, आप कुछ शुरू तो कीजिए। आप शुरू करेंगे कुछ तो तभी आपको पता चलेगा। दिन में दो तीन घंटे की धूप अगर आपके घर में कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आती है तो आप अच्छे से कोई ऐसी सब्जी लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं जो आसानी से लग जाती है, मिर्ची भी आसानी से उगती है, तो ये करना बहुत आसान है और इसकी खुशी बहुत अलग है। मतलब आप देखिए
1: जी। अब तरुण जी, मुझे आपसे जो अगला प्रश्न पूछना था वो ये कि जैसे हम पेड़ पौधे उगाते हैं तो प्रकृति में हम हरियाली तो स्थापित करते हैं, साथ ही हम वाटर साइकिल, जो नेचर का वाटर साइकिल है, रेन वाटर, उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि पेड़ लगाते हैं पर पानी की कमी होती है, तो सरकार ने पिछले कुछ सालों से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए भी काफी सारे स्कीम शुरू किए हैं, जिसमें से एक कैच द रेन सीरीज शुरू करी है स्कीम, जिसके अंतर्गत किसानों ने ना अपने तालाब और रेन वाटर से बोरवेल रिचार्ज करने का सराहनीय काम किया है। और आपने भी इस दिशा में कुछ कंट्रीब्यूशन ऐसा किया है, तो क्या आप अपने कंट्रीब्यूशन और अपनी स्कीम जो आपने अभी इम्प्लीमेंट करी उसके बारे में बता सकते हैं?
2: तो हम लोग बारिश का पानी पाइप के जरिए फिल्टर करके बोरवेल में डालते हैं, तो जिससे बारिश का पानी बाहर जाने बह जाने के बजाय वो बोरवेल में जाता है, जिसका बारिश के पानी का टीडीएस बहुत कम होता है, जिससे जो बोरवेल का पानी है उसका टीडीएस भी वो कम करता है। और स्वच्छ पानी, आरओ का पानी स्वच्छ है लेकिन वो स्वस्थ नहीं है। सही में हमको स्वस्थ पानी पीना चाहिए जिसमें प्रॉपर मिनरल्स है या जो भी उनको जो शरीर को जरूरी है वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये बारिश के पानी से हम लोग मतलब स्वस्थ पानी भी पा सकते हैं। हम लोग घर में मटके में बारिश का पानी कपड़े से डायरेक्ट भर लेते हैं और उसको मटके में रख के उसको पीते हैं बारिश के मौसम में, तो ऐसा करना चाहिए।
1: जी जी, आप स्ट्रक्चर्ड वाटर के बारे में आप इंडिकेशन दे रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ। आपने फिलहाल एक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुआं बनाया है, आप उसके बारे में भी हमारे लिसनर्स के साथ कुछ शेयर कर सकते?
2: जैसे हमारे यहाँ पे एक ऐसा बोलते हैं खम्भाती कुआं बोलते हैं, जो ऐसा बनता है कुआं बनता है जिसमें ईंटे से पूरे 30 फीट बाय 15 फीट डायमीटर का जैसे बनता है, जहाँ पे रेत है जमीन में तो वहाँ पे बन सकता है, पत्थर वाली जमीन है वहाँ पे ये जरा मुश्किल है। तो अभी हमने गार्डन है वहाँ पे बनवाया है, तो अभी हाल में ही बारिश में पूरा एक ही दिन में वो पूरा कुआं भर गया था और एक दो घंटे में ही पूरा पानी जमीन के अंदर वापिस पूरा सोख लिया गया। मतलब
1: बहुत अच्छी बात है, और आपकी ये पहल से मुझे लगता है कि आसपास का इलाका सचमुच में उसका वाटर टेबल थोड़ा लेवल ऊपर आएगा।
0: थैंक यू अवनी, आपने इतनी सारी जानकारी दी, हम आपसे और भी बातें करते रहेंगे। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। जी हाँ, अब ये योजना साल 2026 से लेके 2031 तक जारी रहेगी, जिसके लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारी भरकम बजट मंजूर किया है। इसका मतलब ये है कि पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। ये राशि 2,000 रुपए की 3 बराबर-बराबर किश्तों में सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। किसान भाइयों और बहनों, आपको बता दें कि अभी पिछले जून महीने में ही सरकार ने 23वीं किश्त के पैसे सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए हैं, और गर्व की बात यह है कि देश की महिला किसान भी इस योजना का बढ़ चढ़ के लाभ उठा रही हैं। इस योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए pmkisan.gov.in पर जाएं और अपने स्मार्टफोन पर पीएम किसान मोबाइल ऐप पर डाउनलोड करें। वहाँ नो योर स्टेटस विकल्प पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं, और अगर कोई कमी है तो उस गलती को या कमी को पूरा भी कर सकते हैं। खेतों की खुशहाली, परिवारों की तरक्की और भारतीय कृषि का सुरक्षित भविष्य पीएम किसान सम्मान निधि, हर कदम पर किसान के साथ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताते हुए माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया,
3: पीएम किसान योजना जारी रहेगी और लगभग 3,15,000 करोड़ रुपया अगले 5 सालों के लिए इस योजना में खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हमारे देश के 86% किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। 86% छोटे, लघु और सीमांत किसान, उनके लिए तो विकास का नया प्रकाश लेके आई है। पहले इन छोटे किसानों को बोनी के लिए खाद और बीज के लिए भी कई बार प्राइवेट साहूकार या बाकी जगह से ऊंचे ब्याज की दरों पर पैसा लाना होता था, लेकिन अब वो आराम से खाद की बीज की जरूरत पूरी कर सकते हैं। योजना का जो हमने मूल्यांकन करवाया उसमें भी यही पाया गया कि किसान इससे संतुष्ट है। 92% किसान खेती के कामों में इसका उपयोग करते हैं और इसके कारण किसानों की आय भी बढ़ी है और उत्पादन भी फसलों का बढ़ा है, इसलिए ये योजना जारी रहेगी।
0: श्रोताओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने श्रोताओं, अपने किसान भाइयों और बहनों को एक बात बताना चाहते हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें। यदि कोई आपको नकली बीज, खाद या कीटनाशक बेचने का प्रयास करे तो उसकी सूचना तुरंत दें। कहां नंबर है किसान कॉल सेंटर का, टोल फ्री नंबर 1800 180 1551, 1800 180 1551। याद रखें, आपकी शिकायत ही आपकी फसल की रक्षा है। आप सुन रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी ओपी राठौर के साथ, और अब हम आपको मिलवाने वाले हैं एक और जबरदस्त फैंटास्टिक सक्सेस स्टोरी से। कौन है वो, जानना चाहते हैं तो रहिए हमारे साथ एफएम रेनबो की इस खास महफिल में। चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं, आपको उनसे मिलवा ही देते हैं। आपका नाम क्या है जी?
4: जी, मिथिलेश कुमार सिंह मेरा नाम है और वर्तमान में मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मूल पता मेरा उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है।
0: ये वर्टिकल गार्डनिंग आखिर होती क्या है?
4: वर्टिकल गार्डनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कम जगह में आप ज्यादा उगा सकते हैं। जैसे अभी खेती होती है, हमारी खेती से अगर समझें तो गांव में खेत होते हैं, वहां पे बीज इत्यादि की खेती होती है, जो भी हम सब्जी या फसलों की खेती करते हैं। शहरों में जगह कम होने के कारण हवा में ऊर्ध्वाधर कह लीजिए, वर्टिकल कह लीजिए, तो कम जगह में ज्यादा उत्पादन वहां पे होता है। तो वर्टिकल गार्डनिंग का अगर ये कॉन्सेप्ट है तो इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ।
0: इसका आइडिया कहाँ से आया आपको?
4: ये देखिए, ये कोरोना के समय की एक कहानी है। उससे पहले मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अपने प्रोफेशन में था और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मैं काम कर रहा था। कोरोना में जब वर्क फ्रॉम हुआ, होम हुआ, तो बहुत सारा खाली समय बचने लगा और मैं अपनी वाइफ के साथ आधा एक घंटा मैं छत पे टहलता ही था और अभी भी हम लोग टहलते हैं। तो ये हुआ कि सब्जियां किया जाए, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि गमलों में करेंगे तो छत पे टहलने की जगह ही कहाँ बचेगी। तो वहां से धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, तो कोरोना काल का ये इनोवेशन है सर।
0: अच्छा, इसको कैसे डेवलप किया आपने?
4: धीरे धीरे देखिए, जब आप कोई भी आइडिया आती है तो कोई भी इनोवेशन आता है तो अलग अलग फेजेस में डेवलप होते हैं। जैसे जगह बचाने की कोशिश शुरू हुआ ये, तो पहले ये हुआ कि अच्छा चलो बॉटल्स में लगा लेते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ। फिर पाइप का आइडिया आया तो उसमें मल्टीपल होल्स किए गए, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स थे। ये सारी चीजें अगर वीडियो के माध्यम से देखी जाए, हमारे चैनल्स पे है, तो ये पूरी जर्नी हमने बता रखी है। लेकिन यहाँ पे आपके श्रोताओं के लिए स्टार्ट में ये बताएंगे कि जब भी आपको कोई आइडिया लेके आते हैं तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट फेज से गुजरना पड़ता है, और ये आइडिया भी गुजरा और अब ये आइडिया फाइनल स्टेज में प्रोडक्शन दे रहा है, न केवल दिल्ली एनसीआर में बल्कि पूरे देश भर में इसे कई लोग अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं सर।
0: वाओ, अच्छा इसमें कौन कौन सी फसलें ली जा सकती हैं?
4: सब्जियों पे हमारा जोर रहता है और सॉइल बेस्ड गार्डनिंग है, और सब्जियों में 95% सब्जियों का जो आप नाम लेंगे इसमें उग जाती हैं। मूलतः तीन कैटेगरी में आप सब्जियों को डिवाइड कर लीजिए। मैं अपने वर्टिकल गार्डनिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर बताऊं, एक रेगुलर सब्जियां हो गई जिसमें जिनकी जड़ें होती हैं, थोड़ा बड़ा पौधा होता है, जैसे बैंगन हो गया, भिंडी हो गई, शिमला मिर्च हो गया, घिया, तोरी, करेला, थोड़ी बड़ी सब्जी, बड़े पौधे होते हैं सब्जियों में, तो ये रेगुलर हो गई, ये भी लग जाती हैं सभी तरह की सब्जियां। एक हो गई आपकी लीफी वेजिटेबल्स, जिसमें पत्तेदार सब्जियां कह लीजिए, पालक हो गया, चौलाई हो गया, धनिया पत्ता हो गया, हरा प्याज, हरा लहसुन हो गया, लीफी ग्रीन्स इसको हम लोग बोलते हैं, वो भी टावर में उग जाते हैं। और तीसरा रूट वेजिटेबल्स होती हैं, मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, उसके लिए भी हाइब्रिड टावर से, मैं फिर से मैं दोहराऊंगा कि अगर इसको देखेंगे वीडियोज में, जो हमारा प्रोजेक्ट है वेज रूफ, उसके चैनल पे ये पूरी डिटेल और भी क्लियर होती जाएगी। तो लगभग लगभग हर तरह की सब्जियां हो जाती हैं सर इसमें।
0: कितना खर्चा आता है, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है।
4: देखिए, एक्सपेंस की बात जब भी आप करते हैं तो एक्सपेंस की बात एक टाइम कंटेक्स्ट में होता है। और ये जो टावर हम लोग यूज करते हैं यूपीबीसी का, तो ये टावर जो है 30-35-40 साल चलता है, तो एक लंबा टाइम लगता है। तो मार्केट से आप टावर ले सकते हैं, और हमने इसका सब कुछ ओपनली बता रखा है, खुद भी लोग इसको बना सकते हैं। और बनाने के बाद तो मार्केट का जो प्राइस होता है पीवीसी पाइप का, लेके आइए, कटिंग कीजिए, बनाइए, या फिर उसको अगर आप मंगाते भी हैं तो खर्च का कंटेक्स्ट देखें तो मल्टीपल ईयर्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसको देखते हैं कि नहीं आज क्या खर्चा हो रहा है तो आपको महंगा लगेगा, लेकिन देखेंगे कि 20-25 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये आपको बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बात की गारंटी है कि वर्टिकल गार्डनिंग के माध्यम से शहरों में बालकनी में छोटी से छोटी आप जो है सैकड़ों सब्जियों के पौधे लगा सकते हैं बिना जगह घेरे। तो आई थिंक कि उस कंटेक्स्ट में इसको देखना चाहिए।
0: वेरी नाइस, अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे उम्मीद है कि आपको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी, उत्सुकता पैदा होगी और फिर वो पैदा करेंगे फसलें और खीरे, टमाटर, सब्जियां। ओके जी, आज की फार्म टू सिटी से चलते हैं, निकलते हैं, लेकिन याद रखें कि हर इंसान की आंखों में वही सपने पलते हैं कि मेरी बालकनी में भी एक छोटी सी क्यारी हो, उसमें बैठी मेरी बिटिया छोटी सी प्यारी हो, और खुशियां घर में बहुत सारी हो, घर में खुशहाल हर एक नारी हो, गमलों में पानी डालने की तैयारी हो, और आपसे मिलने की हमारे दिल में बेकरारी हो। क्योंकि हम ये भी बताना चाहते थे कि हम अच्छे

0: छापते ही नहीं है, हम अच्छे लिखते भी हैं। लिखे जो खत तुझे, आपको खत नहीं लिखना, हमें ईमेल लिखना है। हमारा ईमेल आईडी अवनी बताएंगी, अवनी कहाँ हो, ईमेल बताएगी फीमेल, आई मीन टू से आप बताएं हमारा ईमेल एड्रेस जहाँ लोग अपनी क्यारी का फोटो भेजें।
1: हमारा ईमेल एड्रेस है ओपीजी, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, सुनिए जरा, farmtocitydelhi@gmail.com, जहाँ पर आप हमें अपने सुझाव और अपनी पसंद, अपने किए हुए कुछ काम या फिर अपने उगाए हुए बगीचों में फल सब्जियों की तस्वीरें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे फिर जल्द मिलेंगे, नमस्कार।
0: फिर मिलेंगे इन फार्म टू सिटी FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे हर संडे। नमस्ते।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी के मुर्गा थिएटर सिग्नल में हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले श्री शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और इसके दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई 24वीं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता का तीसरा दौर जारी। ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद बागेर जोलखाद्र ने होर्मुज जलडमरू को फिर से खोलने से पहले अमेरिका के सामने मांगों की एक सूची जारी की। यमन में ईरान समर्थित सशस्त्र गुट हूती ने सऊदी अरब के अरामको तेल शोधन कारखाने पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। बारिश के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी

यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक अपने नाम की हैं और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, रविवार की शाम है और रविवार की शाम का एक अपना ही हिसाब होता है ना। सुबह लगता है कि आज पूरा दिन हमारे पास है और फिर दोपहर आती है, फिर शाम होती है और अचानक घड़ी देखकर लगता है कि अरे कल तो सोमवार है। लेकिन चलिए, सोमवार की चिंता सोमवार को छोड़ते हैं और अभी तो शाम है, संडे की शाम है, तो म्यूजिक है, आपकी बातें हैं और है आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूं प्रणव और आज फिर आपके साथ एक बार फिर से लेकर आया हूं एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद आपने कभी किसी से किसी को दिया नहीं होगा, लेकिन जवाब आपके पास शायद ज़रूर हो। और आज मुझे आपके लंबे लंबे जवाब नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी बात, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बात ही बता देती है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है। तो सोचिएगा ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हाँ क्योंकि आज का सवाल सोचने से ज़्यादा महसूस करने वाला है। फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं और इस सॉन्ग के बाद वापस आकर बताऊंगा कि आज के मैसेज मसाला मिक्स में आखिर बात किस बारे में होने वाली है। आप सुनते रहिए, मैं हूं प्रणव और आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स ऑन रेनबो 102.6। नंबर याद है ना आपको, 9868107070, 9868107070।

तो दोस्तों वापस आ गए हम और वक्त है आज के सवाल का। हम तो सोचिए जरा कि अगर आपकी जिंदगी कोई फिल्म होती और उसके हर पल को आगे पीछे करने का रिमोट आपके हाथ में होता तो आप क्या करते। कोई पल ऐसा होगा जैसे आप कहेंगे कि बस यहीं थोड़ी देर और रुक जाओ, और कोई पल ऐसा होगा कि आप कहेंगे यार इसे एक बार फिर से दिखाओ, और शायद कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप कहेंगे कि भाई इसे ज़रा जल्दी करो, बहुत इंतज़ार हो गया। हाँ, तो आज मैसेज मसाला मिक्स में आपकी जिंदगी के हाथ में है एक इमेजिनरी रिमोट, ठीक है, और आपको यह बताना है कि आप पॉज करेंगे, रिवाइंड करेंगे या फिर फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? लेकिन आज सिर्फ बटन दबाकर काम नहीं चलेगा, बटन के साथ उसकी आपको वजह भी बतानी है। यानी अगर आप कहते कि पॉज तो बताइए कि किस पल को थोड़ा सा और जीना चाहते हैं, रिवाइंड तो बताइए कि कौन सा पल आप दोबारा जीना चाहते हैं, और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो बताइए किस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार है। बस एक छोटा सा जवाब चाहिए, जैसे मैं बचपन को रिवाइंड करना चाहता हूँ क्योंकि वो दिन बिना किसी चिंता के थे, कोई टेंशन नहीं थी। या फिर हो सकता है कि आप कहना चाहें कि मैं संडे की शाम को पॉज करना चाहता हूँ क्योंकि पता नहीं चलता कि भाई कब वीकेंड ख़त्म हो जाता है और मंडे शुरू हो जाता है। या फिर हो सकता है कि मैं अपनी अगली छुट्टी को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ क्योंकि छुट्टी का इंतज़ार ही सबसे ज़्यादा लंबा होता है, स्पेशली बच्चों के लिए। साल में एक बार मिलती हैं ना छुट्टियाँ, 2 महीने की। तो अपना बटन और रीज़न मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए 9868107070, अपना नाम और अपने शहर का नाम, क्योंकि आज देखना ये है कि आपके हाथ में अगर ज़िंदगी का रिमोट आ जाए तो सबसे पहले कौन सा बटन दबेगा और क्यों। क्यों में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके मैसेज का। तो हो जाइए शुरू।

0: भाई क्या बात है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैसेज मसाला मिक्स में, क्योंकि शो अपने आप में इतना खास है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके और हमारे बीच में बातचीत होती है। शो पूरा वन साइडेड नहीं होता और ये इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे इंटरेक्शन में जब आपके इंटरेस्टिंग मैसेजेस आते हैं तो ना शो की खासियत कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती है, और भी खूबसूरत हो जाता है ये शो। आपकी हमारी बातचीत होती है मैसेजेस के थ्रू, और नंबर है 9868107070। मैसेजेस की बौछार हो चुकी है यहाँ पर। मैं तो सारे मैसेजेस पढ़ने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और सब एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आप क्यों अपनी ज़िंदगी के पास में जाना चाहते हैं, या फिर प्रेजेंट में रुक जाना चाहते हैं, या फिर आप फ्यूचर को फास्ट फॉरवर्ड करके वहाँ तक पहुँच जाना चाहते हैं। टॉपिक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपके आंसर्स भी मैं देख रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद वापस आकर पढ़ेंगे आपके इंटरेस्टिंग मैसेजेस।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह

0: ₹1,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: FM रेनबो और मैं हूं आपके साथ प्रणव। शो चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और हमारे प्यारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैसेज मसाला मिक्स में। देखें कि भाई आज क्या कहा जा रहा है। मोहम्मद सरफराज आलम जिन्होंने मैसेज किया है कि जिंदगी हर मोड़ पर एक सबक देती है, कभी हंसाती है कभी आंखें नम करती है, जो टूटकर भी मुस्कुराना सीख जाए वही जिंदगी को सच में जीना सीखता है। बहुत खूब, आपने फिलॉसफी तो बड़े शायराना अंदाज में बता दी, लेकिन जरा आज के सवाल का जवाब आपसे सुनना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी के कौन से लम्हों में जाना चाहेंगे अगर आपकी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में हो तो। अगला मैसेज फिर शायराना अंदाज में हमारे पास आ चुका है। सड़क मिलना भी जिंदगी का आसान नहीं है, वाकिफ है हर शख्स अनजान नहीं है, पाना है अगर मंजिल तो आहिस्ता चलो दोस्त। ये सड़क है, ये रेस का मैदान नहीं है, रेस का मैदान नहीं है। तो शायद कुछ वर्ड्स मिस हो गए हैं। प्रेम जी ये मैसेज आपने भेजा है बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा मुझे क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जानना चाहूँगा। अगला मैसेज हमारे पास आया है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलबीर, ये हैं मुरादाबाद से। और अगला मैसेज हमारे पास आया है नरेंद्र सोनी का, देवीगढ़ पटियाला से। लिखते हैं कि गुड इवनिंग, शुभ संध्या, मेलोडियस वॉइस प्रणव, ओ थैंक यू सो मच। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमने केवल वो स्कूल टाइम वाला ही हमें टाइम चाहिए क्योंकि उसमें वो उम्र बादशाह वाली उम्र होती है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, बादशाह की तरह हम जीते हैं क्योंकि हमें कोई टेंशन नहीं होती, सब कुछ हमारे लिए हाजिर होता है। हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, हमारे अपने हमारी केयर करते हैं, हमारे काम सब अपने आप होते चले जाते हैं और हम बस जिंदगी जी रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं, तो अपने वक्त के राजा होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगला हमारे पास मैसेज आया है प्रणव, शुभ संध्या आपको भी। रिमोट को बैकवर्ड के लम्हे विद्यार्थी समय को याद करूंगा, हाँ रिमोट फॉरवर्ड कर बुढ़ापे के काल्पनिक भविष्य के बारे में जानना चाहूंगा। अनिल शर्मा ये इन्होंने मैसेज किया है सरिता विहार से। बहुत खूब, देखिए बिल्कुल सही कहा, पिछला मैसेज भी कुछ यही कहना चाहता था कि हम सब कहीं ना कहीं अपने पास्ट में जाना चाहते हैं, स्पेशली बचपन को जीना चाहते हैं क्योंकि बचपन वो दिन होते हैं जब हम बिल्कुल केयर फ्री होते हैं, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बस चिंता होती है तो सिर्फ कुछ होमवर्क पूरा नहीं हुआ या एग्ज़ाम्स आ जाते हैं तब थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन बाकी तो ज़िंदगी हम इन्जॉय करते हैं। और आप फ़िलहाल म्यूज़िक इन्जॉय करिए, वापस आकर कब पढ़ेंगे और ढेर सारे मैसेज।

भाई क्या बात है, मैसेज मसाला मिक्स में जो सॉन्ग्स आपके लिए चुनकर लाता हूँ ना, वो सुनकर मुझे भी यहाँ पर बड़ा मज़ा आता है। स्टूडियो में मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ और साथ में पढ़ रहा हूँ आपके मैसेज, और मौसम तो शानदार हो ही रहा है। जोया का मैसेज आया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, लिखती हैं कि भाई आई वेंट टू स्विट्ज़रलैंड फॉर 5 days ऑन अ फ्री टिकट। आई वुड लाइक टू रिवाइंड दैट, पॉज दैट, बिकॉज स्विट्ज़रलैंड इज़ अ ब्यूटिफुल कंट्री। बिल्कुल आई अग्री विद यू जोया। अगर हम कहीं ट्रैवल पे जाएं और हमें बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन अनुभव हो वहाँ पर, तो हम वापस फिर से जाना चाहते हैं, उन्हीं लम्हों में फिर से जीना चाहते हैं। जैसे हम एक पुरानी एल्बम देखकर फिर से खुश होते हैं, उन लम्हों के बारे में सोचते हैं कि हमने कितना एंजॉय किया था, वैसे ही हम कोई भी ट्रिप आपकी अगर अपने अपनों के साथ हो, शानदार हो, यादें बनाएं, तो फिर वापस उसी वक्त में हम लौट जाना चाहते हैं। अगला मैसेज गुड इवनिंग सिर्फ आया है हमारे पास आसाम से, हितेंद्र दास का, लेकिन ये बताएंगे हमें तब हम जानेंगे कि भाई ये पॉज करना चाहेंगे, रिवाइंड या फिर फास्ट फॉरवर्ड। अगला मैसेज हमारे पास, गुड इवनिंग वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। हमारी ज़िंदगी फिल्म होती अगर तो हम रिमोट से अपने बचपन के वो पल पास कर देते जो हम फिर से जीना चाहते हैं, पॉज कर देते, ओके? क्योंकि बचपन हर गम से बेगाना होता है, जिसे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। नाइस प्रेजेंटेशन, ओके, थैंक यू सो मच। और ये मैसेज हमारे पास आया है किशन वजनानी, नीलम, स्वाति और किशु का, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि बाकी लिसनर्स का कहना है, सभी अपने बचपन में जाना चाहते हैं, फिर से रिवाइंड करना चाहते हैं अपने बचपन की वो सारी यादें, फिर से जीना चाहते हैं। अगला मैसेज अमरावती महाराष्ट्र से पंकज जी का है, लिखते हैं गुड इवनिंग प्रणव जी, मैं भी बहुत

हूँ कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स में। मेरी जिंदगी कोई फिल्म होती और मेरे हाथ में रिमोट होता तो रिवाइंड करके अपने बचपन के दिनों को देखना चाहूँगा और बचपन के दिनों में फिर से जाना चाहता हूँ। क्या बात है, नोस्टैल्जिया लग रहा है, आप लोगों को बहुत ज़ोर से हिट किया है और आप सब लोग अपने बचपन में जाना चाहते हैं। आपको बचपन में ले जाने का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। अगला मैसेज हमारे पास आया है कंचन सोनिया विहार दिल्ली से। लिखती हैं, हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ओके फिर लिखती हैं कि वो हसीन पर बचपन होता है, बचपन से लेकर 17-18 साल की उम्र तक जब तक शादी ना हो जाए बहुत खूबसूरत पल होते हैं। ना कोई रोक, ना कोई टोक, ना कोई टेंशन, ना किसी का दबाव, बेफिक्र होकर जियो और उसी में दोबारा फिर से जीना चाहती हूँ, बार बार रिपीट करके जीना चाहती हूँ। आज पता चला और वैसे 17-18 साल की उम्र में कौन शादी करता है, लेकिन हाँ पहले हो जाती थी और आजकल भी बाल विवाह हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये कुरीति है। 18 साल वैसे तो शादी की उम्र हो जाती है, लेकिन वो सही नहीं है और सही समय तो कुछ भी नहीं होता जब आपको ज़िंदगी में लगे यही सही समय है, लेकिन आप एलिजिबल होने चाहिए, है ना। तो अगर आप बचपन में जाकर फिर से जीना चाहती हैं तो आप भी कुछ अलग नहीं सोच रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कहते हैं कि भाई हमें बचपन जाकर फिर से जीना है और बचपन की यादें बहुत अनमोल होती हैं। सरफराज आलम जो कि हर दर्शना बाज़ार अररिया से लिखते हैं कि ज़िंदगी की फ़िल्म का रिमोट अगर मेरे हाथ में हो और कौन सा बटन दबाना चाहूं तो मैं रिवाइंड का दबाना चाहूंगा, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोबारा जीना चाहते हैं। कुछ रिश्ते, कुछ मुलाकातें और कुछ आवाज़ें और कुछ वो लोग जो आज सिर्फ यादों में हैं। काश ज़िंदगी में भी रिवाइंड होता तो कुछ खूबसूरत लम्हों को फिर से जी लेते और कुछ अपनों से एक बार फिर कह देते, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास थे।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: आया है बब्बल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: एक बार फिर से स्वागत है आपका, मैं हूं प्रणव आपके साथ रेनबो 102.6 पर, और शो चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जहां आज का सवाल था कि अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती और आपके हाथ में आपकी फिल्म का रिमोट, टीवी का रिमोट होता, तो आप उसे रिवाइंड करना चाहते, पॉज करना चाहते, या फिर आप फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते, जिंदगी के कौन से पलों में जाना चाहते और क्यों? बड़े इंटरेस्टिंग मैसेजेस आए हैं मेरे पास। अगला मैसेज आया है कि मैं पॉज करना चाहता हूँ, माना कि बचपन बहुत हसीन था पर यकीन मानिए मैं तब भी जल्दी से जल्दी बड़ा होना चाहता था, और भविष्य को किसने देखा है, न जाने आगे क्या छुपा हो, अनिश्चित में जाने का मुझे कोई शौक नहीं। ये मैसेज आया है हमारे पास पराग का, नोएडा से। बात तो बहुत इंटरेस्टिंग कही है आपने, आप इसका मतलब आप ये है कि आप पॉज करना चाहते हैं, आप अपने वर्तमान को, अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जी लेना चाहते हैं, अनिश्चितता में नहीं रहना चाहते, लेकिन हाँ, जो निश्चित था, जो हो चुका है, जो पास्ट में था वो हो चुका है, वो सिर्फ यादों में बसा हुआ है, और हम कभी कभी उन यादों में खो जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो भी मीठी यादें, जो भी बेहतरीन यादें हमने जी हैं अपनी ज़िंदगी में, उन्हें फिर से जी लेना चाहते हैं सिर्फ उनके बारे में सोचकर। मेमोरीज़ कभी कभी हमें बहुत मदद करती हैं। अगला मैसेज है, प्रणव जी नमस्कार, मैं तो बचपन के दिनों को रिवाइंड करूंगा, जिसमें बेफिक्री, माँ बाप का ढेर सारा दुलार और कभी ना भूलने वाली शरारतें। रवि जोशी का मेरठ से मैसेज आया, बिल्कुल ठीक कहा आपने रवि जी, बचपन के दिनों में हम सभी जाना चाहते हैं, बचपन के दिनों को सभी हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ याद करते हैं। दीपा बिजनौर, हम तो यही चाहते हैं कि हर वक्त हर पल, क्या चाहते हैं आप कि भाई, ओके, आपने तो गाने की फरमाइश लिखी हुई है, अगर आप हर पल को अच्छे से जीती हैं तो बस यही सबसे खूबसूरत बात है। अगला मैसेज हमारे पास है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से, लिखते हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, और बचपन को रिवाइंड, बचपन को पॉज और बुरा समय फास्ट फॉरवर्ड, क्या बात है। बचपन को आप रिवाइंड करके उसमें जाना चाहते हैं, फिर बचपन को ही पॉज कर देना चाहते हैं, और फास्ट फॉरवर्ड करेंगे अगर कोई बुरा टाइम आए तो। बिल्कुल फॉर्मूला आपका सेट है, और अगर इसी हिसाब से आप ज़िंदगी जी रहे हैं तो ख्यालों में तो कम से कम ऐसे जी ही सकते हैं, क्योंकि समय पर किसका बस चलता है, समय तो बस चलता चला जाता है, क्योंकि ज़िंदगी का गोल्डन और मेमोरेबल पीरियड होता है बचपन, ये आपने लिखा है, और बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, शुभ संध्या आपको भी। अगला मैसेज हमारे पास आया है, प्यार भरा नमस्कार, आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से इन्होंने मैसेज किया है।

राजस्थान से। ओके, अगर हमारी ज़िंदगी का रिमोट सचमुच हमारे अपने हाथ में होता तो हम दुख, तनाव और बुरी यादों वाला चैनल तुरंत बदल देते हैं। हम हमेशा खुशी, सफलता और शांति का प्रोग्राम ही देखना पसंद करते, लेकिन असलियत यह है कि इस रिमोट के कई बटन अनजाने में दूसरों के पास चले जाते हैं। अगर रिमोट हमारे हाथ में होता तो क्या होता? दुख का बटन बंद, हम जीवन के बुरे पलों और असफलता को तुरंत डिलीट कर देते। मनचाहा माहौल, परिस्थिति या हमेशा हमारी पसंद और आराम के हिसाब से चलती। गुस्से पर रोक, कोई भी हमें आसानी से नाराज या दुखी नहीं कर पाता। कुछ ज़रूरी बातें, कड़वी सच्चाई, दूसरों के हाथ, नियंत्रण। जब हम दूसरों की बातों पर दुखी होते हैं तब हम अपना रिमोट उन्हें सौंप देते हैं। बहुत ही फिलोसफिकल वे में आप अपनी बात समझाई है, लेकिन आपने क्रिएटिव लिबर्टी ले ली है यहाँ पर। भाई, सिर्फ इतना सा सोचना है कि अगर आपकी ज़िंदगी एक फिल्म की तरह है तो आप उसके किस पल में जाना चाहेंगे। लेकिन हाँ, बहुत खूबसूरती से आप अपनी बात आपने पेश की यहाँ पर। फिलहाल सुनते हैं बहुत बेहतरीन सा गाना, उसके बाद वापस लौटेंगे, फिर पढ़ेंगे आपके इंटरेस्टिंग मैसेजेस।

एक बार फिर से स्वागत है आपका मैसेज मसाला मिक्स में। मैं हूं प्रणव आपके साथ और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज डिस्कशन चल रहा है कि अगर आपकी लाइफ एक मूवी होती तो आप उसे रिवाइंड करते, पॉज करते या फिर फास्ट फॉरवर्ड करते और क्यों करते। एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आया रिया भाटिया का, लिखती हैं थोड़ा मसूरी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और सुहाना मौसम हो रहा है, लैंडस्लाइड हुआ है तो ट्रैफिक है और मज़ा आ रहा है, सुन के साथी बना है हमारे सफ़र का रेनबो। ओके, बड़ा ही खूबसूरत सा मैसेज है। अगर आपके सफ़र में कहीं पर भी रेनबो अगर आपके साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस देता है तो हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। अगला मैसेज है जो आज है वही खास है, कोरी कल्पना करने से कुछ हासिल नहीं होता। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से मैसेज आया है। देखिए बात तो आपने बड़ी गहरी की है, लेकिन मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि जो कल्पना की क्षमता हमें दी है ना, हमें मिली है विरासत में, तो ये कल्पना करके हम कभी कभी हम अपनी बहुत कठिन परिस्थितियों को भूलकर उनसे कुछ सीखकर आगे बढ़ सकते हैं और हमारी सकारात्मक सोच हमें ताकत देती है। हम अगर कल्पना करें, सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें तो हम कम से कम मुश्किल वक्त का सामना हंसते हुए कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम है और कल्पना करने में अगर हमें खुशी मिलती है तो कोई हर्ज नहीं है। अगला मैसेज हमारे पास आया है कि मैं तो 1 से 1.5 साल के बीच में जाना पसंद करूंगा, क्योंकि 1.5 साल की बच्चे की उम्र ऐसी होती है कि बच्चा कभी रोता है, कभी मुस्कुराता है, कभी कुछ सुनता है और कभी कोई देखता है, कभी कुछ देखता है, और हर इंसान चाहता है कि इसे अपने पास रखें और अपनी गोद में खिलाएं। सोनू बिजनौर से मैसेज आया, भाई कल्पना तो बहुत अच्छी आपने की है कि आप 1 से 1.5 साल के बीच में जाना चाहेंगे, गोद में अगर खेलने का मन है आपकी तो ज़रूर वो समय ठीक रहेगा, लेकिन ज़्यादा देर पॉज मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि रिमोट कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाए फिर मुश्किल हो जाएगा। अगला मैसेज आया है कि मेरे पास रिवाइंड का रिमोट हाथ लग जाए ना तो मैं अपने स्कूल वाले समय को जीना चाहूँगा, वही बेफिक्री, वही दोस्त और मज़ा आ जाएगा। देहरादून से आलोक पंवर और मिनी का ये मैसेज है, बिल्कुल सही कहा आपने, सब लोग बचपन में जाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बचपन में ही जाना चाहते हैं। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से लिखते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को पीछे धकेलना चाहूँगा, क्या दिन थे वो जहाँ ना कोई चिंता होती थी और ना कोई जिम्मेदारियों का बोझ, बेफिक्र हंसी, कागज़ की नाव और दोस्तों के साथ खेल कितना आनंद देता था, आज भी जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मन प्रसन्नता से भर जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो दिन भी क्या दिन थे। हाँ,

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक बार फिर से स्वागत है आपका मैसेज मसाला मिक्स में और मैं हूं प्रणव आपके साथ।

रेनबो 102.6 पर मैसेज मसाला मिक्स में आज बात हो रही है कि अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म होती तो और आपके हाथ में उसे कंट्रोल करने के लिए रिमोट होता तो आप फास्ट फॉरवर्ड करते, पॉज करते या फिर आप रिवाइंड करते। राजकुमार के संतानिया कोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड इवनिंग, वेलकम, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। ओके, संगीत मधुर है और आपकी बातचीत भी बहुत अच्छी लग रही है। हैप्पी संडे। सबसे खूबसूरत यादें कुछ हैं जो बचपन की यादें हैं, लव बचपन जी, जैसे टेंशन फ्री क्रिकेट खेलने, बारिश में भीगना, बारिश में खेलना, मजाक मस्ती करना और स्कूल में पढ़ना। बिल्कुल सही कहा आपने, ये यादें वाकई लाजवाब होती हैं। अगला मैसेज है, 2007-2008 का साल रोकना चाहूँगा क्योंकि इसी टाइम मैंने रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री सुनना शुरू किया था और वो उम्र ऐसी थी जिसमें ज़्यादा कुछ सोच विचार नहीं करना पड़ता था, जो काम करने का मन करता था वो कर लेते थे। आज यहाँ से मैसेज भेज रहा हूँ, उसका जनक भी एक तरह से यही साल रहा है। अगर मैं यहाँ से रेडियो सुनना शुरू नहीं करता तो शायद आज ये प्रोग्राम भी नहीं सुन रहा होता। बिल्कुल सही कहा आपने। महेश जानू मंडावा झुंझुनू राजस्थान से मैसेज आया, बहुत प्यारा मैसेज है। रेडियो से जुड़ी हुई आपकी यादें हैं, रेडियो से आपने कमेंट्री की शुरुआत की सुनने की और उसके बाद आप रेडियो सुनने का सफ़र आपका छूटा नहीं और आज यहाँ पर मैसेज मसाला मिक्स में आज आप हमारे साथ हैं। अगला मैसेज है भुवनेश का। अशोक विहार दिल्ली से लिखते हैं कि हाउ आर यू, ऑन टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट आई वॉन्ट टू गो बैक टू दैट डे इन माई लाइफ वैन आई वेंट टू सी टीम इंडियाज लाइव क्रिकेट मैच इन स्टेडियम। आई वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज आई सॉ माई फेवरेट प्लेयर्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी बट आई कुडंट take their autograph. I want to go back there again and take their autograph. भाई हम दुआ करते हैं कि आपकी ये विश ज़रूर पूरी हो। तो फिर मैं कहूँगा कि आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए और अपनी कोशिशें थोड़ी तेज़ कर दीजिए अपने फेवरेट प्लेयर से मिलने के लिए। तो आप पास्ट में मत जाइए, फास्ट फॉरवर्ड करके फ्यूचर में चले जाइए। अगला मैसेज है, सत श्री अकाल जी। ओके, आपने लिखा नहीं है लेकिन आपका टॉपिक तो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ तो आप ज़रूर चाहूँगा कि आप उस पर अपने विचार मुझे भेजें। ये मैसेज हमारे पास, अगला मैसेज हमारे पास आया है प्रवीण चौहान का और खरगोन मध्य प्रदेश से। मैं अपने पास्ट में जाऊंगा और जो हमारे जीवन में गलत हुआ है उसे ठीक करके आऊंगा। बिल्कुल, अगर आपको लगता है और काश ऐसा होता कि हम सब अपने पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को मिटा सकते, उन्हें ठीक कर सकते, तो शायद सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाता। और जिन्हें हम कहते हैं कि ख़राब मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज, तो ख़राब मेमोरीज़ तो हमारी होती नहीं क्योंकि हम सारी मेमोरीज़ को अच्छा बना लेते हैं। गुड इवनिंग जी, अगला मैसेज आया है मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से कि मैं पीछे जाना चाहता हूँ क्योंकि अभी भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उसका कुछ करना कारण मैं ही हूँ। ओके, पीछे जाकर उसे सही करना चाहता हूँ, अपने बच्चों और वाइफ के साथ सुकून से रहूँ। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए, संभव तो नहीं है कि टाइम मशीन से हम पीछे जाएं, लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि काश, और क्योंकि एहसास करना ही सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको किसी बात का एहसास है तो बस वही काफ़ी है। अगला मैसेज है, प्रणव जी नमस्ते, टॉपिक पर यही कहूँगा कि मेरी पसंदीदा फिल्म ग्रेट राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर है और इस फिल्म ने मुझे सिखाया है कि परिस्थितियाँ कितनी भी विषम क्यों ना हो, अपने काम के प्रति आपको पूर्ण ईमानदारी के साथ अंजाम देना है। ठीक उस तरह से जैसे कि राज कपूर साहब, राजू की माँ की मौत हो गई थी फिर भी वो सर्कस का अपना शो करने आए। प्रेमचंद प्रेमी का ये मैसेज है, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। फिल्मों से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। प्रणव जी नमस्कार, मेरी ज़िंदगी का रिमोट से मैं अपने बचपन के दिनों में जो पुरानी यादों में वापस चला जाऊंगा क्योंकि वहाँ सब कुछ अपना सा और सच्चा सा लगता है और वो खूबसूरत पल बहुत ही अनमोल होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं के नाम है शिवा, प्रेम, कपिल, संगीता, लिपि और दीपाली। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, क्या बात है। अगला मैसेज हमारे पास आया हुआ है अंकोला महाराष्ट्र से विजेंद्र जी का। ये लिखते हैं कि मैं भी बचपन को रिवाइंड करना चाहता हूँ। प्रणव जी, ओके, देखिए हम में से ज़्यादातर सभी अपने बचपन को ही रिवाइंड कर वहाँ जाना चाहते हैं। काश कि ऐसा हो, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन फिलहाल इतने सारे मैसेज हैं, मैं सबको पढ़ना चाहूँगा, लेकिन फिलहाल इस आखिरी सॉन्ग के साथ आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलूँगा। इस वादे के साथ जा रहा हूँ, मैसेज मसाला मिक्स में आज बहुत ही प्यारे मैसेज आपने भेजे हैं जिसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।

0: See, I told you, one life is never enough for us. Anyway, that is Dermot Kennedy out there for you. Time is 2 o'clock, 31 minutes past 7 p.m. We're done with the first half of the show. Moving to the second one, but before we proceed further ahead, time for me to take a short and sweet break. Do not, and I repeat that, do not touch that dial. I'll be right back after these messages. Break time.
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती?
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे।

0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बबई। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का दोबारा संकल्प लेने की अपील की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल में हर घर तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले श्री शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और इसके दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई 24वीं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता का तीसरा दौर जारी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद बागेर जोलखाद्र ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने से पहले अमेरिका के सामने मांगों की एक सूची जारी की। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। बारिश के कारण पहलगाम और बालताल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 8:03:30। मैं हूं प्रणव आपके साथ। शो चल रहा है म्यूजिक मस्ती। हम रहेंगे एक घंटे तक साथ में और करेंगे म्यूजिक मस्ती।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: दिल्ली स्टाइल गया है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार, लीजिए सुनिए रात 9 बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देशभर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी के मुर्गा थिएटर सिग्नल में हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले श्री शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश साहिंग वर्मा ने आज विधानसभा के मानसून सत्र में पेश की गई 24वीं नियंत्रक और महालेखक परीक्षक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं की नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद बागेर ज़ोलखाद्र ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने से पहले अमेरिका के सामने मांगों की एक सूची जारी की। यमन में ईरान समर्थित सशस्त्र गुट हूती ने सऊदी अरब के अरामको तेल शोधन कारखाने पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। बारिश के कारण पहलगांव और बालताल मार्गों से श्री अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोगों को विस्थापित किया गया। और अंत में अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। तो ये थे रात 9 बजे के मुख्य समाचार और अब बारी है आपके पसंदीदा प्रोग्राम आपकी याद आती रहेगी।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आंखों से होके दिल में उतर जाएंगे, दिल में उतर कर तस्वीर बन जाएंगे, नजरों को झुकाकर चलना वरना जमाने को तुम्हारी आंखों में हम नजर आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही प्यारी सी बात आपके लिए हमने कही और इस प्यारी सी बात के साथ आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, प्रोग्राम आपकी याद आती रही मैं। जी हाँ, यह है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, और दिल से दिल की बात करने मैं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू पुनः हाजिर हूँ आपके साथ रविवार की इस 9 बजे के इस खास प्रोग्राम में। तो इस प्यारे से गीत के साथ आज के कार्यक्रम का करते हैं आगाज़।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम है आपकी याद आती रही और आपके साथ मैं संजीव बिल्कुल, और ये यादों का सिलसिला चलेगा पूरे 10 बजे तक। बहुत सारी यादें जीवन में हमसे जुड़ी होती हैं और उन यादों को जब हम कुरेदते हैं, उसके झरोके में जाते हैं, झांक कर देखते हैं तो समझ में आता है कि इस दिल के अंदर कितना कुछ छिपा है मेरे यार, और इसको हमने कहीं पर्दों में दूर दबा के रख दिया है। कभी कभी जब अकेले में होते हैं, एकांत में होते हैं, तब सोचते हैं कि चलिए आज जीवन की उस पुरानी बचपन की याद की तरफ दौड़ पड़ते हैं। है? या मोहब्बत, पहली मोहब्बत की वो याद जो शायद आज भी बहुत सारे मेरे दोस्तों के दिल में दबी होगी, उसको वहीं दबा लिया होगा, है ना। आगे निकालने से शायद आने वाले जीवन में फ़र्क पड़ जाए, लेकिन जो नगमा है ना, ये उसी दबी हुई याद को फिर से कुरेदने की बात करता है। तो चलिए पहले ये नगमा सुनाते हैं, फिर पूछते हैं आपके दिल का हाल।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

जी हाँ, प्रोग्राम है आपकी याद आती रही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनो के माध्यम से, रेनबो के माध्यम से, मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को। तेरी जिंदगी की हर खुशी के गवाह तो बहुत होंगे, तेरे दिल से जुड़े हर गम के भागीदार हैं हम। मुझे आज फिर से महसूस हुई तेरी कमी, शिद्दत से आज फिर दिल को मनाने में बड़ी देर लगी। जी हाँ, यही वो बातें हैं, यही वो यादें हैं जो अभी इस पिछले गीत के माध्यम से शायद आपके दिल को कुरेद गई होगी। और आप, वैसे मैंने गलत समय में ये गीत छेड़ दिया क्योंकि कल मंडे की मॉर्निंग है और वर्किंग डे की शुरुआत है, और आप अगर देर रात तक नहीं सोएंगे तो नींद पूरी नहीं होगी और काम पे जाने में थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन नहीं, कई बार जो पुरानी यादें होती हैं, जो पुराने जिसे कहते हैं जज्बात होते हैं, वो हमको ताकत देते हैं, हमको क्षमता देते हैं, शक्ति देते हैं, ताकि हम उनके साथ और आगे बढ़ने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। इसलिए पुरानी बातों को भूल जाइए और नए किसी दोस्त से, नए किसी साथी से रास्ता जोड़ लीजिए।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जो वेलकम बैक। और सावन का महीना चल रहा है इस वक्त, भगवान शिव को सादर साष्टांग प्रणाम। और जो भी शिव भक्त हैं इस वक्त लगातार भगवान शिव की भक्ति में लीन है अपने अपने तरीके से, उन सबको भी हमारी तरफ से भाई हर हर महादेव। और आपको बोलें कि बहुत सारे मैसेज जो हैं दोस्तों ने, उसमें हमें शुभकामनाएं दी हैं कि सावन के महीने की, सावन का जो ये मौसम है बहुत ही प्यारा होता है। इस मौसम में जहाँ एक तरफ लगातार रिमझिम बरसात होती है तो दूसरी तरफ ठंडी हवाएं चलती हैं, तो जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद उमस का जो महीना मौसम आता है, मतलब गर्मी जो आती है, ज़मीन से जो उमस निकलती है, तपस निकलती है, वो अपने आप में तपिश बहुत ही मुश्किल सी होती है। लेकिन मौसम के अपने आनंद हैं भाई। ये मेरे पास लिखती हैं डॉली जी, गीत खूबसूरत चल रहे हैं। और कैसे हैं संजीव जी? हम बिल्कुल अच्छे हैं डॉली जी, और आपकी जो याद है वो हमेशा हमको आती रहती है ना। और ये अगला मैसेज मेरे पास किसने भेजा, शुभ संध्या प्रणव जी लिखते हैं, और संजीव श्रीवास्तव संजू बिल्कुल आपको भी शुभ संध्या और गुड इवनिंग आरजे जी। हितेंद्र दास जी ने ये मुझे असम से मैसेज भेजा, बहुत ही प्यारी सी जगह, बहुत खूबसूरत जगह असम, मुझे बहुत पसंद है। और बारिश में, सावन की बारिश में डूब शहर डूबता रहा, हर शख्स भीगता रहा, दिल रूठता रहा, बूंदों में घुली थी किसी की याद ऐसी कि मैं

बारिश में भी सारी रात जलता रहा। सरफराज आलम साहब जो कि हरदशना बाजार जिला अररिया बिहार से ये मैसेज हमें भेजते हैं, तो ये जो याद है ना भाई कि बहुत कठिन होती है, बहुत मुश्किल होती है जब ये दिल में नश्तर बन के उतरती है ना, तो बहुत दुखता है कहीं ना कहीं, है ना।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंदी पर रात 9 बजे।

वेलकम बैक जी, और वक्त हो गया है 9:35, 36, 37 जी। देखिए लगातार ये वक्त लगातार आगे बढ़ रहा है और सेकंड की सुई 38 की तरफ बढ़ रही है। ये वक्त कभी नहीं रुकता दोस्तों। कैसे हो आप? सतपाल तोमर हापुड़ से लिखते हैं, गुड मॉर्निंग इंडिया में कब आएंगे आप? जी बिल्कुल। और लिखते हैं कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल में सिलेक्शन होने के बाद ड्यूटी में व्यस्त हो गया हूँ, फिर भी आज समय निकाल कर आपको सुन पा रहा हूँ। आप और आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, प्रोग्राम भी पसंद करता हूँ। थैंक यू जी। दोस्त जिसका सतपाल तोमर जी हापुड़ से आप मैसेज कर रहे हैं, और आपकी जो ये सिलेक्शन की खबर आपने हमें सुनाई है, एक नया करियर आपको बना, रोज़गार, लगातार रोज़गार लोगों को मिल रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है। और जो भी मेहनत करता है उसको उसकी मंजिल मिलती है, उसमें से आप भी हैं, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और ये अगला मैसेज मेरे पास किसने भेजा जी? इसको भेजा हमारे पास संतानी, राजकुमार की संतानी, अकोला महाराष्ट्र से। बेहतरीन और शानदार सॉन्ग आप सुना रहे हैं और बातचीत जो भी आप कर रहे हैं सब कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमें भी आपसे मिलना, आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। सो एक और बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही प्यारा सा गीत, बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो आपके दिल के करीब है और जिसमें यादें छुपी हैं हम सब की। बस थोड़ा सा दर्द दिल में बना होना चाहिए, क्योंकि उससे हम एहसास कर लेते हैं सामने वाले के की फीलिंग का। अगर ये दर्द दिल जो है वो दर्द से रहित होगा तो शायद हम किसी की दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पाएंगे।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

जी हाँ, वेलकम बैक का प्रोग्राम चल रहा है आपका, बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी याद आती रही, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। मैं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संचु। तो एक और बहुत बहुत मीठा नगमा पहले आपको सुनाते हैं, क्योंकि गीत अगर आप सुनते रहेंगे तो आपके अंदर एनर्जी बनेगी और कल आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे एनर्जी और जोश के साथ अपने काम पर चल पड़ेंगे, है ना।

बिल्कुल जी, हम भी आपके लिए ही कहते हैं कि आप हमारी सुबह हैं, आप हमारी शाम हैं, और 24 आवर्स हम आपकी सेवा में रहते हैं, और इसलिए हम हैं आपके अपने आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक।

बिल्कुल जी, आप मुझसे प्यार कर लीजिए, क्योंकि प्यार करना कोई गुनाह नहीं। हम आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, और ये सच बात है, अगर आप दिल से किसी को चाहते हैं तो उसको इजहार कीजिए, शिद्दत के साथ उसको बताइए कि उसके लिए आपके दिल में प्यार है, या उनके दिल में आपके लिए प्यार है, या हमारे दिल में उनके लिए प्यार है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, कई बार आंखों की जबान समझ नहीं आती, जबान से बात कहनी होती है। तो फिलहाल मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव, संजू को दीजिए इजाज़त इस प्रोग्राम को समाप्त करने की, और अगली मुलाकात आपसे 11:05 पर होगी प्रोग्राम रंगे महफिल में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: that happens to you. Black Eyed Peas with I Got a Feeling. Yes, I'm sure everybody's having a good time right now. Time of the 2 o'clock, 27 minutes past 10 p.m. We're still in the first hour of the show. But before we proceed with the second hour of the show, yes, I have to take a short and sweet break. Do not, and I repeat that, do not touch that dial. I'll be right back after these messages. Break time.
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
9: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
10: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
11: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, लीजिए सुनिए रात 11 बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देशभर में कई कार्यक्रमों के साथ आज से हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से इस अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3 लाख लोग विस्थापित। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरु मोग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। तो ये थे रात 11 बजे के मुख्य समाचार और अब बारी है आपके पसंदीदा कार्यक्रम रंग महफिल की।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रागी महफिल। आपके साथ मैं हूं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू, सो वेलकम।

जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम है दिल से दिल, प्रोग्राम है रंगे महफिल, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू, जो दिल के करीब होते हैं वही अक्सर समझ नहीं पाते कि वो कितने खास हैं। तो बस अपने दिल के करीब रखिए और समझ लीजिए कि हम आपके अपने हैं, अपने खास हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: जी हाँ, ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। आपके साथ मैं संजीव श्रीवास्तव संजू और आकाशवाणी रेनबो पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ आपकी। वक्त कहता है ठहर जा, दिल कहता है चल पड़, और जिंदगी बस इसी खींचतान में बीत जाती है।

मुझे आज भी फिर से महसूस हुई तेरी कमी शिद्दत से, मुझे आज भी फिर से महसूस हुई तेरी कमी शिद्दत से, आज फिर दिल को मनाने में बड़ी देर लगी। तो बिल्कुल इस कमी को दूर करना बहुत मुश्किल है, बस दिल ये समझ सकता है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, ये है आपका अपना अपना चैनल और आपके साथ मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव संजू और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। बिल्कुल रात के 11:33 हो चुके हैं, 34 मिनट की तरफ सुई लगातार बढ़ रही आगे और बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया। मैं आपको बताऊं कि ये जो मैसेज अगला किया इसे किया अनु कुमार रावत जी ने और आप हैं ऑनरेरी फ्लाइंग ऑफिसर, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ, वाओ अनदर मेलोडी, जिए तो जिए कैसे। बिल्कुल आपको सुनाएंगे हम, हैदराबाद से ये मैसेज उन्होंने किया है, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए। और अगला मैसेज हमारे पास किसने भेजा, अमित आंचल ने सासाराम बिहार से, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आप हर याद को ताज़ा कर दिया आपने। और ये जो मैसेज मेरे पास आया जिसको लिखा कि आदाब संजीव जी, हम आपको सुन रहे हैं कस्बा गन्नौर यूपी से, फारूक अली खान साहब, फैजी, फराज, फरीन, फरान, फारिया और ताहिरा। तो जी बिल्कुल आप हमें सुन रहे हैं तो हम भी आपको ये प्रोग्राम सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो एक और बहुत प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके लिए।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: रहा है बम्बई। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, इश्क कीजिए फिर समझिए। ओह, लीजेंड जगजीत सिंह जी की आवाज़ में आपने जो नगमा सुनाया, उसके बाद आपने जिए तो जिए कैसे है, और क्या सिलेक्शन है यार। संजू जी, पंकज दास जी के बारे में जो आपने, उनका जो नगमा सुनाया, बहुत पसंद आया। आप भी हमें ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वहाँ से, अरुण कुमार रावत जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बहुत बहुत प्यारा नगमा, लता जी की आवाज़ जब गूंजती है तो सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद होती हैं और सुनने को दिल करता है, बाकी जबां, हमारी जो जबां है वो खामोश हो जाती है।

है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ बिल्कुल, जब कभी सोचते हैं हम लता जी के बारे में तो यही बात आती है कि जब आंसू भर आते हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनका उनका वो शख्सियत, उनका वो विराट व्यक्तित्व आज भी हमारे हृदय में अंकित है, हम सब के अंदर हैं और यूं ही रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, प्रोग्राम रागे महफिल से मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिए इजाज़त। अगली मुलाकात आपसे जल्द होगी ऊपर वाले ने चाहा तो, लेकिन एक और प्यारी गज़ल लता मंगेशकर जी की आवाज़ में मैं आपको सुनाकर तब आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।

बेहद खूबसूरत शो के साथ संजीव भाई आपको आज के लिए शुभ रात्रि कहेंगे और अपने सभी दोस्तों को कहेंगे हम आभार आपका, स्वागत आपका, क्योंकि दिन का कैलेंडर बदल चुका है। अब एक नए दिन में हम दाखिल हो गए और नए दिन के पहले शो से पहले मुख्य समाचार इस घंटे के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह भी किया। देशभर में कई कार्यक्रमों के साथ

हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा। 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित किए गए हैं। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक हासिल किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 12:02 हो चुके हैं, कुछ ही समय में फिर हाजिर होते हैं एक खूबसूरत शो लेकर जिसका नाम है जीरो आवर शो, मेरे यानी रजत के साथ। स्वागत एक बार फिर से आप सभी श्रोता मित्रों का और दोस्तों का।

0: उनका करार है ही खोने के लिए। अक्सर लोगों को इससे जुदा होते हुए, इसे खोते हुए ही देखा सुना है हमने। और कुछ ख़ास किस्म की जो बंदिश होती है वो करार के होने और खोने के बीच की, वो हमें तरह तरह की यादें और बहुत तरह के अनुभव दे जाते हैं। उन्हीं यादों और अनुभवों का पिटारा आपको रखना है अपने पास, और हम जो करने जा रहे हैं वो उसी पिटारे में से उठा उठा कर वापस आपको देने वाले हैं। आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। खूबसूरत गानों की जुम्बिश के साथ, एक शानदार कलेक्शन के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके लिए, आपके यादों के लिए, और उस खास बात के लिए, उस खुसूसियत के लिए जो आपके हमारे हम सब के जिंदगियों से या तो जुड़ी हुई हैं या कभी जुड़ी रही। और इसी बंदिश और जुम्बिश के साथ शुरू कर चुके हैं हम ये काफिला, जिसे हम कहते हैं जीरो और शो। क्योंकि भाई अब कुछ देर पहले जब हम आपके साथ आ रहे थे समाचार पढ़ने, तब ये 00:00 का कॉम्बिनेशन था यहाँ। अब ये 00:09 हो चुका है, यानी 12:09 हो चुके हैं घड़ी की सुई के मुताबिक, स्टूडियो की बात अगर माने तो। और ये वक्त हो चला है एक बार फिर से आप सभी का इस शो में स्वागत करने का, शुभकामनाएं देने का कि आपका दिन आगे इसी तरह का आगाज़, इससे भी बेहतर शुरुआत लेकर आए। और इस शुरुआत को और बेहतर करने जा रहे हैं हम। कल सुबह कीजिएगा आप अपने कार्यक्षेत्र में, अपने वर्क स्टेशन पे, जो भी आप करते हैं। फिलहाल आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6 और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन

0: संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

ये था प्रोग्राम जीरो आवर शो मेरे यानी रजत के साथ। कुछ ही देर में आप होंगे मुताबिक मुखातिब नए शो के साथ, जो कि होगा सुहानी रात थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले इस घंटे की प्रमुख न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह भी किया। देशभर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निर्देश

निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपने ट्यून इन किया है। थोड़ी देर में होंगे आपके साथ लेकर सुहानी रात।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी

0: दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु तेरी
1: हाय।
0: तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: कुछ मैं छोड़ रहा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

हमेशा ये फरियाद करते रहोगे रहोगे हमेशा ये फरियाद करते रहोगे। करो आज तौबा तौबा करो आज तौबा मुसीबत टर।

सुबह के 2 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल के खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से हमेशा भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। देशभर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत हो गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया। इस बीच प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश

ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होने की खबर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई से मुलाकात की। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका से फिलहाल किसी बातचीत से इनकार किया। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता। ये थी प्रमुख न्यूज हेडलाइंस आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। अब समय हो चला है हमारे नियमित कार्यक्रम भुलाए ना बने का, तो बस इंतजार खत्म और कुछ ही देर में हाजिर होते हैं ये खूबसूरत नगमों से सजा प्रोग्राम खास तौर से आपके लिए लेकर। मैं हूं रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6। इसके साथ साथ न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं।

0: हमारी बेकरारी का क्या है जनाब, हम अक्सर आपको बता भी देते हैं और कई बार नहीं भी बताई जाती कि किस कदर रुस्वा हो जाते हैं वो लम्हे जब आपसे मुलाकात नहीं होती। इतने खूबसूरत गीतों के मार्फत, इतने शानदार मौसम के कंधों पर सवार होकर जब हम ये प्रोग्राम करने आए हैं आपके साथ, तो एक अलग ही तरह का घुमा है, एक अलग ही तरह का कह सकते हैं कि सुरूर है, खुमारी है कि बस प्रोग्राम में आपके साथ जुड़े जाएं, मदमस्त कर देने वाले गानों का, पुराने गानों का, नए गानों का संगम लेकर आपके साथ आया जाए, आपके साथ उस तासुरात को बांटा जाए जो अब से कुछ समय पहले तक इस तरह का कहना चाहिए कि अंदाज़ देकर गया है हमें कि आज भी वो हमसे भुलाए नहीं भूलता। कितनी भी कोशिश कर लें हमारे जहन से उन खूबसूरत गानों की जो यादगार है वो जाती ही नहीं, जो एक बार कानों में पड़ने के लिए बेताब रहते थे और हम उन्हें सुनने के लिए बेताब रहते थे। उस समय को, उस दौर को याद करने का ये खूबसूरत लम्हा मिलता है, ख़ासतौर से तब जब आकाश को बादलों ने घेर रखा हो, चांद सितारे कोशिश करते हों बादलों के भीतर से झांकने की, कहीं बारिश है तो कहीं नहीं है, लेकिन हाँ मौसम खुशनुमा है, जहाँ बारिश नहीं भी है वहाँ भी खुशनुमा मौसम है, लेकिन थोड़ी सी उमस की जो छटाएँ हैं वो दोबारा से आ गई हैं दिल्ली NCR की अगर बात करें। लेकिन कोशिश यही है कि ये लू में या तेज़ गर्मी में तब्दील नहीं होंगी, इस तरह का जो प्रयास है वो मौसम की तरफ से हो रहा है। खैर, हम आते हैं दोबारा अपने स्टूडियो में वापस मौसम से और करते हैं आपका स्वागत प्रोग्राम भुलाए ना बने में, क्योंकि वक्त हो चला है 2:11 होने को है और आज सोमवार की शुरुआत हम कर चुके हैं। करीब तीसरा शो है ये इस दिन का, आज का, और आप जुड़े हैं हमारे साथ बहुत दूर दूर से भी, काफ़ी नज़दीक से भी। आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत एहतराम, तहे दिल आपका स्वागत, अभिनंदन, और जुड़े रहें इस ख्वाहिश के साथ। रजत शर्मा है आपके साथ इस प्रोग्राम को लेकर जिसका नाम है भुलाए ना बने।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के

0: अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ये था प्रोग्राम भुलाए ना भरे मेरे यानी रजत के साथ। अब वक्त हो चला है एक और पन्ना पलटने का कैलेंडर के मुताबिक, लेकिन उससे पहले इस घंटे के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से हमेशा भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील भी की। देशभर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज़ादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत हो गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस बीच इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डॉल्फिन तूफान चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा। 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होने की खबर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई से मुलाकात की। विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने अमेरिका से फिलहाल किसी बातचीत से इनकार किया। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है। ये थे मुख्य समाचार अब तक के आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। सुबह के 3:02 हुए हैं, मध्य रात्रि के कहना चाहिए। कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे हमारी नियमित प्रस्तुति मिडनाइट मेलोडीज में। रहिए हमारे साथ, ट्यून करके रखिए आकाशवाणी।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर

0: 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

नमस्कार, सुबह के 4 बज चुके हैं और समय हो चला है प्रोग्राम सारे गामा का, लेकिन कुछ देर के लिए ठहरते हैं और ज़रा जानते हैं देश और दुनिया की हलचल इस घंटे की न्यूज़ हेडलाइन पर आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से हमेशा भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। देशभर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज़ादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत हो गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच विस्फोटक आयुध निरोधक अभ्यास आज से 14 अगस्त तक कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 4:02 हो चुके हैं। कुछ ही देर में जुड़ेंगे कार्यक्रम सारे गामा से और ये प्रोग्राम लेकर आया हूं मैं रजत इस आकाशवाणी रेनबो 102.6। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी देश और दुनिया से जुड़े रहिए और ट्यून इन करिए हमारा शो जो कि अब होने वाला है शुरू सारेगामा इसी फ्रीक्वेंसी पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी।

0: लाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप,

0: ETH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

तो श्रोताओं, ये था प्रोग्राम सारेगामा आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। अब समय हो चला है अब तक के मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से हमेशा भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। देशभर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत हुई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच विस्फोटक आयुध निरोधक अभ्यास आज से 14 अगस्त तक कोची में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता है। ये थे मुख्य समाचार इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। 5:02 हो चुके हैं श्रोताओं, कुछ ही देर में आप जुड़ेंगे भक्ति संगीत पर आधारित हमारी दैनिक प्रस्तुति, हमारी नियमित प्रस्तुति आराधना में। तब तक के लिए रहिए हमारे साथ और जुड़े जाइए आकाशवाणी रेनबो 102.6, साथ ही न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी।